जग में चेत्यो जान के जग में रहो समाए, जिन हर का नाम न चेत्यो बादे जन्मे आए। कबीर आशा करिए राम की, अवरे आस निराश नरक परे।

काल पाछे कछु न होए बा जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत इक देखिया जैसी तोई लाख, दिसे चंचल बहुगुना मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जम ना।

सतगुर क्या करे जो सिखा में चूक, अंधे एक ना ला गई जो बांस बजाये फूक। कबीर है गए बाहन सगन कन छत्रपति की नार, ताश पटन कर ना पूजे।

ताबत रखे ता राम भजे नाहीं ता बिनती बात। कबीर के सो कुकिया ना सोए सारे राम।

कबीर राम रतन मुख खोली, तारक आगे खोले कोई आए मिले जो गाती, ले दो महंगे मोल कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाले कटक कुटुंब संदेही में मर गयो बाहर पई न बम्ब। कबीर आखी केरे मात के पल पल गई बिहाए, मन जंग

उपकारी जीवन के पंछी चले दिखावरी बिरखा सुफल कलंक। कबीर साधु संग पर आपके लिखिया होए लिलाट, मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवगत काट। कबीर एक करी आदि करी।

ठाकुर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुरु नाहे। अर्ज उर्ज के खत्म हुआ चारों वेदों माहे, हर है खांड।

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए। कबीर जो तुम खाद तिरम की पाके से तू खेले, काटी सरसों तेल कह ना फल कई ना तेल। कूंदत डोले अंग गत हर चीनत नाही संत, कहनामा क्यों पाए बिन भगतों भगवंत।

खल डूंगर पवे होम अज करी दे कूजड़ा सै को माखी ओम राती वड्डियां तुक उठन पास सिज तिना दा जीरिया दिना विदानी आस करीदा जे मैं होंदा वारिया नित्ता आयड़िया।

कंध कुहारा सिरकड़ा वन के पर लोहारे खरीदा हूँ लोड़ी सो अपना तू लोड़ है अंगियार खरीदा इतना आटा अगला।

हंस न कोदरा खाए, चल चल गईयां पंखियां गिनी वसाए ताले, फरीदा सर परिया पी चलसी हके कवले कले। फरीदा इत सिराने पोए सन कीड़ा लड़ियो मास, केतड़िया जुग वापरे इकट पया पास। फरीदा पन्नी कड़ी सवनवी टुटी नागर लाजे, अजराइल फिरिश्ता कै कर नाची अज। फरीदा पन्नी कड़ी सवनवी टूटी नागर लाजे, जो सज्जन को

फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माही मंदा किसनो आखी है जा किस दिन कोई नाही। फरीदा जे दिह नाला कपया जे गल कपे दुख पवन ना इकी मामले सहा न इकी दुख चबन चलन रतन से सुनियर बह गए हेरे मिट्टी पाके जानी चल गए। फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन न हंडा।

अब महला पंजवा फरीदा सोम रंगावली मंज विसूला बागे जो जन पीर निवाजिया तिन्ना अंत न लाग महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहे विरले के पायने जिना प्यारे ने कंदी रहन ना चाहे तो भी लेखा देवना जे तार रब रजाए वैन सिदाओ गौ करे फरीदा दुखा से पी दियो गया सूला से पी रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा पत्थर रात लम्बी लम्बी नदी वह कंदी के रहे के बेड़े नो कप

कमल आखी से था बंदगी चलन अज के कल फरीदा मोतैदा बन्ना एवें दिसे ज्यो दरिया वैता अगे दोजक तपया सुनिए हूल पवे कहा इतना नू सब सोजी आई इक फिर दे

रब न छोड़न पास। फरीदा रुक फिरी वन कंबिया सप चढ़े चढ़ता है सारे कुंडा कुंडिया रहन किताऊ नाही। फरीदा पार पटोला सज करे कंबलड़ी पहरे ओ जिनी वेसी सो मिले से वेस करे ओ। महला तीजा काए पटोला पारती कंबलड़ी पहरे नानक घर ही बैठिया सब मिले जे नियत रास करे। महला पंजवा फरीदा गर्भ

रावणे जिना विसारे नाओ कैसे दुख कनेरिया अगे थौर न छाओ फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे तैं रब विसारिया ता रब ना विसरयो ए महला पंजवा फरीदा कंक रंगावला वड्डा वे मुमताज अल्ले से ती रतिया एहो सचावा साज महला पंजवा फरीदा दुख सुख इक कर दिल ते लाए विकार

क्या चलै किस नाल इक जा बंदे नाल हैं कितना कुत्तियां दे उठाल तू देंदिए सुहाग को सौ तन काई कोर जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना छाप न होर सबर मंज कमान ए सबर का नीहनो सबर संदा बाण खालक खता ना करी सबर अंदर

सिर तल उत्तर पाए। मैं जानिया बढ़ है पाने की पासंग, जो जाना बग बपुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे जो किस पास।

तो कमर को पत्थर कहाँ गुण कमर को मणिया मनते कमर को वे सोहा करी जित वस आवे कंते निहन को अक्षर खवन गुण जो बामणिया मनते के प्रे पैणी वेश कर तावस आवी कंते मत होंगी हो इहाना तान होंगे हो निताना अन होंगे आप बंदाए को ऐसा पगत सदाए एक सिक्का ना गालाए सबना में सच्चा तनी याओ न कही थाए मानक सब अमोल वे सबना मन

सर भरयो भरपूर सगल घट रहो व्यापे। व्यापत देखे जगत जाने कौन तेरी गते। सर्व की रक्षा करे आते हर पते।

पार नहीं तुम भरे हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसय एक दिन क्या बखाने हाके बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवास हर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भाव

आननई समसर उदियारो निर्मर कोट करा छते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हाके बल बल बल बल सद बल हार।

भगदर तुल ब्रह्म समसल एजी क्या बसन हाके बल बल बल बल।

है सूत है जहानी कवन उपना उपमा देओ बड़े ते बड़ान जाने कौन तेरो भेओ अलख अपार देओ अकल कला है सब सर्व को धान जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म सम सर।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

धन धन ते धन जने जे कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परसो हे जन्म मरण दू ते रहो सत सत हर सत सत सत सत भणिए दूसर आन न आवर पुरख पुरातन सुनिए अमृत हर को नाम लेत मन सब सुख पाए जे रसन साखो तै जन तृप्त अधाए जे ठाकुर सो परसन भयो सतसंगत तै प्यार हर गुरु नानक जिन परसो तिन सब कुल कियो उधार सच सभा दीवान सच सचे पै धरयो सचे तप्त निवास सच तपावस करयो सच सुन जो सन

हर तारन तरन समरथ सवैद कुल समूह उदारन सो चित चेत अचेत जान सत संगते धर्म अंधेर मोयो कत धो मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगलो होतो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख भाव सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरो रंच करे खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूधन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निकट

के काट भरम भरे। रे मनमूस बिलावे गर्वत कर्तव करत महाम भुना। संपत धौल धूल संग झूलत माया मगन भरमत भुगना। सुत बनता साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुघना। बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतक औध करत अधना। मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंसत भुगत भूख भुखना। सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नामिक जगे जानत सुपना। देह न देह ननी ननीता माया मत कहा लो मादारो। देह न देह ननी ननीता माया मत कहा लो गारो। छत्र न पत्र न चौर न चावर बैठी जात हृदय न विचारो। रक्त न अश्व न गज सिंहासन छिन में त्यागत नांग सिधारो। सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो। कोट न ओट न कोश न छोटा कर्त विकार दो कर झारो। मित्र न पुत्र कल्प साजन सुख उल्टत जात बिरख की छारो। दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो। श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो। प्राण मान दान मग जोहन चीत चीत दे ले ले तारी। साजन सैन मीत सुत भाई ताऊ ते ले रखी निरारी। धावन पावन सूर कमावन एहद करत औध तन जारी।

करम धर्म संजन सुख सुचनेमा, करम धर्म संजन सुचनेमा, चंचल संग सगल विदहारी, पथ पंखी बिरख अस टावर, बौगंद जौन भम्यो अत भारी, सिंपल चसा नाम नहीं सिमर्यो, दीना नाथ प्राण पथ सारी, खान पान मीठ रस भोजन, अंत की बार होत कत खारी, नानक संत चरण संग उधरे, और माया मगन चले सब डारी, ब्रह्मांगत शिव छंद मुनि सर, रसक रसक ठाकुर गुण गावत, इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत, धरण गगन आवत फुन धावत, सिद्ध मांस

दृश्यो जम तो तन डन मृत मरो है। अंत धोन संकट नरक भुंचत शासन दुख गर्त गर्यो है। प्रेम भगत उधरे से नाम के कर कृपा संत आप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आसमारी। औषध मंत्र तनक पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मद सर तृष्णा बिन सजाए।

दुधे मन दर्श मग पावत जरो न जात रहो जन भूर लग नींद न साकस बोर चले हर पंथ मगे नानक रोग दोख अगमो छिदे हर नाम खग उदम कर लागे लौ भाती बिचरे अन सास बौ खटुआ भस्म लगाए तीरथ बौ घमते सूखम दे बंधे बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावते जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक भात फाटे कर खटुआ सोये मले तले ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख दयाय वरदाता संत सहार सदा दिखयाता

गंभीर भीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान भरे गांग राज भगत प्रहलाद आत्म रस

राज जोग दिन माणियूं। गावे गुण बरन चार खट दर्शन, ब्रह्मा दत्त स्मरंत गुणां। गावे गुण शेष सहस जेदा, रस आद अंत लेव

भगत दीन गुण रही सहज आत्म रंग माने, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ और न जाए। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिथ जस गायो, कब कल सुजस ना।

करतार करह समरथो। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो, तै धरयो मस्तक।

सतसंगत सहज सारे जागी ले गुर बिचारे निमरे भूत सजीव परम प्यारे कौ तीर्थ कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुर पर समुरारे तै तो दर्यो नाम अपारे बिमल जास बिठारे साधक सिद्ध।

हर हर दर्श समानी आत्मावंत ज्ञानी जाने अकलगत गुरु परवानी जाकी दृष्टि।

लैणा जगत गुरु परसु मुरार। दृष्ट धरत तम हरन दहन अघ पाप परासन। सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन। लोभ मोवस करण शरण जाचक प्रित पालन। आत्मरत संग्रहण कहन अमर।

गरल नाथ कन न थयो अम्यो अंतरगत पियो रुद बिनास जागयो अलग पल धरी जुगंतर सतगुर सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज तल उचरे जस जमतो लैने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम स

बो है नाम परस जन पायो सत प्रगट हो रवलो दर्शन परसे गुरु कै अठसठ मजन हो सच तीरथ सच स्नान अर भोजन भाव सच सदा सच भाषंत सो है सच पायो गुरु सबर सच नाम सुगंती बो है जिस सच संजम वर्त सचे कब जन कल्व खाने दर्शन परसे गुरु कै सच जन्म परवाणी अमे दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे सदै।

तीरथ रव तिर प्रगण संसारे सात सरोवर मवल सराब। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरुमुख बरदायो उल्ट गंग।

सोई नाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरिया चित नाम लागते तुझसे ध्यावे जति कपि सर

सतनाम गुरु गंभीर गुरु मत सतकर संगत दरिया। सोई नाम अचल भगत भाव तारण अमरदास गुरु को पुरिया। नाम कित संसार किरण रहो सुर कर साथे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके। जन्म तयो सखे अत जित नाम हर दे निवासे सुर नर गण गंधर बुछे दर्शन आशा से। भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगत वच भव जल हरन गुर अमरदास तय पायो। नाम धुआवे देव कैतीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे। जय नाम समाधेव हरक सोग समतर सहारे। नाम शिरोमणि सर्वमयि भगत रहे निवधार। सोई नाम पदार्थ अमर गुरु तुस दियो करतार। सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया। जिस धीरज धुर धवल भुजा सहित बैकुंठ बीना परचे संत प्यार जय कर तारे संजोग। सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुरु की को जोग। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुरु सेवयो जिस पसाय।

चरण तपर सत्यत चरण गुर अमर पवल हथ तपर सत्यत हथ लगे गुर अमर के जी तपर सत्यत जी गुर अमर भरजे नैन तपर सत्यत नैन गुर अमृत जय श्रवण तपर सत्यत श्रवण गुर अमर सुन जय सत्यत सो ही हो जित ही बसे गुर अमर दास निज जगत पिते सत्यत सो सिर जालक भणे जो सुर ने गुर अमर नितें।

लहर जालता पदार्थ इतने गुरु अमरदास जिथे मिले सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद ने।

तात गुण कवण वखाणो जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो बोलतो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उधरणे गुरु अमरदास।

जप तप सत संतोख तिक दर्शन गुर सिखे सरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर के लिखे भगत।

नानक कुल मल अवतरो गुण कर तारे उतरे। गुरु अमरदास जिन सवेओ तिन दुख दरिद्रे।

जब गुरु देखे सुगदिष्ट नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो, गुरु अमरदास कारण करण जिम तो रखे क्यों रहो। दिखे के गुरु ज्ञान अर ध्यान तत् सौ तत् मिलावे, सच सच जाने इक चिते लिवलावे। काम क्रोध वश करे पवन उदंत न धावे, निरंकार के वसे देश हुकुम।

धर्म धन कर गयो भगत सीने सर लड़यो धन निर्भव हर अटल मन सबद गुरु ने जाग गयो काम क्रोध लोभ मोह अपत

दे एक मन पुरखन अंजन ध्याओ गुर प्रसाद हर गुण सद गाओ गुण गावत मन

اب رات اب گت دے آئے اس بھوکے دار گرنا چمتے کل سہار تا

नाम रे निरंजन उर धरया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे। कब कल ठकर हर दास तने, गुरु राम दास सर अबर भरे। छूटत परवा अमेव अमरा तत, अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन, उपजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अनभय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे। कल कल ठकुन हर दास तने, गुरु राम दास सर अभर भरे। सतगुरु मत गुड़ बिमल।

निरंजन खरे लहा। सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे। कल कल ठाकुर हरदास तनी, गुरु राम दास सर अभर भरे। अनुभव अनुमान अकल लेव लागी, पारस भेटिया सहज घरे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत भाए भंडार भरे। मेटिया जन मंत्र मरण भव, भागा चित लागा संतोख सरे। कब कल ठाकुर हरदास तने, गुरु रामदास सर अबर भरे। अबर भरे पायो अपार अंतर धारे, दुख भंजन

अरे गुरमुख ध्यान दुर्मत मैल धोवे जीयो। सतगुरु नाम एक लिव मन जते, जिन जन दुख पाप

नाम सो अपार सार दीनो गुरुद धरे नल कौ पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुबास जास सिमरत अंतरे जाके देखत द्वारे काम को दे।

दास भट बेनत कहे, जो गुरु नाम हृदय में धरे सो जन्म मरण दोते रहे। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच बिचारे, गुर कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे। गुर नैन भैन गुर गुर करो, गुरु सत कब नल कै, जिन गुरु न देखो न कियो ते अकथ संसार में। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारण तरण समर्थ कलयुग सुनत समाद शब्द जिसके रे। सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो, जो धरत ध्यान बस्त तै मेरे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत

तू मुख देख गरु सुख पायो होती जो प्यास प्यो सेवन की बंसत सिद्ध को विद मिलायो पूरन भवन ठौर बसोर से बासन सुजो दायो गोविंद वाल गोविंद पुरी समझलन तीर विवास बनायो गयो दुख दूर।

निसबासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भांडरो भनदास आस जगत गुरु की पारत भेत परस करो रामदास गुरु हर

आमन अवनिध आते रसन ऐनित रसे सत कर जानियो उनु प्रेम रंग पाये गुरमुखे ध्याये अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो वचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत

गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐनक करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सत रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख

गुर मिलत मुन जन रे तरे नार दाद संकाल हर गुरु मुखे तरे एक नाम लग तजो रस अन

परमानंद गुरुमुख कयन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखण भरण सतगुरु गुरु सेव।

जग जन्म मरण भगाए आई ही ये परतीत ही ये आई जिन जन के

का ब्रह्म भरम सुब छुटका, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटका, दिव दृष्ट कारण करण सत गुरु गुरु सेव अलक गत जाकी, श्री राम दास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परदास, भया ज

करें पर भात शुद्ध मन गुरु पूजा विद सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद बरनं। सतगुरु गुरु सेव अलग।

तिन तरयो समुद्र रुद्र थिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडली सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन बच

और कथी कथा कथी न जाए तीन लोक रहा समाए। सुते सिद्ध रूप धर्यो साहन के साहरियों

सच जान मंत्र एह नित बासुर कल्याण लहे परम गत जियो काम क्रोद लोभ मोह जन जन संसार धो हमें का फल काट साध संग रत जियो देह गे ते सने चित बिलास जगत एओ चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही धार सजनिकार मन

नहीं पाता। गुरमुख संगत सवे विचारो, वाओ वाओ का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा

सतसंगत से ती मन खचना किया खेल बड़मेर समासा वाहे गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद आज जिस कोए न जाने शिव ग्रंथ धर ध्यान तेज सभेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई भंजन गरण समर

गुर समरथ गए किरिया धूप बुद्ध समत समारन को उन धम दुजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जय सास और कथू न विचारन को।

हर नाम बहुत बड़ो कल में भव सागर पारे उतारन को। संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है। ब्रह्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले उदार।

मन इच्छत ही फल पावत है। रव के सुख को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधास पर पूर्ण सब संग प्रगट तिन आदर। गहर गंभीर अथायत वन सुबर सदा सब विद रत्नागर। संत मराल करे कंतु हल तिन जम प्रास मिट्यो दुख।

ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परदास को। वेद बाणी सहत ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन जैना तजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ भेद किए फिरत उदास को। सोतम सतगुण सुख भाई कृपा।

अंतर तेज कुंचे लोक प्रजा से देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभते अल्प मोजो कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप सब

मन मोहते, अमृत नाम दियो समरथे। उनकी रतवंत सदा सुख संपते, रिद्ध अर्थ सिद्ध ना छोड़।

बसीस धरो गुर हथे तीन भवन भरपूर रहो सोई अपन तरस क्यों ना जगत कोई आपन आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे अविनाशी अचल अजौनी संभो पुरखोत्तम आपार परे करण कारण समरथ सदा।

आयो सतगुरु नानक भगत करे एक मन तन मन धन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज धारी अगम ज्ञान रस रस हियो गुरु अमरदास।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा खूब भगत हर के जुगन अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन तिनको अवतार।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिटियो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिटियो जो खिणन। कर्म कर तो दर्श परस पारसन बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो। जै सित सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जै सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जै सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जै सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करो। जै सतगुर लग प्रभ पाइए सो सतगुर सिमरो नरो।

ज्ञान प्रगत उजियारो, दुख दरिद्र अंधियार को नाशे। कब कीरत जो संत चरण मुण लागे, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ज्यो अंगद अंग संग नानक गुर, तिम गुरु अमरदास कै गुरु रामदास। जिन सतगुरु सेव पदार्थ पायो, निस बासुर हर चरण निवास। सांते संगत

जय तिखत अत होए रहत मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानो कीनी भगत प्रेम निवलाई। साते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद।

सिर आत पत सचो तखते जोग भोग संयुक्त बल गुरु रामदास सच फल भण तू अटल राज।

जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो भगत जोग को जैतवार है।

ਪਦ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ।

दम भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल संहार तोए जस भगता कुल सोदी गुरु रामदास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

कहो मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन सिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जगमगे तेज भूमंडल छायो परस परस परस परस गुरु।

जह देखा तह एक है गुरमुख प्रगट होए। दुख विसारण शब्द है जे मन वसाए कोए, गुर कृपा ते मन वसै कर्म प्राप्त होए। नानक हो करते खप मोए खूहन लख असंख, सतगुर मिले सोबरे साचे शब्द अलंख। जिना सतगुर इक मन सेविया तिन जन लागो पाए, गुर शब्दी हर मन वसै माया की पुख जाए। से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाए, नानक होर पाप।

बौरस सालने सवार दी खटवस मीठे पाए। क्यों बाणी पदक सलाम दे हर नाम चित लाए। मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए। पै पगती पगत बहु लोच दे।

सतगुर के पाने जो चले सुतकासे हर गुण गाए तन तन कर जुग नानका जे चले सतगुरु भाए। सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उधार तिग तिना का जीविया चित आए संसार। गुरमति पौ मन पवे ता हर रस लगे।

0: नाम रतन प्रकाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्के फिरे दिल नावे बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सके कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर के शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे पंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम प्रगास। काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए, एक उपजे एक बिनस जाए हुक्मे आवे जाए। जम्मन मरण न चुकई रंग लगा दूजे भाए, बंधन बंद भवायन करना कछु न जाए। जिनको कृपा धारियन तिना

पुत कलत मोह हेत है अंत बेली को न सखाए। सतगुर सेवे सो सुख पाए नाम वसै मन आए। नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाए। मनमुख नाम न चेतनी बिन नाम है दुख रोए। आत्मा राम न पूजनी दूजे क्यों सुख होए। हों मैं अंतर मैल है शब्द न काढ़े तोए। नानक बिन नाम है मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास। बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करे प्रगास। ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर वचन ना करे विश्वास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विकास। हर ज्ञानिया की रख

आए। बिख का मारण हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए। मिल सतगुरु निर्मल होया, बिख हो मैं गया बिलाए। गुरमुखा के मुख उजले, हर दरगे शोभा पाए। जन नानक सदा कुर्बान तिन, जो चाले सतगुरु भाए। सतगुरु पुरख निर्वैर है, नित हृदय हर लिवलाए। निर्वैर नाल वैर रचाएंदा, अपने कर लूकी लाए। अंतर क्रोध अहंकार है, अंदिन जले सदा दुख पाए। कूड़ बोल बोल नित पौंक दे, बिख खा दे दूजे भाए। बिख माया कारण परम दे, फिर कर कर पत गवाए। बेसवा के रे पूत ज्यो, पिता नाम तिस जाए। हर हर नाम न चेतनी, करते आप खुआए। हर गुरुमुख कृपा तारियन, जन विछड़े आप मिलाए। जन नाम

हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन आपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार। ऐथे ओथे मनियन हर नाम लगे व्यापार, गुरमुख शब्द सुजाप दे तित साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार।

जन की टेक हर नाम हर बिन नाम है ठवर न ठाओ गुरमती नाव मन वसै सहजे सहज समाओ वडपागी नाम ते आया एहन सलागा पाओ जन नानक मंगै तूर तिन हों सतगुरु बाणे जाओ लख चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार ए मोह माया सब पसरिया नाल चले नामती वार बिन हर शांत ना आवे किस आगे करी पुकार वड पागी सतगुरु पाया बूझिया ब्रह्म विचार तिसना अग्न सब

सो मन ना वस्यो गुणतास, ए मन शब्द ना पेदियो क्यों होवे करवास, मन मुखिया दोहागनी आवन जान मोयास, गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास, हर हर नाम उर्धारिया हर हृदय कमल प्रगास, सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास, नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास, शब्द मरे सोई जन सिजै बिन शब्द मुक्त न होई, पेख करे बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई, नानक बिन सतगुरु नाव ना पाई है जे सो लोचे कोई, हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई, अपड़ कोई न सकई जे सो लोचे कोई, मुख संजम हच्छा ना होवई कर पेख पवे सब कोई, गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई, अंतर आए वसै गुर शब्द विचार है कोई, नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोए, माया मोह दुख सागर है बिख दुत्तर तरिया ना जाए, मेरा मेरा कर दे पच मोए हों मैं करत विहाय, मन मुखा उरवार न पार है आद विच रहे लपटाए, जो तुर लिखिया सो कमावना करना कछु न जाए, गुरमति ज्ञान रतन मन वसे सब देखिया ब्रह्म सुवाए, नानक सतगुरु बोझ वड पागी चढ़े ते पौजल पार लंगाए, बिन सतगुरु दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार, गुर कृपा ते नाव मन वसे सदा रहे उर्धार, तिसना बुझे तिपत होए हर के नाए प्यार, नानक गुरमुख पाये हर अपनी कृपा धार, बिन शब्द जगत बर लिया कहना कछु न जाए, हर रखे से उबरे शब्द रहे लिवलाए, नानक करता सब कित जानदा जिन रखी बनत बनाए, होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण, बिख माया मोह न मिटई विच होमे आवन जान, सतगुर मिले मल उतरी हर जपिया पुरख सुजान, जिना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सतगुर बाण, माया मोह बहु चित्व दे बहु आशा लोभ विकार, मन मुख अस्थिर नाथी है मर बिनस जाए खिनवार, वड पाग होवे सतगुर मिले होमे तजै विकार, हर नामा जब सुख पाया जन नानक शब्द विचार, बिन सतगुरु भगत न होवे ना।

चाहे हाथ ना पाए, मन मुक्षेति संकरे मोह कालक दाग लगाए, मोह काले तिन लोभियां जासन जन्म गवाए, सत्संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए, जन्म मरण की मल उतरे जन नानक हर गुण गाए, तुर हर प्रभ कर तै लिखिया सो मेटना ना जाए, जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राए, चुगल निंदक भुखे रुल मोए ए ना हाथ ना किफाऊ पाए, बाहर पखंड सब कर्म करें मन हृदय कपट कमाए।

मन आवन जान ना सुजय ना सुजय दरबार माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार तब नर्स पा जा गया सिर डंड लगा भोपार गुरमुखा करा ऊपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार नानक आप ओह उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे हर दरगे गुर शब्द जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम न चेते अंत दुख रोए नानक करता करे सो होए गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान तिना नगरी इको आया सब आत्म राम पहचान मन मुख बालक बिरध समान है जिना अंतर हर सुरत नाही विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह शब्द सुवाए ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुरु भाए मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर कह अंक समाए।

नानक गुरमुख मन स्यों लुजै, जिना सतगुर पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार। ओए मानस जून ना आखियन पशु टोर गावार, ओ ना अंतर ज्ञान ना ध्यान है हरसो प्रीत ना प्यार। मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार, जीव दियानो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार। नानक गुरमुख सोहणे सि सच्चे दरबार, हर मंदर हर साजिया हर वसे जिस नाल, गुरमति हर पाया माया मोह पर जाल। हर मंदर वस अनेक है नव निज नाम समाल, तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल। वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हिरदे पाया नाल, मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार। माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार, सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार। जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार, हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान। किलविक पाप सब कटिए हों मैं चुके गुमान, गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान। हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम, तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए। तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ, जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय ते जाओ। एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ। पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए, तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए। सतगुर विच वडियां वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए, इक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए। संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ, नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ। तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहा रह जाओ। से दाड़ियां सचियां जे गुर चरनी लगन, अंदिन सेवन गुर आपना अंदिन अनदरहन। नानक से मुंह सोहने सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़ियां सच बोले सच कमाए। सच्चा शब्द मन वस्या सतगुरु माहे समाहे, सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे। सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगे बैसना सच्चे माहे समाए। नानक बिन सतगुर सच ना पाईए मन मुख भूले जाए। बाबीहा प्रयोग प्रयोग करे जल निद प्रेम प्यार, गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार। तिस चुके सहज उपजे चुके कूक पुकार, नानक गुरमुख सांत होए नाम रखो उरदार। बाबिया तू सच चो सच्चे सौ लिवलाए, बोलिया तेरा थाए पवे गुरमुख होए अलाए। शब्द चीन तिक उतरे मन लह रजाए, चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवे सह चुबाए। जल ही ते सब उपजे बिन जल प्यास न जाए, नानक हर जल जिन पिया तिस भूख न लागे आए। बाबीहा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुवाए, सब किस तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाए। आप पछाणे प्रीतम मिले वुठा छह बरलाए, चिम चिम अमृत वरसदा तिसना पुख सब जाए। फूक पुकार न हो वही ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सुख सवन सुहागणी सच्चे नाम समाए। तुरु खसम पेजिया सच्चे हुक्म पठाए, इंद वरसे दया कर गूड़ी छह बरलाए। बाबी है तन मन सुख होए जा तत बूंद मोह पाए, अन तन बहुता उपजे तरती शोभा पाए। अंदिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए, आपे सच्चा बस लय कर कृपा करे रजाए। हर गुण गावो कामणी सच्चे शब्द समाए, पै का सह सिगार करो सच रहो लिव लाए। नानक नामो मन वसे हर दरगे ले छड़ाए। बाबीहा सगली तरती जे फिरे ऊट चढ़े आकाश, सतगुर मिले जल पाईए चूके भूख प्यास। जियो पिंड सब तिसका सब किस तिसके पास, बिन बोलिया सब किस जान
ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਆ ਗਏ ਕੀ ਚੈ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਕਟ ਕਟ ਏਕੋ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ ਹਰ ਬੁੱਠਾ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਪਰ ਫੜੈ ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਏ ਸਬਦੇ ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਏ ਹਰ ਬੁੱਠੈ ਮਨ ਤਨ ਪਰਫੜੈ ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਵੱਡੜੈ ਚਾਲ ਚਲੁੰਬੜੈ ਨਾਵੜਾ ਲਈਐ ਕਿਸ ਨਾਉ ਲਈਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ ਪੰਨਣ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹਰ ਹਟ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੈ ਬੋਲੇ ਪੱਲੀ ਬਾਣ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਹੈ ਕਿਆ ਉੱਚੀ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਏ ਹਰ ਰੰਗ ਕੀਆ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ ਆਪ ਛੋੜੈ ਤਾਂ ਸੋ ਮਿਲੈ ਸੱਚਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹਉਮੈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਬੁਝ ਨਾ ਸਕਾ ਕਾਰ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤੁਝੈ ਧਿਆਇ ਦਾ ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਵਿਹਾਨ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਕਰ ਸਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲਹਿ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਤਿਆਇਆ ਆਏ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੋਗ ਨਾ ਪਗਵੀ ਕੱਪੜੀ ਜੋਗ ਨਾ ਮਹਿਲੇ ਵੇਸ ਨਾਨਕ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਜੇ ਪਵੈ ਬੇਦ ਪੜੈ ਜੁਗ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਫੇਟੈ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਵੈ ਮੋਹ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਖਸਮ ਕਾ ਮਤ ਪਵੀ ਫਿਰੈ ਚਲ ਚਿਤ ਮਨਮੁਖ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸੁਖ ਕੇ ਪੁੱਛੈ ਮਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਲਾਏ ਚਿਤ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਾ ਮੂਲ ਕੱਟੀਐ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਵੀ ਮਿਤ ਪੁੱਲਿਆ ਆਪ ਸਮਝਾਏ ਸੀ।

गुर कै शब्द अराधिय नाम रंग बैराग जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू इह राग जामू इक ता लख तौ जिती पिनने दर कितड़े बामन बिरथा गयो जनम जिनकी तो सो विसरे थोरस पीजिए कभू न फीका हुए नानक राम नाम गुण गाय दरगह निर्मल सोए जो प्रभ रखे आप तिन कोए न मारे अंदर नाम निदान सुना गुण सारे एका टेप अगम मन तन प्रभ धारे लगा रंग अपार को न उतारे गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारे नानक नाम निधान हृदय उरहारे करे सु चंगा मान दुई गणत लाहे अपनी नजर निहाल आपे लहो लाए जन देहो मती उपदेश विच्चों परम जाए जो सुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कष्ट दे वस दूजी नाही जाए नानक सुख आनंद भये सब की मन रजाए गुर पूरा जिन सिमरिया से भय निहाल नानक नाम आराधना कारज आवे रास पापी कर्म कमाव दे कर दे हाय हाय नानक ज्यो मथन माधानिया क्यों मथे धर्म राय नाम से आए साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवे कीतो पवन पुनीत खुबड़ी कुथाए मिठी जलन कुमंत्रिया।

सुतड़े असंख माया चूसी कारणे नानक से जगन जे रसना नाम उचारणे मृग तिसना पेख पुलने बुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच आराध्या नानक मंतन पब पतित उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरख अपार जिसे उदारे नानका सो सिमरे सृजनहार दूजी छोड़ कुआटड़ी इक सोचित लाए दूजे पावी नानका वहन लुड़ंदड़ी जाए ते हटड़े बाजार सौदा करन मन जा रहा सच वखर जिनी लद्या से सचड़े पासार पंखा प्रेम ना जाने पूली सिरे गवार नानक हर बिसराए कै पौंदे नरकंधार माया मनो ना विसरे मांगे दम्मा दम सो प्रभ चितना आवई नानक नहीं करम चिचर मूल ना छुड़ी दो जिचर आप कृपाल शब्द अकुट बाबा नानका खाए खर तन माल खंभ विकांदड़े जे लहा किन्ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहा सो सज्जन तो।

जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। केहे वस्त जी नह जाई, नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लग।

दुतिया माल कौ सकाला पे संग रागनी पांचों था पे गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुती उचारी तनासरी ए पांचों गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उभारा खोखट औ पौरानद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच

सुरमानंद पास करे आए चंद्रबिम मंगलन सुहाए सरसबान औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत समोदा अष्टपुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पटमंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बिरंगन लावे।

हुक्म लिख दुख सुख पाई है, इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, नानक।

बहादुर कथना कथी न आवे टोट कत कत कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे तक पाहे जुगा।

सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन पाने के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा।

पवह ना पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सोह दर राजहान पंचा का गुर एक ध्यान।

दरियाओ कुदरत कमण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई पली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ।

असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई पली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल भख खाहे।

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए।

एक वार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे।

गत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोय बिन गुण कीते भगत ना होय स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कमण सुवेला वखत कमण कमण थित कमण वार कमण से रुती माह कमण जित होवा आकार वेर न पाइया पंडती

होई, जा करता सिर ठीक को साची, आपे जाने सोई, किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आख।

के जिसनो बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल वपार मूल वपारिये।

देवतियां दर नाली गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारी गावन पंडित पन्न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीरथ नाले गाव है जोध महाबल सूरा।

आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत अदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग वजोग दोए कार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवें चलावै जिव होवै।

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एकावार कर कर वे कह सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै थीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरन नह जोर जोर न राज माल मन शोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राति रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्म।

जाय। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बर में कार्त करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बलोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे

राजा धर्म दुआरे गावन कुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारी गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठी।

ती रात खसम बसार है ते कम जात नानक नावे बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करहु गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरना।

हम सिखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया

जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता हुए न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पौ करिया ऊडे ऊड़ आवे सह कोसा तिस पासे बचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्यावो।

तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्याव है हर त्याव है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जमती फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिनका भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करह सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू

ज्यों हुआ साहिब स्यों मेल, कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला, शे कर शे गुर शे अपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तोय रहाओ, विश्वे चसियां कड़ियां पहरां, थित्ती वारी माह होआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेश, राग

क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडाही पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मन

आओ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हो मैं कंडा ही जो जो चल है चुभे दुख पावे जमकाल सह सिर डंडा ही हर जन हर हर नाम सुमानी दुख जन्म मरण भव खंडा ही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा ही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा ही जन नानक नाम।

तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए प्यावे एहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुरु।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग श्री राग महला पहला कर पहला मोती ता मंदर उसरे रत्नी ता होए जड़ाव कस्तूर को अगर चंदन लीप आवे चाव मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे नाव हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नाही थां रहाओ धरती ता हीरे लाल जड़ती।

आऊ सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद आखा आऊ गुपत प्रगट हुए बैसा लोक राखे पाओ मत देख फूला विसरै तेरा चेतना आवे नाऊ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाऊ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाऊ मत देख।

दास जित बोले पत पाईए सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान जो तिस भावे है से भले होर के कहन बखान तिन मत तिन पत तिन धन पल्ले जिन हिरदै रहिया समाए तिनका क्या सा लाहना।

आहार जित खादै तन पीड़ियै मन मह चलहै वेकार रहाउ रत्ता पहनन मन रत्ता सोपे दी सत दान नीली स्याही कदा करनी पहरन पैर ध्यान

रहाउ पूज लगै पीर आखियै सब मिलै संसार नाउ सदाए अपना होवै सिद्ध सुमार जां पत लेखै ना पवै सभा पूज खुआर जिनको सतगुरु।

जाय। जो तिस भाणा सो थीऐ अवर ना करना जाय। गुरमुख वस्त वे साहीऐ सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणंजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला धात मिलै फुन धात कौ, सिफती सिफत समाय। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिलै संतोखियां हर जप एकै पाए। भाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाईऐ मुक्त पदार्थ तेन। रहाओ ऊचौ थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाईऐ दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाईऐ आत्म राम विचार, त्रिविध कर्म कमाईऐ आस अंदेसा होए। क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुट सी, सहज मिले सुख होए। निज कार महल पछाणीऐ नदर करे मल धोए। बिन गुर मैल ना उतरै, बिन हर क्यों घर वास। एको शब्द विचारीऐ अवर त्यागै आस। नानक देख दिखाईऐ दे

जे धन कंत ना भावे ता सब अडंबर कूड़, सब रस भोगण बाद है सब शिंगार विकार, जब लग शब्द ना भेदी है क्यों सो है गुरुद्वार, नानक धन सुहागणी।

दास तू सर्व जिया प्रित पाल ही लेख सास ग्रास अंतर गुरमुख तू वस है ज्यों पावे त्यों निर्जास जियरे राम जपत मन मान अंतर लागी जल बुझी

जित कर जाई है तित जीवनिया मर मार अनहद शब्द सुहावने पाई है गुर विचार अनहद बाणी पाई है कह मैं होए बनास सतगुर सेवे अपना हौ सद कुरबान है तास खर दरगाह पैनाई है मुख हर नाम निवास जह देखा तह रव रहे शिव शक्ति का मेल त्रिहो गुण बंदी देहरी जो आया जग सो खेल बेजोगी दुख विछड़े मन मुख लह ना मेल मन बैरागी घर वसै सच भै राता होए ज्ञान महारस भोग वै बहुड़ भूख ना होए नानक एहो मन मार मिल भी फिर दुख ना होए श्री राग महला पहला एहो मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लुभान।

तरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान परमे पूला दुख कणु जम मार करै खुलहान मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सुभान ऐथै धंध पटाई है सच लिखत परवान।

जिस हर मन वसै तिस मेले गुर संयोग काया कामन जी करी भोगे भोगण हार इस स्यो नेहो ना की जई जो दिसै चलन हार गुरमुख रवह सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल परगासिया अमृत भरिया।

गुर मिल पाओ जन लंगिया दरगाह पत परवान नानक ते मुख उजले धुनि उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला वणज करहो वणजारिहो वखर लेहो संभाल तैसी वस्त वसाही है जैसी निबह नाल अगे साहु सुजान है लैसी वस्त संभाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो सहो देखै पति आए रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों किन्ना सुख होए खोटै वणज वणजै मन तन खोटा होए ठाही पाथे मिर्ग ज्यों दुख घणो नेतरोए खोटे पोतै ना पवै तिन हर गुर दर्श ना होए खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला राम नाम रंग रतिया पार ना भरम तिना हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माह श्री राग महला पहला कर दूजा तन जो

आपे रसिया आप रस आपे रावण हार आपे होवै चोलड़ा आपे सेज पतार रंग रत्ता मेरा साहिब राव रहिया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागनी देख हमारा हाल।

बीज कर्मा करो सलल अपाव सारिंग पानी मन किरसान हर हृदय जमाए लै इउ पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े मा

किरखा करे इन तज आत्मै हुए त्याई जप तप संयम होहे जब राखे कमल बिगसै मद आश्रमाई बीस सप्ताह रो बासरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठार में अपरंपरो चीनै कह नानक इव एक तारे गिरी राग महला पहला कर तीजा अमल कर धरती बीज शब्दो कार।

कर एक त्याया, तीही कर रखी पांच कर साथी, नौ शैतान मत कट जाई, नानक आखे राहे पै चलना, माल धन कित कु संजियाही, श्री राग महला पहला कर चौथा, सोई मौला जिन जग मौलिया, हरिया किया संसारू, आब खाक जिन बंद रहा।

को रह ना भरिए पाई, सोई काजी जिन आप तजिया, एक नाम किया आधारू, है पी होसी जाए न जासी, सच्चा सिर जन हारू, पांच वक्त निवाज गुजार है।

तू ओ नाका तेरे ओहे असी बोल बगाड़ बगाड़ बोल तू नदरी अंदर तोलह तोल जह करनी तह पूरी मत करनी बाजो घटे घट प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए।

सब मह एक वर्तदा एको रहिया समाई जिसनो आप दयाल हुई सो गुरमुख नाम समाई पढ़ पढ़ पंडित जोत की वाद करह विचार मत बुद्ध भवी ना बुझई अंतर लोभ विकार लख 84 भरम दे भ्रम भ्रम हुए खुआर पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार।

पारस परसे है पारस हुए ज्योति ज्योत सुमाई जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आई मन भुखा भुखा मत करह मत तू करह पुकार लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार।

लाहे सच हर पाया गुणतास शब्द रते से निर्मले हौ सद बलिहारै जास हृदय जिनकै हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर

समाए तिनका जन्म सफल है जो चल है सतगुरु पाई कुल उधार है अपना धन जड़ेंदी माए हर हर नाम ते आई है जिसनो कृपा करे रजाए जिन्नी गुरमुख नाम ते आया विचो हो आप गुआई वे अंदर हो बाहर हो निर्मले

हर भगता हर तन रास है, गुरपूछ कर है वापार, हर नाम सलाहन सदा सदा, वखर हर नाम आधार, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार, भाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या कर है, गुरमुख नाम त्याई रहाव, हर भगत हर का प्यार है, जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना होवे दुबदा बोल खुआर, सो जन रलाया ना रले, जिस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखी है, जो हर राख है उरतार, मन तन सौंपे आगे धरे, हो मैं विचो मार, तन गुरमुख सो

अनदिन नाम त्याय रहाउ साची मैल ना लागई मन निर्मल हर त्याय गुरमुख शब्द पछाणिय हर अमृत नाम समाय गुरु ज्ञान प्रचंड बुलाया अज्ञान अंधेरा जाय मनमुख मैले मल परी हम

हार, गुरमुख जप तप संजमी, हर कै नाम प्यार, गुरमुख सदा त्याई है, एक नाम करतार, नानक नाम त्याई है, सबना जिया का आधार, श्री राग महला तीजा, मन मुख मोहे व्यापिया, बैराग उदासी ना होए, शब्द ना चीने सदा दुख, हर दरगह पत खोए, हौ मैं गुरमुख खोई है, नाम रते सुख होए, मेरे मन एहन सपूर रही नित आसा, सतगुर सेव मोह परजलै, घर ही माहे उदासा रहाउ, गुरमुख कर्म कमावै बिगसै, हर बैराग आनंद, अन दिन भगत करे दिन राती, हौ मैं मारनी चंद, वड्डै भाग सत संगत पाई, हर पाया सहज आनंद, सो साधु बैरागी सोई, हिरदै नाम वसाए, अंतर लाग न तामस मूले, विचों आप गवाए, नाम निधान सतगुरु दिखालिया, हर रस पिया अगाए, जिन किने पाया साध संगती, पूरे भाग बैराग, मन मुख फिर है, ना जान है सतगुर, हौ मैं अंदर लाग, नानक शब्द रते हर नाम रंगाए, बिन भय के ही लाग, श्री राग महला तीजा, घर ही सौदा पाई है, अंतर सब वथ होए, खिन खिन नाम संभाली है, गुरमुख पावे कोई, नाम निधान अखुट है, वडभाग प्राप्त होए, मेरे मन ताज निंदा हौ मैं अहंकार, हर जियो सदा त्याए तू, गुरमुख एक अंकार रहाउ, गुरमुखा के मुख उजले, गुर शब्दी बीचार, हलत पलत सुख पाएंदे, जप जप हृदय मुरार, घर ही विच महल पाया, गुर शब्दी बीचार, सतगुरु तेजो मोह फेर है, मथे तिन काले, अन दिन दुख कमावदे, नित जोहे जम जाले, सुपने सुख ना देखनी, बहु चिंता पर जाले, सबना का दाता एक है, आपे बख्श करे, कहना किशु ना जावई, जिस पावे तिस दे, नानक गुरमुख पाई है, आपे जाने सोए, श्री राग महला तीजा, सच्चा साहिब सेवी है, सच वडियाई दे, गुर प्रसादी मन वसै, हौ मैं दूर करे।

नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाऊ रहाऊ मनमुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाऊ बहु जूनी पौंदा फिरै यूं सुन्ये घर काऊ गुरमती घट चानना

पाई लाहा हर हर नाम मिले सहजी नाम समाई बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड़ लहु जिदू पाईए सच सोए असुर संगारे सुख वसै जो तिस भावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जोत दोए मूर्ति।

लागे गुर बिन भगत ना होए बिन गुर भगत ना पाई है जे लोचै सब कोई रहाऊ।

अंते होए सखाई, अपने मनचित कह कहाई, बिन गुर आप ना जाई। हर जीव दाता भगत वछल है, कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुत दे प्रभ आपे, गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा, धन जननी जिन जाया, धन पिता प्रधान, सतगुर सेव सुख पाया। विचों गया गुमान, दर सेवन संत जन खड़े, पायन गुणी निदान। मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए, गुर का शब्द मन वसै, मन तन निर्मल हो।

रे गुरमुख बूझे कोई बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए रहाओ जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया बिन चाखे भरम भुलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए पीवत हूं परवान भया

कमाए। जात सत संयम नाम है, विण नाम है निर्मल ना होए। पूरे भाग नाम मन वसै, शब्द मिलावा होए। नानक सहजे ही रंग वरतदा।

मुख द्वार, गुर प्रसादी मिल रहे सच नाम करतार। एहु मनुआ अत सबल है, छड़े ना कितै उपाय, दूजे पाए दुख नाहिंदा, बहुती दे सजाए। नानक नाम लगे से उभरे हम।

सतगुर सेव मन निर्मला हौं मैं तज वेकार आप छोड़ जीवत मरे गुर कै शब्द विचार धंदा तावत रह गए लागा साच प्यार सच रते मुख उजले तित साचै दरबार सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार इशनान दान जेता करह दूजे भाई खुआर हर जियो अपनी कृपा करे ता लागै नाम प्यार नानक नाम संभाल तू गुर कै हित अपार श्री राग महला तीजा किस हौ सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाय सतगुर का भाणा मन लई विचों आप गवाय एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आय नामै ही ते सुख पाई सच्चै शब्द सुहाय मन मेरे अन दिन जाग हर चेत अपनी खेती रख लै कूंज पड़ेगी खेत रहाओ मन कियां इच्छा पूरियां शब्द रहया भरपूर भै पाए भगत करह दिन राती हर जीव वेखै सदा हदूर सच्चा शब्द सदा मन राता भ्रम गया शरीरों दूर निर्मल साहिब पाया साचा गुणी गहीर जो जागे से उबरे सूते गए मोहाए सच्चा शब्द ना पछाणियो सुपना गया विहाय सुनिए घर का पौना ज्यों आया त्यों जाय मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मुँह देसी जाय सब किसे आपे आप है हम मैं विच कहन ना जाय गुर कै शब्द पछाणिए दुख हम मैं विचों गवाय सतगुर सेवन अपना हम तिनकै नागो पाए नानक दर सच्चै सच्यार है हम तिन बलिहारे जाऊं श्री राग महला तीजा जे वेला वक्त विचारी है ता कित वेला भगत होए।

अगली मनुआ रज्जा सहज सुपाय गुर का शब्द अमृत है जित पीते तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहया समाय आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाय बाणी वजी चौ जुगी सचो सच सुनाय हौ मैं मेरा रह गया सच्चे लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है बिन कर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिसे आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायुन जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन हर राखिया उर तार।

शब्द सवारन हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिन आय बिन नावे सब डुमणी दूजे पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पुलाना अंदला फिर आवे जाय नदर करे।

सुहागणी जिनको नदर करे खसम पछाण है अपना तन मन आगे दे घर वर पाया अपना हम मैं दूर करे नानक शोभा वंतियां सुहागणी अन दिन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर रावे है अपना।

सोई। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होई। नानक नाम संभाल तू, जित सेवे है सुख होई। श्री राग महला तीजा, जग हों मैं मैल दुख पाया। मल लागी दूजे पाई, मल हों मैं धोती किवें ना उतरै। जे सो तीर्थ नहाए, बहु

गुर सरणी आवे ता निर्मल हुई, मन मुख हर हर कर थके मैल ना सकी तो होए रहाउ। मन मैल है भगत ना होवे नाम ना पाया जाए, मन मुख मैले मैले मोए जासन पत गुआए। गुर प्रसादी मन वसै मल हम मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरै दीपक बाली है त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए। हम किया हम करहेंगे हम मूर्ख गावार, करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार। माया जेवड़ दुख नहीं सब भव थके संसार, गुरमति सुख पाई है सच नाम उरतार। जिसनो मिले सो मिले हम तिस बलिहारे जाऊं, ए मन भगती रत्या सच बाणी निज थां। मन रत्ते जिहवा रत्ती हर गुण सच।

नानक नाम ना विसरै सच्ची माही समां। श्री राग महला चौथा कर पहला, मैं मन तन बिरहो अत अगला। क्यों प्रीतम मिले घर आए, जा देखा प्रभ अपना। प्रभ देखिया दुख जाए, जाए पुछा तिन सजना। प्रभ कित बिद मिले मलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मेले हर सोए। रहाउ सतगुरु दाता हर नाम का, प्रभ आप मलावै सोए। सतगुर हर प्रभ बुझिया, गुर जेवड़ अवर ना कोए। हौ गुर सरनाई टह पवा, कर दया मेले प्रभ सोए। मन हठ किने ना पाया, कर अपाव थके सब कोए। सहस सियाणप कर रहे, मन कोरै रंग ना होए। कूड़ कपट किने ना

थीए, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाई रहाउ, नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवै लगिया, कड रतन देवै परगास, धन वड भागी वड भागिया, जो आए मिले गुर पास, जिन्ना सतगुर पुरख न भेटे हो, से भागहीन वस काल, ओए फिर जोन पुआई है, विच विस्ता कर विकराल, ऊना पास दुआस न पीती है, जिने अंतर क्रोध चंडाल, सतगुर पुरख अमृत सर, वडभागी नावह आए, हुन जन्म जन्म की मैल उतरै, निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया।

गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाय हीरा हीर मिल भेदया रंग चलूलै नाय मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मलावै सोए रहाओ मन रंग हो वडभागी हो गुर तुठा करे पसाओ गुर नाम दरडारे रंग स्यो आऊ सतगुर कै बल जाऊ बिन सतगुर हर नाम ना लभई लख कोटि कर्म कमाऊ बिन भागा सतगुर ना मिलै कर बैठिया निकट नित पास अंतर अज्ञान दुख भरम है विच पड़दा दूर पई आस बिन सतगुर भेटे कंचन ना थीऐ मनमुख लोहो बूढ़ा बेड़ी पास सतगुर बोहत हर नाव है इत बिद चढ़िया जाय सतगुर कह पाण जो चलै विच बोहित बैठा आय तन तन वड भागी नानका जिन्ना सतगुर लय मलाय श्री राग महला चौथा हौ पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रव दसे तिन जाऊ जिन्नी मेरा प्यारा रावया तिन पीछे लाग फराऊ कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाऊ मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मलाए हौ सतगुर बिटो वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए रहाओ हुए नमाणी तह पवां पूरे सतगुर पास निमाणिया गुरमान है गुर सतगुर करे सबास हौ गुर सालाहे न रजू मैं मेले हर प्रभ पास सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन भागा दर्शन ना थीऐ भागहीन बह रोए जो हर प्रभ भाणा सो थीआ तुर लिखिया ना मेटै कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलह समाए श्री राग महला चौथा रस अमृत नाम रस अत भला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सोहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए ओए वे परवाह ना बोलनी हो मल मल तुआ तिन पाए भाई रे मिल सज्जन हर गुणसार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डै हो मैं मार रहाओ गुरमुखियां सुहागनी तिन दया पई मन आई सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए से वड भागी वड जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस बण तिन सबत है भागहीन नहीं खाए बिन सतगुर पल्लै ना पवै मनमुख रहे बिललाए ओए सतगुर आगै ना निमह ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वस्या मन सोए श्री राग महला चौथा दिनस चढ़ै फिर आथवै रैन सबाई जाए आव कटै नर ना बुझै नित मूसा लाज टुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मनमुख लग माखी पचै पचाए भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए उन्नी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दरगाह मनी है हर आप लए गल लाए गुरमुखा नु पंथ प्रगटा दर ठाक ना कोई पाए
हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाय अनहद तुनी दर वज दे दर सच्चै सोभा पाय जिन्नी गुरमुख नाम सलाहया तिन्ना सब को कह सबास इनकी संगत देह प्रभ मैं जाचक की अरदास नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा जिन अंतर नाम परगास श्री राग महला पंजवां कर पहला क्या तू रत्ता देख कै पुत्र कलत्र शिंगार रस भोग है खुशियां करह मान है रंग अपार बहुत करह परमायसी वरत है हुए अपार करता चेतना आवई मन मुख अंध गुवार मेरे मन सुख दाता हर सोए गुर प्रसादी पाईए कर्म प्राप्त होए रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहु रंगे किए रथ अथाक किस ही चेतना पावहि बिसरिया सब साक सिरजनहार पुलाया विण नावै ना पाक लेंदा बद दुआए तू माया करह एकत जिसनो तू पतियां एंदा सो सन तुझे अनित अहंकार करह अहंकारिया व्यापिया मन की मत इन प्रभ आप पलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हूं मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए नानक रत्ता रंग हर सब जग मह चानन होए श्री राग महला पंजवा मन बलास बहु रंग घना दृष्ट भूल खुशियां छत्र धार बादशाहियां विच सहसे परियां भाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख बधातै दुख सहसा मिट गया रहाव जेते थान थनंतरा केते भावे आया धन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परिया हुक्म चलाए निसंग होए वरतै अफरिया सब को बस गत कर लयोन बिन नावै खाक रलिया कोट ते तीस सेवका सिद्ध साधक दर खरिया ग्रंबारी वड साहबी सब नानक सुपन थिया श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिया बिन बुझे मुगद अजान सो प्रभ चेतना आयु छूटैगी बेबान सतगुर सेती चित लाए सदा सदा रंग मान प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कितक फकड़ी सब मुकदी चली रैन रहाउ कुदम करे पस पंखी।

नह डडोरी पक्की वडण हार लै लै दात पहुंतिया लावे कर तैयार जां हुआ हुक्म किरसान दा तानुण मिणिया खेतार पहला पैर तंदै गया दूजे भर सोया तीजे चाक चखाया चौथे भोर भया कद ही चेतना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिसते सो जी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हरे अंतर जामी जान श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसर ना जाओ धंधा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआओ आसा सबे लाए कै इका आस कमाओ जिन्नी सतगुर सेव्या इन अगे मिलिया थाओ मन मेरे करते नू सलाहे सबे छड सियाण पा गुर की पैरी पाहे रहाओ दुख भुख नह व्यापई जे सुख दाता मन होए कित ही कम न सिजिया जा हृदय सच्चा सोए जिस तू रख है हाथ दे तिस मार न सकै कोए सुख दाता गुर सेविया सब अवगण कड्डै धोए सेवा मंगै सेव को लाइया अपनी सेव साधु संग मसकते टूठे पावा देव सब किस वसगत साहिब आपे करन करेव सतगुर कै बलिहार ने मनसा सब पूरेव इको दिसै सज्जनो इको भाई मीत इक सह दी सामगरी इक सह दी है रीत इक ससियो मन मानिया ता हुआ निहचल चीत सच खाना।

जे आवै एक हाथ जन्म पदार्थ सफल है, जे सच्चा शब्द काथ गुरते महल प्राप्ति, जिस लिखिया होवै मथ मेरे मन एक स्यों चित लाए, एक सबिन सब धंध है सब मिथ्या मोह माय, रहाउ लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए, जिस को पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गहे, सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार, दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार, बाहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार, थान सुहावा पवित है जिथे संत सभा, ढोई तिस ही नो मिलै जिन पूरा गुरु लब्बा, नानक बद्दा करता हां जिथे मृत ना जन्म जरा, श्री राग महला पंजवा सोई त्याई जीअड़े, सिर शाह पातशाह तिस ही की कर आसमन जिसका सब सविसाह, सब सियाणपा छड कै गुर की चरणी पाह, मन मेरे सुख सहज सेती जपनाओ, आठ पहर प्रभ त्याए तू गुण गोविंद नित गाओ, रहाओ जिसकी सरनी परमना जिस जेवड़ अवर ना कोई, जिस सिमरत सुख होए घना दुख दर्द ना मूले होए, सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए, साध संगत होए निर्मला टटिए जम की फास, सुख दाता पै भंजनो तिस आगे कर अरदास, मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवै रास, बहुतो बहुत बखाणिए ऊचो ऊचा थाउ, वरना चिहना बाहरा कीमत कह ना सकाउ, नानक को प्रभ मया कर सच देव हो अपना नाउ, श्री राग महला पंजवा नाम त्याए सो सुखी किस मुख उजल होए, पूरे गुरते पाईए प्रगट सबनी लोए, साध संगत कै घर वसै एको सच्चा सोए, मेरे मन हर हर नाम त्याए नाम सहाई सदा।

माया का रंग सब फिक्का जातु बिनस निदान जां कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेणुका अपना आप त्याग अपाव सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त भाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै हम मैं ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखनहार एकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस सरनाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुरपूरा आराद नित एकस की लिव लाग रहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता एकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोह ना विसरै जिन सब किस वस कीता कर इको बाहर इको थान थनंतर आप जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप एकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होए गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए श्री राग महला पंजवां जिन्ना सतगुर सिंह चित लाया से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल हुए तिन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम त्याए सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए रहाऊ जन्म मरण का पाऊ गया पाऊ भगत गोपाल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल थान थनंतर रव रहया

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख वसिया मन आय अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यों निवलाय मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाय गुण गोविंद नित गावणी निर्मल साचै नाय मेरे मन गुर शब्दी सुख होय गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाउ मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निदान अंतर जामी सदा संग करने हार पछान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा। पूरा सतगुरु जे मिले पाईए शब्द निदान कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगती सच्चा शब्द वसाह कर सेवा सुख सागर है सिर शाहां पातशाह चरण कमल का आसरा दूजा नाही थाओ मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाओ नीमाणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा। प्रीत लगी तिस सच सियो मरे ना आवे जाय ना वे छोड़िया विछड़ सब मह रहे समाय दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुर मेलाया माय भाई रे मीत करहो प्रभ सोय माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोय रहाउ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरध ना जानिए निश्चल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाईए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन होवे शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निधान नवतन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधी है दिन विसरो नहीं रात जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिय एह जिंद देखै सुनै हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद किरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा। मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सहज सवार सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उर तार
मेरे मन हर बिन अवर ना कोय, प्रब सरनाई सदा रहो, दुख ना व्यापै कोय रहाव। रतन पदार्थ मानका सोयना रूपा खाक, मात पिता सुत बंध पा, कूड़े सबे साक। गिनकी तात सह ना जानी, मनमुख पास न पाक। अंतर बाहर रव रहया, तिसनो जाने दूर, तृष्णा लागी रच रहया। अंतर हों मैं कूर, भगती नाम विहूनिया, आवह वंजह पूर। राख लिहो प्रभ करनहार, जी जंत कर दया, बिन प्रभ कोई ना रखनहार। महा बिकट जम भया, नानक नाम ना विसरौ, कर अपनी हर मया। श्री राग महला पंजवा, मेरा तन अर धन, मेरा राज रूप मैं देस। सुत दारा बनता अनेक, बहुत रंग अरवेस। हर नाम हृदय ना वसई, कार्य कितै ना लेख। मेरे मन हर हर नाम त्याए, कर संगत नित साधकी, गुर चरणी चित लाए रहाव। नाम निदान त्याई है, मस्तक होए भाग, कार्य सब सुवारी है, गुर की चरणी लाग। हो मैं रोग भ्रम कटी है, ना आवे ना जाग। कर संगत तू साध की, अठ सठ तीर्थ नाओ, जियो प्राण मन तन हरि, साचा इहो सुआउ। एथे मिले है वडाइया, दरग है पाव है थाउ। करे कराए आप प्रभ, सब किस तिस ही हाथ। मारिया पे जीवाल दा, अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ सरनागती, सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, सरन पए प्रभ आपने, गुरु हुआ कृपाल। सतगुर कै अपदेसिय, बिन से सर्व जंजाल। अंदर लगा राम नाम, अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी, एक निमख ना मनो वसार रहाव। गुण गोविंद नित गावी है, अवगुण कटन हार। बिन हर नाम ना सुख होए, कर डिठे बिस्थार। सहजे सिफती रत्या, भवजल उतरे पार। तीर्थ वर्त लख संजमा,

सदा सदा आराधी है। एहा मातव सेख मन तन मिठा तिस लगे, जिस मस्तक नानक लेख श्री राग महला पंजवा संत जन हो।

हर जन हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां कर दूजा गोयल आया गोयली क्या

किसह त्यागु मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन मह त्याई छोड़ सगल सियाणपा साच शब्द लिव लाए रहाउ। दुख कलेश ना पौ ब्यापै।

धारै पाप सगली जाहि हौ तिनकै बलिहारनै जे गुर की पैरी पाहि साध संगत मन वसै साच हर का नाऊ से वडभागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ श्री राग महला पंजवां संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उदार जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया हृदय का आधार रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार

जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरे आपासार कहो नानक गुर भरम काटिया सगल

भाव मान अभमान मंदे सो सेवक नाही तात समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही कहन कहावन एहु कीर्त करला।

बलिहार ने तुस दिता अमृत नाम रहाओ, जिन तू सेविया पाओ कर से पुरख सुजान। तिन्ना पिछे छुटी है जिन अंदर नाम निदान, गुरजे वड़दाता को नहीं जिन दिता आत्म दान। आए से परवान है जिन गुर मिलिया सुपाई, सच्चे से तीरतिया दरगाह बैसन जाय। करते हाथ वड्याईया पूर्व लिखिया पाई, सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक। सचो सच बखाणीए सचो बुद्ध बबेक, सर्ब निरंतर रव रहिया जप नानक जीवै एक। श्री राग महला पंजवा गुर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार, सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार। सतगुर बच

हर हर नाम संभाल, साधु संगत मन वसे पूर्ण हो ऐ काल रहाओ। गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए, गुरिया गोचर निर्मला गुर जीवड़ अवर ना कोई। गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर किस नहीं गुर कीता लोड़े सो होए। गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पू

जितड़े फल मन बांची है तितड़े सत गुर पास पूर्व लिखे पावनी साच नाम दे रास।

पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन वावना ज्यों ज्यों जा पैवाई जिसनो वाही सुनाई है सो केवड़ कित थाई आखण वाली जीतड़ी

तेरे जुगहा जुगह पंडार महला पहला सभी कंत महलियां सगलियां करहें श्रृंगार गणत गणावने

तुद पावन सुहागनी अपनी कृपा लह सवार रहाउ गुर शब्दी शिंगारियां तन मन पिर कै पास दुए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रत्ती सच पै वसी पाए।

आर दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार सुभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जानी साचे गुर कहित प्यार निस अंधारी सुतिए क्यों पिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन धन जल बल जाय जा धन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाय सेजै कंत मेहलड़ी सूती बूझ ना पाए हों सुती पिर जागना किस को पूछो जाय सतगुर मेली पै वसी नानक प्रेम सखाय श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचो मान महत तू आपे देवन हार हर जियो तू करता करतार ज्यो पावे त्यो राख तू हर नाम मिले आचार रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीत आपे मोती उजलो आपे भगत बसी।

असगाह अत सियाणी सोहणी क्यों कीतो वेसाह कीते कारण पाकड़ी काल न टले सिराह भाई रे इउं सिर जाणो काल ज्यों मच्छी त्यों माण।

तू सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान जिन्नी सच्चा मन्या इन मन सच ध्यान मन मुख सूचे जानिए है गुरमुख जिन्ना ज्ञान सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए साजन मिले है सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए ना मैं अंदर हौ वसा नाओ वसै मन आए बाज गुरु गोबार है बिन शब्द बूझ ना पाए गुरमति परगास हुई सच

लड़हार गुरशब्दी सालाहिया अंत ना पारावार तिथे काल ना अपड़े जिथे गुर का शब्द अपार हुक्मी सबे उपजह हुक्मी काल कमाहे हुक्मी काल है वस है हुक्मी साच समाहे नानक जो तिस

सोह प्रव जानिय साचो साचै नाई सा तन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग महली महल बुलाई है सो पिर रावे रंग सच सुहागन सा भली।

फिरा बिन गुर बूझ ना पाऊं, नाम भूली जे फिरा फिर आऊं जाऊं। पुछो जाए पंधाऊआ, चले चाकर होए राजन जाने अपना, दर कर ठाक ना होए। नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोई, श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए। निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसे, सो जाने अब पीर सहज ते सुख अगलो, ना लागे जम तीर पाई रे। मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल भरी सब जाए। रहाओ हर का मंदर सोना, किया करन हार राव सस दीप अनूप जोत, त्रिभवन जोत अपार। हाट पटन गढ़।

प्रगत सब जानिए जे मन राखै ठाई ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मलाय कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठहर ना पाईनी खरे खजाने पाए आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए समाए सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोई सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होए।

गुणतास साचर तेसे जिन गए हम सद बलिहारे जास चहो जुग मैले मल भरे जिन मुख नाम ना होए भगती पाए विहूणिया मुह काला पत खोए जिन्नी नाम वसारिया अवगण मुठी रोए खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए आप पछाण घर वसै हम मैं तृष्णा जाए नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए श्री राग महला पहला सुन मन भूले बावरे गुर की चरणी लाग हर जप नाम त्याए तू जम डर पै दुख भाग दुख घणो दोहागनी क्यों फिर रहे सुहाग भाई रे अवर नाही मैं थाऊं मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊं रहाऊ गुरमत पत साबास तिस तिस कै संग मलाऊं तिस बिन घड़ी ना जीवऊ।

ज्यो कलर की पीत तब लग महल ना पाई है जब लग साच ना चीत शब्द रपै घर पाई है।

तेसे निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उधार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रह फिर मरे ना दूजी वार शब्द ही ते पाई है हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिर मर जन्मे वारु वार सब सलाह है आपको बड़ो बडेरी होय गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होय नानक।

जाने सुख से जड़ी बिन पिर बाद सिंगार दुख घणो दुहागणी ना कर सेज पतार मन रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाईए शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाईए हर वर सहज सिंगार सच माने पिर से जड़ी गूड़ा हित प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार सच मिनु वर कामणी फिर मोही रंग लाए मन तन साच विगसिया कीमत कहन ना जाए हर वार घर सुहागणी निर्मल साच नाए मन मह मनुआ जी मरे ता फिर रावे नार इकतता गैराल मिले गाल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजे खिन खपे।

टोली है, कथन ना पाया जाए, व्यापारी बन जा रिया, आए वजून खाए, कार कमाव है सच की, लाहा मिले र जाए, पूंजी साची गुर मिले, ना तिस तिल ना तमाए, गुरमुख तोल तोलाए सी, सच तराजी तोल, आसा मनसा मोहनी, गुर ठाकी सच बोल, आप तलाए तोल सी, पूरे पूरा तोल, कथन कहन ना छुट्टी है, ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाई है।

जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी है पाइए गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर

अंतर रव रहिया बख्शे भगत भंडार रहाव। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अधिको त्यों सुख कणो मन तन शांत शरीर। बिन जल घड़ी ना जीवई प्रभ जाने अब पीर। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावली एक बूंद ना पवई के। कर्म मिले सो पाई है किरत पया सिर दे। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल दुध होए आवटन आपे खवै दुध कौ खपण ना दे। आपे मेल वशुन्या सच वडे आई दे। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर। मन मुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर। मन

गुरमत हुए ता पाईए, सच मिले सुख होए, सच्चा नेहो ना टुटई, जे सतगुर भेटै सोई, ज्ञान पदार्थ पाईए, त्रि भवन सोजी होए, निर्मल नाम ना विसरे, जे गुण का गाहक होए, खेल गए से पंख नू जो चुग दे सर तल, करी के मोहत के चलना।

आई मन मुख सूझी ना पवै बिछड़ चोटा खाई नानक दर कर एक है अवर ना दूजी जाई। श्री राग महला पहला मन मुख भुलै भलाई।

माया परम भलाई परम भुली दोहागणी ना फिर अंक समाय रहाउ भूली फिरै दसंतरी भूली ग्रह तज जाय भूली डूंगर थल चढ़ै पर मैं मन डोलाय तुरह विछुनी क्यों मिलै गर्भ मुठी बिललाय बिछड़िया गुरमेल सी हर अस नाम प्यार साच सहज सोभा घणी हर गुण नाम आधार ज्यों पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुलिए भेखी बहुत अभमान तीर्थ नाता क्या करे मन मह महल गुमान गुर बिन किन समझाइए मन राजा सुनतान प्रेम पदार्थ पाईए गुरमुख तत विचार सा तन आप गवाया।

चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसया हूं मैं बिचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाइए आप ना लया जाए गुर की चरनी लग रहो।

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावह सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख। जो दिसै सो चलसी।

कीमत ना पवे सब डिठी ठोक बजाय कहने हाथ ना लभई सच टिके पत पाय गुरमत तू सलाहना होर कीमत कहन ना जाय जित तन नाम ना पावई तित तन हो मैं वाद गुरबिन ज्ञान ना पाई।

मन मुख जाने अपनी तियां पूत संजोग नारी देख भगासी है नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग चित चल वित जावणु साकत डोल डोलाई बाहर ढूंढ विगुची है कर्म है वस्त सुथाई मन मुख होमे करमुसी गुरमुख पल्ले पाई साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रखत बिंद का एहो तनु अग्नि पास पिराण पवन कै वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ न लोड़ै कोई सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वस्या सोई नाम मिहुणे क्या गणी जिस हर गुर दर्स ना होए ज्यों सुपने निस भुली है जब लग निंदरा होए इउं सरपन कै वस जियड़ा अंतर हों मैं दोए गुरमत होए विचारी है सुपना एहो जग लोए अगन मरे जल पाई है जो बारक दूध माए बिन जल कमल सोना थी है बिन जल मीन मराए नानक गुरमुख हर रास

अष्टपदियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना होए आपे आप मलाए बूझे ता निर्मल होवे।

आई। बिन सतगुरु को मग ना जाने, अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मन नहीं वसिया, अंत गया पछताई। पे अड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया। अन दिन भगत करह दिन राती, हम मैं मोच काया। जिस स्यो राता तैसो हुए, सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाहु लाई, गुर शब्दी बीचार। सतगुर सेवे सहज उपजे, हम मैं तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसे, सच रखिया उरतार। प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाई। नाम निधान हर मन वसे, हो मैं दुख सब जाई। सतगुर शब्द सुनाया, हो सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कह कहाई, बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत वशल सुख दाता, कर कृपा मन वसाई। नानक सुख

जे सतगुर सेवन से उबरे हर से ती लिव लाए मन रे गुरमुख नाम त्याए तुर पूर्व करता लिखिया इन्ना गुरमत नाम समाए रहाओ बिन सतगुर प्रतीत ना आवे नाम ना लागू पाओ सुपनह सुख ना पावी दुख मह सवै समाए जे हर हर कीचै बहुत लोची है कीर्तना मेटिया जाए हर का भाणा भगती मन्या से भगत पए दर थाए गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों बिन कृपा लया ना जाए जे सौ अमृत नीरी है पी बिख फल लागै ताए से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार सतगुर का भाणा कमावंदे बिख होमै तज बेकार मन हठ कितै उपाय ना छूटिऐ सिमरत शास्त्र सोधो हो जाए मिल संगत साधु उबरे गुर का शब्द कमाए हर का नाम

गुर परसादी पाईए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच चुगै गुर पाए।

गुर कै पाण जे चल है ता अन दिन राच है हर नाई रहाऊ। पंखी बिरख सुहावड़े उड़ह चहो दिस जाहे, जेता उड़ह दुख घणे नित दाजह तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचे सहज सुपाहे। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिव लाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राओ। कटिए तै नित जालिए ओना शब्द ना नाओ, हुक्मे कर्म कमावणे पए किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाऊ, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाऊ। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार, मन हट कर्म कमावंदे नित नित होहे खवार। अंतर शांत ना आवई ना सच लगे प्यार, गुरमुखियां मुह सोहणे गुर कै हित प्यार। सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार, आए से परवान है सब कुल का करह उदार। सब नदरी कर्म कमावंदे नदरी बाहर ना कोए, जैसी नदर कर देखे सच्चा कैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए, श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम त्याई है। मनमुख बूझ ना पाई गुरमुख सदा मुख उजले, हर वस्या मन आई सहजे ही सुख पाई है सहजे रह समाई। पाई रे दासन दासा होए, गुर की सेवा गुर भगत है बिरला पाई कोई। रहाओ सदा सुहाग सुहागणी जे चल सतगुर पाई, सदा फिर निह चल पाई है ना वो मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछुड़े फिर कै अंक समाए, हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई भेखी परम पलाए, गुरमती हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चकाया गुरमती सहज सुपाए, बिन शब्द जग दुखिया फिरै मन मुखा नु गई खाए। शब्दे नाम त्याई है शब्दे सच समाए, माया भूले सिद्ध फिरै समाध ना लगे सुपाए। तीने लो व्यापत है अधिक रही लपटाए, बिन गुर मुक्त ना पाईए ना दुगदा माया जाए। माया किसनो आखिए क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख एहो जियो बद है हम कर्म कमाए। बिन शब्द है परम ना चुकई ना विचो हम जाए, बिन प्रीति भगत ना हो गई बिन शब्द है थाए ना पाए। शब्दे हों मैं मारिए माया का भ्रम जाए, नाम पदार्थ पाईए गुरमुख सहज सुपाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए, भगत वश्चल हर मन वस्या सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर सालाहिए कर्म प्राप्त होए, श्री राग महला तीजा। माया मोह मेरे प्रभ कीना आपे परम पलाए, मनमुख कर्म करह नहीं बूझह बिरथा जन्म गवाए। गुरबाणी इस जग मह चानन कर्म वसह मन आए, मन रे नाम जपो सुख होए गुर पूरा सालाही है सहज मिले प्रभ सोई। रहाओ परम गया पहु भागिया हर चरणी चित लाई, गुरमुख शब्द कमाई है
हर वसै मन आई, कर महल सच सुमाई है।

कह पाई दैत पुत कर्म धर्म किस संजम ना पड़े दूजा भाऊ ना जाने सतगुरु भेटे निर्मल हुआ अन दिन नाम बखाने एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर ना जाने खट दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम पलाए

पंडित पड़ पड़ वाद विखाण है बिन गुर परम पलाय लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जा नाउ चेतै तां गत पाई जा सतगुर मेल मलाई सत संगत मह नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुर अपने बिटो जे हर सीती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सीती रंग राता प्रभ निकट बसै सबना घट अंतर।

बिन गुर पाया न जाय, पल पल पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज न होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गाव्या थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरै।

त्रै गुण भरम भलाय, पढ़िया गुणिया क्या कथिया, जा मुंडो कुथा जाय। चौथे पद मह सहज है,

सहज मलाएसी शब्द मलावा होए, बिन सहजे सब अंध है माया मोह गुबार। सहजे ही सूझी पई सच्चे शब्द अपार, आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार। सहजे अधिष्ट पछाणिए निरपौ

समाते। गुरमुख अमृत बाणी बोलह सब आत्म राम पछाणी, एको सेवन एक अराध है।

सच्चा शब्द पाती उपजय सच्चे सच्चा नाम जिन्नी हम मैं मार पछाणिया हम तिन बलिहार जाऊं मन मुख सच ना जाननी।

इहो जग जल ता देख कै भज पए सतगुर सरना सतगुर सच दड़ाया सदा सच संयम रहना सतगुर सच्चा है बोहिथा शब्दे पव जल तरना लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पथ खोई सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन नानक भगत सुखिये सदा सच्चे नाम रचन श्री राग महला पंजवा जाको मुश्किल अत बने टोई कोए ना दे लागू होए दुश्मना साक पे भज खले सबो भजे आसरा चुके सब असराऊ केते आवे उस पार ब्रह्म।

बला नांग भूख की पीर दमड़ा पल है ना पवे ना को देवे तीर स्वार्थ स्वाहो ना को करे ना किश होवे काज कित आवे उस पार ब्रह्म ताने चल होवे राज जा को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कटम पलिटिया कदे हरख कदे सोग गौण करे चौहु कुंटका घड़ी न बैसन सोए जित आवै उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए काम क्रोध मोहे वस किया किरपन लोभ प्यार चारे किलविख उन अग किए हुआ असुर संघार पोथी गीत कवित किश कदे न करन धरिया जित आवै उस पार ब्रह्म ता निमख सिमरत तरिया शास्त सिमरत बेद चार मोखागर बिचरे तपे तपी सर जोगिया तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलख सिखदारियां रस भोगण बिसथार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़ रसातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृत ना आवी चित तिस अहनस भोग भोग सब किश की तुन अपना जिये ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग ज्यो ज्यो ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग दोहा सिनिया का खसम आप अवर न दूजा थाउ सतगुर तुठे पाया नानक सच्चा नाउ तेरी राग महला पंजवा घर पंजवा जानो नहीं पावे कवन बाता मन खोज मार्ग रहाउ ध्यानी ध्यान लाव है ज्ञानी ज्ञान कमाव है प्रभ की नहीं जाता भगवती रहत जुगता जोगी कहत मुक्ता तपसी तपहराता मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भगत नवै प्रकारा पंडित वेद पुकारा गृहस्थी गृहस्थ तरमाता एक शब्दी बहुरूप अवतूता कापड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती अपरसा एक लूक ना देवह दरसा एक मन ही ज्ञाता काटना कि नहीं कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता सगल उकत उपावा त्यागी सरन पावा नानक गुर चरण पराता एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला कर तीजा जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत ना पाया सुर्ग मच पाया।

प्रभु तियाया, जिए इच्छेड़ा फल पाया। सहा पातशाह सिर कसम तू, जप नानक जीवै नाउ जियो। तुदे आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया। सब सचो सच वर्तदा, जिस पावै तिसै बुझाई जियो। गुर प्रसादी पाया, तिथै माया मोह चकाया। कृपा करकै अपनी, आपे लए समाए जियो। गोपी नै गोवालिया, तुदे आपे गोए उठा लिया। हुक्मी भांडे साजिया, तू आपे भन सवार जियो। जिन सतगुर स्यों चित लाया, तिनी दूजा पाउ चुकाया। निर्मल जोत तिन प्राणिया, ओए चले जन्म सवार जियो। तेरिया सदा सदा चंगे आईया, मैं रात देह बड़े आईया। अण मंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो। श्री राग महला पंजवा, पै पाए मनाई सोए जियो। सतगुर पुरख मलाया, तिस जेवड़ अवन ना कोए जियो। रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा, अम अबे थाम मिठड़ा। भैन भाई सब सजना, तुद जेहा ना ही कोए जियो। तेरा हुक्मे सामने आया, मैं सत का हल जो आया। नाउ बीजन लगा आस कर, हर बोहल बख्श जमाए जियो। हाँ गुर मिले एक पछाणदा, दुइया कागल चेतना जानदा। हर इक तै कार लायोन, ज्यों भावे तिवें नभाए जियो। तुसी भोगे हो पुंचो हो भाई हो, गुर दी बाण कवाए पैनाइयो। हों हो आ माहर पिंड दा, बाने आंदे पांज शरीक जियो। हों आया सामे ते हंडिया, पांज किरसान मुजेरे मेहंदिया। कन कोई कड ना हंगई, नानक बुट्टा कुग ग्राउ जियो। हों वारी घुमा जामदा, इक साहा तुद त्याए दा। उजड़ थेहो वसायो, हों तुद विटहो कुर्बान जियो। हर इत्थै नित त्याहेंदा, मन चिंदी सो फल पाएंदा। सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो। मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा। नौ निध नाम निधान हर, मैं पल्ले बद्दा शिक जियो। मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुरे अंतर शब्द वसाया। सतगुर पुरख विखा लिया, मस्तक तर कै हाथ जियो। मैं बद्दी सच धर्म साल है, गुर सिखा लहंदा पाल कै। पैर धुआं पखा फेरदा, तिस निव निव लगा पाए जियो। सुन गल्ला गुर पह आया, नाम दान इशनान दड़ाया। सब मुक्त हुआ सै सारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो। सब सिष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कान सुनो अरदास जियो। ठोक बजाए सब डिठियां, तुसे आपे नयन छड़ाए जियो। हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा, पै कोई न किसै रजान दा। सब सुखाली बुठियां, एहो हुआ हले मीराज जियो।

सब इकट्ठे हुए आया, कर जासन वाट वटाया, गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए दियो, तू वरना चिहना बाहरा, हर दिस है हाजिर जाहरा, सुन सुन तुझे त्याई दे, तेरे भगत रते गुण तास जियो, मैं जुग जुग दई सेवड़ी, गुर कट्टी मेहंदी जेवड़ी, हौ बहोड़ सिंह ना नचो, नानक अवसर लद्दा पाल जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला, पहरे घर पहला, पहले पहरे रहण कै बणजारिया मित्रा, हुक्म पया गर्भास, उर्द तप अंतर करे बणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास, खसम सेती अरदास बखाणे, उर्द ध्यान लिव लागा, नाम रजाद आया कल पीतर, बाहुड़ जासी नांगा, जैसी कलम बुड़ी है मस्तक, ऐसी जी अड़े पास, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हुक्म पया गर्भास, दूजे पहरे रहन कह बणजारिया मित्रा, विसर गया ध्यान, हथो हथ नचाइए बणजारिया मित्रा, ज्यों जसुधा कर कान, हथो हथ नचाइए प्राणी, मात कह सुत मेरा, चेत अचेत मूड मन मेरे, अंत नहीं कश तेरा, जिन रच रचिया तिसह ना जाने, मन भीतर धर ज्ञान, कहो नानक प्राणी दूजे पहरे, विसर गया ध्यान, तीजे पहरे रहण कै बणजारिया मित्रा, तन जोबन स्यों चेत, हर का नाम ना चेत ही बणजारिया मित्रा, बद्दा छुट है जेत, हर का नाम ना चेत है प्राणी, विकल भया संग माया, तन स्यों रत्ता जोबन मत्ता, पहला जन्म गवाया, धर्म सेती वापार ना कीतो, कर्म ना कीतो मेत, कहो नानक तीजे पहरे प्राणी, तन जोबन स्यों चेत, चौथे पहरे रहण कै बणजारिया मित्रा, लावी आया खेत, जां जम पकड़ चलाया बणजारिया मित्रा, किसे ना मिलिया भेत, भेत चेत हर किसे ना मिलियो, जां जम पकड़ चलाया, झूठा रुदन हुआ द्वाले, खिन मह भया पराया, साई वस्त प्राप्त होई, जिस स्यों लाया हेत, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, लावी नुणिया खेत, श्री राग महला पहला, पहले पहरे रहण कै बणजारिया मित्रा, बालक बुद्ध अचेत, खीर पिए खेलाइए बण

आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बूढ़ी दूजै हेता कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटेंगा हर केता दूजे पहरे रहन के बन जारिया मित्रा पर जोबन मैं मत अहमस काम व्यापिया बन जारिया मित्रा अंदुले नाम ना चेता राम नाम घट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही जन्म मर हो गए झूठे तीर्थ वरत सुच संयम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबधा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा सर हंस उलथड़े आए जोबन घटै जरुआ जिनह बन जा रिया मित्रा आम घटै दिन जाए अंतकाल पछतासी अंबले जा जम पकड़ चलाया सब कुछ अपना कर कर राखिया खिन मह भया पराया बुद्ध वसरजी गई सियाणप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चित हो लिवलाए चौथे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा बिरध भया तन खीन अखी अंध ना दिसई बन जा रिया मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा कौ ताणा गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवण जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चलै क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओढ़क आया तिन सहया बन जा रिया मित्रा जर जरवाणा कन एक रत्ती गुण ना समाणिया बन जा रिया मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साके पाए भगत पै तरना पत सेती जावे सहज समावे सगले दुख मटावे कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावे श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा हर पाया उदर मंझार हर त्यावे हर उचरे बन जा रिया मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपे आराधे विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीवया जिसकी वस्त तिस चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख बीचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालिए बन जा रिया मित्रा लै मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा दित्ते नू लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन लिव लाए कहो नानक दूजे पहरे प्राणी तिस काल ना कबहू खाए तीजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा मन लगा आल जंजाल धन चितवे धन संचवे बन जा रिया मित्रा हर नामा हर ना संभाल हर नामा हर हर कदे ना संभाले जे होवे अंत सखाई एहो धन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनो कृपा करे गुरमेले सो हर हर नाम संभाल कहो नानक तीजे पहरे प्राणी जे जाए मिले हर नाल चौथे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा हर चलन वेला आंदी कर सेव हो पूरा सतगुरु बन जा रिया मित्रा सब चली रहन विहांदी हर सेव हो खिन खिन ढिल मूल ना करे हो
जिति अस्थिर जुग जुग होवो। हर सीति सदमान हुरलिया, जन्म मरण दुख खोवो। गुर सत गुर स्वामी भेद ना जानो, जित मिल हर भगत सुखांदी। कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, सफल हो रहण भगतां दी। श्री राग महला पंजवा, पहले पहरे रहण कै वणजारिया मित्रा। तर पाए ता उदरे माही, दसी मासी मानस किया वणजारिया मित्रा। कर मोहलत कर्म कमाहे, मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे। जैसा लिखत तुर पाया, मात पिता भाई सुत बनता। तिन भीतर प्रभु संजोया, कर्म सकर्म कराए आपे। इस जनते वास किश नाही, कहो नानक प्राणी पहले पहरे। तर पाए ता उदरे माहे, दूजे पहरे रहण कै वणजारिया मित्रा। पर जवानी लहरी दे, बुरा भला ना पछाणी वणजारिया मित्रा। मन मत्ता अहमेव, बुरा भला ना पछाणे प्राणी। आगे पंथ करारा, पूरा सतगुर कबहू ना सेवया। सिर ठाडी जम जंदारा, धर्म राय जब पकरस बबरे। तब क्या जवाब करे, कहो नानक दूजे पहरे प्राणी। पर जोबन लहरी दे, तीजे पहरे रहण कै वणजारिया मित्रा। बिक संचय अंध अज्ञान, पुत्र कलत्र मोहे लपटिया वणजारिया मित्रा। अंतर लहर लुभान, अंतर लहर लुभान प्राणी। सो प्रभ चित न आवै, साध संगत स्यो संग न किया। बहु जोनी दुख पावै, सिरजनहार वसारिया स्वामी। एक निमख न लगो ध्यान, कहो नानक प्राणी तीजे पहरे। बिक संचे अंध अज्ञान, चौथे पहरे रहण कै वणजारिया मित्रा। दिन नेड़े आया सोई, गुरमुख नाम संभाल तू वणजारिया मित्रा। तेरा दरगाह बेली होई, गुरमुख नाम संभाल प्राणी। अंते हुए सखाई, एहो मोह माया तेरे संग ना चाले। झूठी प्रीत लगाई, सगली रहण गुदरी अंधियारी। सेव सतगुर चानण होए, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे। दिन नेड़े आया सोए, लिखिया आया गोविंद का वणजारिया मित्रा। उठ चले कमाणा साथ, एक रत्ती बिनवना देवनी वणजारिया मित्रा। ओनी तकड़े पाए हाथ, लिखिया आया पकड़ चलाया। मनमुख सदा दुहेले, जिन्नी पूरा सतगुर सेवया। से दरगाह सदा सुहेले, कर्म धरती शरीर जोग अंतर। जो बोवे सो खात, कहो नानक भगत सोहै दरबारी। मनमुख सदा पवांत, श्री राग महला चौथा कर दूजा संत। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मुंद यानी पेयड़े। क्यों कर हर दर्शन पिखे, हर हर अपनी कृपा करी। गुरमुख सहोरड़े कम सिखे, सहोरड़े कम सिखे गुरमुख। हर हर सदा ते आए, सहियां विच फिरे सुहेली। हर दरगाह बहां लड़ाई, लेखा धर्म राय की बाकी। जप हर हर नाम किरखे, मुंद यानी पेयड़े। गुरमुख हर दर्शन दिखे, व्याह हुआ मेरे बाबला। गुरमुखे हर पाया, अज्ञान अंधेरा कटिया। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया, बलिया गुर ज्ञान अंधेरा पिनसिया।

अबनासी ना कदे मरे ना जाया व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया हर सत सते मेरे बाबला हर जन मिल जन सुहंदी एवकड़ै हर जप सुहेली विच सहुरड़ै खरी सुहंदी सहुरड़ै विच खरी सोहंदी जिन पेवकड़ै नाम संभालिया सब सफल्यो जन्म तिन्ना दा गुरमुख जिन्ना मन जिन पासा ढालिया हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरख आनंदी हर सत सत मेरे बाबला हर जन मेल जन सुहंदी हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो नान मैं दाजो हर कपड़ो हर सूबा देव हो जित सवर है मेरा काजू हर हर भगती काज सुहेला गुर सत गुर दान दवाया खंड वर पंड हर सूबा होई एहो दान नार लै रलाया होर मनमुख दाज जे रख दखल है सो कूड़ अहंकार कच पाजू हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजू हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल तन वेल वदंदी हर जुगा जुगो जुग जुगा जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की जिन्नी गुरमुख नाम ते आया हर पुरख ना कब ही बिनसै जावे नित देवै चढ़ै सो आया नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सोहंदी हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल तन वेल वदंदी श्री राग महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निबह तेरे नाले संग सहाय हर नाम त्याई बिरथा कोई ना जाए मन चिंदे से फल पावे चरण कमल चित लाए जल थर पूर रहया बनवारी घट घट नदर निहाली नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारिया जीओ मित्रा दिख सागर संसारी चरण कमल कर बोहित करते सहसा दुख न व्यापे गुर पूरा भेटै वडभागी आठ पहर प्रभ जापे आदि जुगादी सेवक स्वामी भगता नाम आधारी नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हार झूठ पसारी मन प्यारिया जियो मित्रा हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा हर दर निश्चल मल्ली हर दर सेवे अलख अपेवे निश्चल आसन पाया तह जन्म ना मरन ना आवन जाना संसार दुख मटाया चित्र गुप्त का कागद फारिया जमदूता कछु ना चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लगे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो सिमर स्वामी सुख गामी इच सगली पुनिया पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मिले श्री वछुनिया अंतर बाहर सरबत रवया मन उपजिया विश्वासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना मन प्यारिया जियो मित्रा हर जल मेल जीवे मीना हर पी आगाने अमृत बाने

पाए नाउ सर्बस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना। श्री राग के संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दखना हठ मजाहु महापिरी पसे क्यों दीदार संत सरनाई।

के स्वामी तार अनग्रहो मन तन अंक समावे दखना सोहंदड़ो हबठाए कोई न दिसै जूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेट ते संत तेरे बचन अनूप अपार संतन आधार बाणी विचारिए जियो सिमरत सास ग्रास पूर्ण विश्वास क्यों मनो बेसारिए जियो क्यों मनो बेसारिए निमख नहीं टारिए गुणवंत प्राण हमारे मन वांछत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारी नाथ के नाते सब कै साथे जप जुए जन्म ना हारी है नानक की बेनंती प्रभ पह कृपा कर पवज तारी है दखना धूड़ी मजन साधखे साई थिए कृपाल लद्दे हब्बे थोकड़े नानक हर तन माल संत सुंदर स्वामी धाम भगत है विश्राम आसा लग जीव ते जियो मन तने गलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिकै बन फीका जानिया भये कृपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निध मानिया सर्व सो सुख आनंद कन प्यारी हर रतन मन अंतर सीवते

आप मोहियो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए जाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहया भगत लखियण कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ ना माया होया।

हर रंग तिन्नी ब्रह्म बीचारिया जियो ब्रह्म बीचारिया जन्म सुवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गहलीने हर जसो दीने जोन न तावे नह मरी सतगुर दयाल कृपाल भेट तहरे काम क्रोध लोभ मारिया कथन न जाए अकथ स्वामी सदकै जाए नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सिरिया सब कोए जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर ना कोए जो मोहे माया चित लाइंदे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बिन अवर ना कोए हर गुर सरनाई पाईए बनजारिया मित्रा वडभाग प्राप्त होए रहाओ संत जना मिन पाईया हर किने न पाया नाउ विच हों मैं कर्म कमावंदे ज्यों वेसवा पुत निनाउ पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाउ वड भागी गुर पाया हर एलस लगा पाउ जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दरडाया हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ जब लग जोबन सास है तब लग नाम त्याए चलदिया नाल हर चल सी हर अंते लए छडाए हों बलिहारी तिनको जिन हर मन उठायाए जिन्नी हर हर नाम ना चेत्यो से अंत गए पछताए तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम त्याए मन हर हर प्रीत लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ हर आपे आप उपाएंदा हर आपे देवैली हर आपे परम भलाएंदा हर आपे ही मत दे गुरमुखा मन परगास है से विरले के ई के हों बलिहारी तिनको जिन हर पाया गुरमते जन नानक कमल परगासिया मन हर हर बुठड़ाए मन हर हर जपन करे हर गुर सरनाई भज पौ जिंदू सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईए कित भत गुरपूरा सतगुर भेटीऐ हर आए वसै मन चेत मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत मैं हर हर नाम वसाहु है हर नामे ही जत पत जन नानक नाम त्याया रंग रतड़ा हर रंग रत हर त्याहु हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास सेवक पाए वणजारिया मित्रा गुर हर हर नाम परगास तन तन वणज वापारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास जन नानक गुर तिन पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास हर त्याहु हो सास ग्रास मन प्रीत लगी तिन्ना गुरमुखां हर नाम जिन्ना रह रास रहाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा सलोका नाल सलोक महला तीजा रागां विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निःचल मत अपार रतन अमोलक पाया गुर का शब्द बीचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर अकार नानक सच्चै सतगुर सेवै सदा सच वापार महला तीजा होर बिरहा सब तात है जब लग साहिब प्रीत ना होए एहो मन माया मोहया
वेखण सुनण ना होए, सह देखे बिन प्रीत ना उपजे, अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतियां, सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक, इको दीवान हर, हर इक सैदा है अमर, इको हर चित धर। हर तिस बिन कोई नाही, डर भ्रम भउ दूर कर। हर तिसै नु सलाहे, जे तुद रखै बाहर कर। हर जिसनो होए दयाल, सो हर जप भउ बिकम तर। सलोक महला पहला, दाती साहिब संदियां। क्या चलै तिस नाल, इक जा गंदे नाल हन, इक ना सुतियां दे उठाल। महला पहला।

होई सब आपे तुदे उपाय कै आप कारै लाई तू आपे वेख विगसदा अपनी वडियाई हर तुदहु बाहर किछ नाही तू सच्चा साई तू आपे आप वरतदा सबनी ही थाई हर तसै त्यावहु संत जन हो जो लय छुड़ाई। श्लोक महला पहला। फक्कड़ जाति फक्कड़ नाव सबना जिया इका शाव आप हो जे को भला कहाए नानक ता पर जापै जां पत लिखै पाए। महला दूजा। जिस प्यारे सियोने हो किसे आगे मर चलिया त्रिग जीवन संसार ता कह पाछै जीवना पौड़ी तुदे आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया वाह पार करीवे इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे वे आप छुट्टे परवार सियों तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला। कुदरत करके वसिया सोए वक्त भी चारे सो बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जां कीमत पाए ता कही ना जाए सरै सरयत करह विचार बिन बूझे कैसे पावे पार सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जिहे तिर देखा तेहे तिर मौजूद। महला तीजा। गुर सभा एव ना पाई ना नेड़ ना दूर नानक सतगुर ता मिलै जा मन रह हदूर। पौड़ी। सप्त दीप सप्त सागरा नवखंड चार वेद दस अष्ट पुराण हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा सब तुझै त्यावह जी जंत हर सार पाणा जो गुरमुख हर अराध दे तिन्हों कुर्बाणा तू आपे आप वरतदा कर चोज वडाणा। श्लोक महला तीजा। कलोम साजनी क्या सदाई है हृदय ही लिख ले हो सदा साहिब कै रंग रहै कबहू ना टूट सने हो। कलोम साजनी जाए सी लिखिया पी नाले जाए नानक सह प्रीत ना जाए सी जो तुर छोड़ी सच्चै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल ना चलई वेखो को व्यो पाए सतगुर सच दरड़ाया सच रहो लिबलाए नानक शब्दी सच है करमी पल्ले पाए। पौड़ी। हर अंदर बाहर एक तू तू जान है भेत जो कीचै

माया सब आपे आप वरते करता जो भावै सो ना हिलाया जन नानक नाम लही ता जीवै बिन नामै खिन मर जाया पौड़ी जो मिले आ

तरिया उस अंतर नाम निदान है नामू परवरिया नाउ पूजी है नाउ मनी है नाए किल विख सब हिरिया जिन्नी नाम ते आया एक मन एक चेत से अस्थिर जग रहिया। श्लोक महला तीजा आत्मा देव पूजी है गुर कै सहज सुभाय आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत होए ता घर ही परचा पाए आत्मा अडोल ना डोले गुर कै भाई सुभाय गुर विण सहज ना आवै लोभ मैल ना विचों जाए खिन पल हर नाम मन वसै सब अठ सठ तीरथ नहाए सच्चे मैल ना लगे मल लागै दूजै पाए धोती मूल ना उतरै जे अठ सठ तीरथ नहाए मनमुख कर्म करे अहंकारी सब दुखो दुख कमाए नानक मैला उजल तां थीऐ जा सतगुर माहि समाए। महला तीजा मनमुख लोक समझाइऐ कदहु समझाया जाए मनमुख रलाया नार लै पयै किरत फराए लिव धात दोए रहा है हुक्मी कार कमाए गुरमुख अपना मन मारिया शब्द कसवट्टी लाए मन ही नाल झगड़ा मन ही नाल सत मन ही मन समाए मन जो इच्छे सो लहै सच्चै शब्द सुभाए अमृत नाम सद पुंचीऐ गुरमुख कार कमाए विण मनै जे होरी नाल लुजना जासी जन्म गवाए मनमुखी मन हठ हारिया कूड़ पसत कमाए गुर प्रसादी मन जिणै हर सेती लिवलाए नानक गुरमुख सच कमावै मनमुख आवै जाए पौड़ी हर के संत सुनो जन भाई हर सतगुर की एक साखी जिस तुर भाग होवै मुख मस्तक इन जन लै हृदय राखी हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम गुर बचनी सहजे चाखी तह भया प्रगास मिटिया अंधियारा ज्यों सूरज रहण कराखी अदिष्ट अगोचर अलख निरंजन सो देखिया गुरमुख आखी। श्लोक महला तीजा सतगुर सेवे अपना सो सिर लिखै लाए विचों आप गवाए कै रहन सच लिवलाए सतगुर जिनी ना सेवियो तिन्ना बिरथा जन्म गवाए नानक जो तिस भावै सो करे कहना किछु ना जाए। महला तीजा मन वेकारी वेड़िया वेकारा कर्म कमाए दूजै भाए अज्ञानी पूज दे दरगाह मिलै सजाए आत्म देव पूजीऐ बिन सतगुर बूझ ना पाए जप तप संयम भाणा सतगुरु का करमी पल्लै पाए नानक सेवा सुरत कमावनी जो हर भावै सो थाए पाए पौड़ी हर हर नाम जपुह मन मेरे जित सदा सुख होवै दिन राती हर हर नाम जपुह मन मेरे जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती हर हर नाम जपुह मन मेरे जित दाल दे दुख भुख सब लह जाती हर हर नाम जपुह मन मेरे मुख गुरमुख प्रीत लगाती जित मुख भाग लिखिया तुर साचै हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा।

कर्म प्राप्त होए सत्य रते गुर शब्द सियो तिन सच्ची सदा लिव होए नानक जिसनो मेले ना विछड़ै सहज समावै सोई महला तीजा सो भगौती जो भगवंत जानै गुर प्रसादी आप पछाणै धावत राखै इकत घर आणै जीवत मरै हर नाम बखाणै ऐसा भगौती उत्तम होए नानक सच समावै सोए महला तीजा अंतर कपट भगौती कहाए पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए पर निंदा करे अंतर मल लाए बाहर मल धोवे मन की झूठ ना जाए सत संगत सिंह बाद रचाए अनबिन दुखिया दूजे पाए रचाए हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर ना सुवाही सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही जिन को हुआ कृपाल हर से

हरी कै पुलड गंदे डुम पयास पौड़ी। सो ऐसा हर नाम त्याई मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय छुड़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भूख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी तिन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए। नानक नाम अराध सबना ते वड्डा सब नावे अग्गे आन निवाए। सलोक महला तीजा वेश करे कुरूप कलखणी मन फूटे कूड़ियार। फिर कै भाणे ना चले हुक्म करे गवार। गुर कै भाणे जो चले सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट ना सकी है जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को शब्दे धरे प्यार। बिन नावे किने ना पाया देखो हृदय बीचार। नानक सास वाले सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा माया मोह गवार है तिसदा ना दिसै उरवार ना पार। मनमुख अज्ञानी महा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। भलके उठ बहु कर्म कमावे दूजै भाई प्यार। सतगुर सेवह अपना भव जल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावह सच नाम उधार पौड़ी। हर जल थल महियल भरपूर दूजा नाही कोई। हर आप बह करे न्याओ कूड़ियार सब मार कढ़ोए। सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करहो उस्तत जिन गरीब अना

कहाउ अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पै अमर पया माया मूठा चेतस नाही जन्म गवायो आलसिया विखम घोर पंथ चालना प्राणी रव सस तह ना परवेसं माया मोह तब बिसर गया जा तजियले संसार आज मेरा मन प्रगट भया है पेखी अले धर्म राहो तह कर दल करन महाबली।

बदते त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जीओ का अचरज एक सुनोरे पंडिया अब किश कहन न जाई सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह धार चोय अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन भवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब भरम पुलानी मन राम रसायन माता श्री राग

रे नार गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना अहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछतावेगा मूड़िया तू कमन कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापे रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसम ते धौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल नाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिखै भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछै पछताना निकुट्टी दे देख धुन उपजै मान करत नहीं बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कछु ना सूझै थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक

आओ तुम जो नायक आचो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर आराध्य मोको विचार देहू रविदास सम दल समझावे को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभउ गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वडभागी हर नाम ते आया गुरपूरै हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चलै जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पलै मेरा प्राण सखाई सदा नाल चलै गुरपूरै हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पलै जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावै मेरे प्राण जीवाया।

मेरी माई हर जियो कृपा करहो गुर मेलहो जन नानक हर तन पल्ले जियो माज महला चौथा मध सूदन मेरे मन तन प्राणा हों हर बिन दूजा अवर ना जाना कोई सज्जन संत मिले वडभागी मैं हर प्रभ प्यारा दसै जियो हों मन तन खोजी पाल पलाई क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई मिल सत संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभ वसै जियो मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारक दीन करहो प्रतपाला मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जल मेल कमल विगसै जियो मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावै हर हर दया करहो गुर मेलहो जन नानक गुर मिल रहसै जियो माज महला चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत संगत हर गुण गाए जग भौजल।

मित्र सखा सुप्रीतम भाई, मैं दस्ते हर नर हरियै जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, हो रह ना सका बिन नाम वखाणे, मैं औखद मंत्र दीजै गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरियै जियो, हम चातरक दीन सतगुर सरनाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरियै जियो, माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पानी, हर हर अमृत हर मन भावे, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, वड भागी हर संगत पावे, भागहीन भ्रम चोटा खावे, बिन भागा सतसंग ना लब्बै, बिन संगत मैल परिजै जियो, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पीजै जियो, माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो, आवहु संत मैं गल में लाई है, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो, वड भागी हर संत मलाया, गुरपुरे हर रस मुख पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया, मनमुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो, आप दयाल दया प्रभ तारी, मल हम मैं बिखिया सब नेवारी, नानक हट पटन विच काया, हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो, माज महला चौथा हौ गुण गोविंद हर नाम त्याई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो, तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाम मलुआ मल मल धुआ, मिल हर जन हर रस पीचै जियो, सतगुर दातै नाम दिड़ाया, वड भागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुर पूरै अमृत लीचै जियो, हर सत संगत सत पुरख मिलाइयै, मिल सत संगत हर नाम त्याइयै, नानक हर कथा सुनी मुख बोली, गुरु

प्रीतम दस्ते तिसकै हौ वारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हौ सतगुर बिटो कुमाइया जियो जह जह देखा तह तह स्वामी तू घट घट रविया अंतर जामी गुर पूरै हर नाल देखा लिया हौ सतगुर बिटो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब एका जोत वरतै भिन भिन ना रली किसै धीर लाइया गुर प्रसादी एक नदनी आया हौ सतगुर बिटो बताया जियो जन नानक बोलै अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महल्ले चौथे के माज महल्ला पंजवां चौपदे घर पहला मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हौ भोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सहावा जियो सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारिंग पाणी तन सो देश जहां तू

प्यास प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जीओ। यो बारक पी खीर अगावे ज्यो निरतन तन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यो हर संग इहो मन पीना जीओ। ज्यो अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा। मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यो हर रंग मन रंगीना जीओ। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया। हर हमरा हम हर के दासी नानक शब्द गुरु सच दीना जीओ। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया। अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जीओ। जो जो पीवे सो तृप्तावे अमर होवे जो नाम रस पावे। नाम निदान तिसह प्रापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जीओ। जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना। तिसह प्रापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जीओ। हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त भये कनेरे। नाम निदाना गुरमुख पाई कहो नानक विरली दीठा जीओ। माज महला पंजवा निद सिद्ध रिद हर हर हर मेरे। जन्म पदार्थ गहर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे। जो गुर लागा पाई जीओ। दर्शन पेखत पए पनीता सगल उदारी पाई मीता। अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जीओ। जाको खोज है सर्ब उपाए वडभागी दर्शन को विरला पाए। ऊच अपार अगोचर थाना ओह महल गुरु देखाई जीओ। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय बसेरा। गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जीओ। माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर त्याव प्रभु दया ते मंगल गाव। उठत बैठत सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जीओ। नाम औखद मोको साधु दिया किल बिक काटे निर्मल थिया। आनंद भया निकसी सब पीरा सगल बनासे दरदा जीओ। जिसका अंग

संग राता प्रभ प्रतपाले सेवक सुख दाता पाणी पक्का पीसो सेवक कै ठाकुर ही का आहर जियो काट सिलक प्रभ सेवा लाया हुक्म साहिब का सेवक मन पाया सोई कमावै जो साहिब पावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब बिद जान है ठाकुर के सेवक हर रंग मान है जो किस ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठाकुर ही।

सो गहर गंभीरा गौहर जीओ माज महला पंजवा सब किश घर मह बाहर नाही बाहर टोले सो परम फलाही गुर प्रसादी जिन्नी अंतर पाया सो अंतर बार सुहिला जीओ चिम चिम वरसै अमृत तारा मन पीवै सुन शब्द बीचारा आनंद बनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जीओ जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते।

सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पणिया वार वार जाई तिस विटहु जो मन तन तुद आराधे जीयो तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिस अपने साजन जिन गुर मेल सो प्रभ लादे जीयो सेवड पागी जिन तुम जाने सब कै मदे अलिपत निर्बाणी साध कै संग उन पौ जल तरिया सगल दूत उन साधे जीयो तिनकी सरण परया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दीजै नानक कौ तिस प्रभ अगम अगादे जीयो माज महला पंजवा तू पेड़ साख तेरी फूली तू सूखम होवा असथूली तू जल निध तू फेन बुदबदा तुद बिन अवर ना पालिए जीयो तू सूत मणिए पी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मद

तेने तर परवान जिन्नी दर्शन पेखा से कर भले जिन्नी हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उदारी किल बिख काट हुआ मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो दोए कर जोड़ एक बिनो करीजै कर कृपा डुबदा पत्थर लीजै नानक कहो प्रभ भय कृपाला प्रभ नानक मन पाणा जियो।

मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो सुख भया दुख दूर पराना संत रसन हर नाम बखाना जल थल नीर भरे सरस भर।

दयाला सगले तृप्त अगाए जीओ वाण त्रेण त्रे पवन की तुन हरिया करनहार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसह आराधी मन की आस पुजाए जीओ माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा

मेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किस कीता तेरा हुवै, नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सो

जी प्राण प्रभ मन है आधारा, भगत जीव है गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जीओ, मनसा तार जो धरते आवे, साध संग जन्म मरण मटावे, हास मनोरथ पूरन होवे, टेटत गुर दरसाया जीओ, अगम अगोचर किस मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे है ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पुलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जीओ, आनंद मंगल कल्याण निदाना, सुख सहज हर नाम बखाना, होई कृपाल स्वामी अपना, नाव नानक कर मह आया जीओ, माज महला पंजवा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकुर अत पारी, तुमरे कर्तव तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जीओ, गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे।

सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपी जीव, सब किस बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करहु मेरे दातारा, जी जंत सब त्रापे जीव, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस सदा त्या।

आई। कर कृपा प्रभ भक्ति लाभ हो, सच नानक अमृत पिए जियो। माज महला पंजवां, पये कृपाल गोविंद गुसाई। मेघ वरसै सबनी थाई, दीन दयाल सदा कृपाला। ठांड पाई करतारी जियो, अपने जी जंत प्रतपारी। ज्यों बारक माता संभारी, दुख भंजन सुख सागर स्वामी। देत सगल आहारी जियो, जल थल पूर रहया मेहरवाना। सद बलिहार जाइय कुर्बाना, रैन दिन सतिस सदा त्यानी। जे खिन मह सगल उदारे जियो, राख लिए सगले प्रभ आपे। उतर गए सब सोग संतापे, नाम जपत मन तन हरियावल। प्रभ नानक नदर निहारे जियो। माज महला पंजवां, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे। से अस्थल सोइन चौबारी, जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा। से ही नगर उजाड़ी जियो, हर रुखी रोटी खाए संभाले। हर अंतर बाहर नदर निहाले, खाए खाए करे बद फैली। जान विसु की वाड़ी जियो, संतां से तीरंग न लाए। साकत संग विकर्म कमाए, दलाब दे खोई अज्ञानी। जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो, तेरी शरण मेरे दीन दयाला। सुख सागर मेरे गुरु गोपाला।

सुख सहज धुन उपजी साधु संग निवासा जीओ लागी प्रीत ना तू कै मूले हर अंतर बाहर रहया पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जम की फासा जीओ अमृत वरख है अनहद बाणी मन तन अंतर शांत समाणी तृप्त अगाए रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जीओ जिसका साथ तिसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मलाया आमन जान रहे वड भागी नानक पूर्ण आसा जीओ माज महला पंजवा मीह पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेश पया सुख साचा हर हर नाम संभाली जीओ जिसके से तिन्ही प्रित पारी पार ब्रह्म प्रभ पये रखवारी सुनी बेनंती ठाकुर मेरे पूर्ण होई काली जीओ सर्ब जिया कहो देवनहारा गुर प्रसादी नदर निहारा जल थल महियल सब तृपताणी।

दान किया दुख भंजन रत्ते रंग रसाली जीओ माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई।

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जीओ। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जीओ। सुख दाता दुख भंजन हारा,

तुद त्याई जीओ माज महला पंजवा सभी सुख पए प्रभ तुठे गुरपूरे के चरण मन उठे सहज समाध लगी लिव्य अंतर सोर

चरण वसे मन माही, अंगीकार किया तिन करतै, दुख का डेरा टाहया जीओ। मन पन वसया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसै कोई। दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहया जीओ। जो किछ करे सो आपे आपै, बुद्ध सियाणप किशु ना जापै। अपनिया संतां नु आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहया जीओ। चरण कमल जन का आधारू, आठ पहर राम नाम वपारू। सहज आनंद गावे हैं गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जीओ। माज महला पंजवां, सो सच मंदर जित सच त्याई है। सोरिदा सुहेला जित हर गुण गाई है। सा धरत सुहावी जित वस्स है हर जन।

जन तेरे सच शब्द मन माणो जीओ सच सलाहन वड भागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है।

तिन्हीं सुख पाया सो जन्म न जूऐ हारी जीओ नाम अवखद जिन जन तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गावहो दिन राती सफल एहा है कारी जीओ दृष्ट तार अपना दास सवारिया घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया एक सवेण होर दूजा नाई बाबा नानक एहे मत सारी जीओ माज महला पंजवा मन तन रत्ता राम प्यारी सरबस दीजै अपना वारी आठ पहर गोविंद गुण गाई है।

तरीजै सागर कटियै जम की पासा जीव। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलख अपेवा। काम क्रोध किल बिख गुर काटे, पूर्ण होई आसा जीव। पूर्ण भाग भये जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी। नानक नाम वसिया जिस अंतर, परवान गिरस्त उदासा जीव। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया। कर कृपा भगती प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया।

ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जीओ छिन मह थाप उथापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिथे लहन विजोगा जीओ अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाहो आप जपाई गुर बोहित पा।

ऐसा भली जाए। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जीओ। सब परोई इकत धागे, जिस लाए लए सो चरनी लागे। ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्व निरंजन।

निर्मल, जिन देखे सब उतर कलमल, नानक नाम त्याए त्याए जीव, बिनसया भ्रम भउ तीठा जीओ, माज महला पंजवां, झूठा मंगण जे कोई मांगे।

मन लागी गुण गावै अन दिन नित जागी बाहां पकड़ तिस स्वामी मेले जिस कह मस्तक लहना चरण कमल भगता मन गुठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांच है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाइए जिस सिमरत वार निह चल पाइए नानक कहो प्रभ होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदियां।

पाया माया मोहच कामणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारनिया गुरमती परगास हुआ जी अन दिन हर गुण गावणिया रहाउ तन मन खोजे ता नाउ पाई धावत राखै खाक रहाई गुर की बाणी अन दिन गावै सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साथ मिलै ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया।

तह नाही, जमपुर बद्दा दुख सहाही, अन्ना बोला किस नदर ना आवे, मन मुख पाप पचावनिया, एक रंग राते जो तुद आप निवलाई, पाए भगत तेरे मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुख दाता, सब इच्छा आप पुजावनिया, हर जीओ तेरी सदा सरनाई, आपे बख्शे दे वडियाई।

सदा नाली गुर प्रसादी को नदर निहाली मेरा प्रभु अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मनावणिया माया मोहे एहो जग सुता।

जन पाया ज्योति ज्योत मलावणिया रहाव किस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अति अगम अपारा गुरमुख हो ऐसो ही पाई आपे बख्श मलावणिया मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई गुर प्रसादी सच चित लाई सचो सच वरतै सबनी थाई सच्चे सच समावणिया वे परवाह सच मेरा प्यारा किल विख अवगुण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याई भै भाए भगत दृढ़ावणिया तेरी भगत सच्ची जे

सब है सच्चा जे सच्चे पावे, जिन सच जाता सो सहज समावे, गुरमुख करनी सच्चे सेवह, सच्चे जाए समावणिया, सच्चे बाजो को अवर न दुआ, दूजे लाग जग खप खप मुआ, गुरमुख होवे सो एको जाने, एको सेव सुख पावणिया, जी जंत सब सरण तुम्हारी, आपे धर देख कह।

राज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरलै किने चख डीठी अंतर प्रगास महारस पीवे दर सच्चै।

कलाया तुद सलाहे ना रजा कबहू सच्चे नावै की भुख लावणिया एको वेखा अवर ना बिया गुर प्रसादी अमृत पिया।

परम च कामणिया परम चकाया सदा सुख पाया गुरु प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजी गावणिया सिमरत शास्त्र वेद बखाणे परमे भूला।

गुरमुखो वैसो इक सिंह निवलाए, दूजा भरम गुर शब्द जलाए। काया अंदर वणज करे वापारा, नाम निधान सच पावणिया। गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार। आनंदन रंग रत्ता गुण गावे, अंदर महल बुलावणिया। सतगुर दाता मिले मिलाया, पूरे भाग मन शब्द वसाया। नानक नाम मिले वडियाई, हर सच्चे के गुण गावणिया। माज महला तीजा, आप मंझाए ता सब किछ पाई। गुर शब्दी सच्ची लिवलाई, सच वणंजह सच संग्रह।

निर्मल बाणी शब्द वखाण है, सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया, सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया, मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागे पारा, परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया, सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जानणिया, माज महला तीजा, तेरिया खाणी तेरिया बाणी, बिन नावै सब परम पलाणी।

विदमाया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके चौथे पद की सार ना पावणिया आपे रंगे रंग चढ़ाई से जल राते गुर शब्द रंगाई हर रंग चढ़िया अत अपारा हर रस रस गुण गावणिया गुरमुख रिद सिद सच संयम सोई गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई।

गुरमुख जात पत सब आपी, नानक गुरमुख नाम त्याई, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओ पत होवे। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख अपाए समावणिया। हौ वारी जियो वारी, गुरपूरा मन वसावणिया। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाउ गुरमुख धरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पवन बै संतर।

सब किस पाया। शब्द भेद कोई महल पाई, महले महल बनावणिया। सच्चा साहु सच्चे बण जारी, सच बणजह गुर हित अपारी। सच विहाजह सच कमावह, सचो सच कमावणिया। बिन राशि को वत क्यों पाई, मनमुख भूले लोक सबाई। बिन राशि सब खाली चले, खाली जाए दुख पावणिया। एक सच बणजह गुर शब्द प्यारी।

मूड़ा बाहर पाली, मनमुख अंधे फिर है बेताली। जिथे वत होवे तिथों कोई ना पावे, मनमुख परम भुलावणिया।

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाईए नाही, शब्द मेल मनावणिया, गुरमुख अलिप्त रहै संसारी, गुर कै तकिए नाम अधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा, दुखिए नित फिर है बिन लांदी, बिन गुर शांत

पाई खोटी भरम पलाणिया क्यों कर वेखा क्यों सालाही गुर प्रसादी शब्द सलाही तेरे पाणे विच अमृत वसै तू पाणे अमृत पी आवणिया अमृत शब्द अमृत हर बाणी सतगुर सेवै हृदय समाणी नानक अमृत नाम सदा सुखदाता पी अमृत सब भुख लह जावणिया माज महला तीजा अमृत वरसै सहज सुपाय गुरमुख विरला कोई जन पाए अमृत पी सदा तृप्तासी कर कृपा तृष्णा बुझा।

लाई। नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। तुझते बाहर किश ना होवे, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बिचारा, अमृत भरे तेरे भंडारा।

सब थाई ज्योति ज्योत मलावणिया तिसना अगन जलै संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा मर मर जन्मै पत गुआई अपनी बिरथा जन्म गुआवणिया गुर का शब्द को विरला बूझै आप मारे तां त्रे पवन सूझै।

दिन राती गुरमति शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्त लह ना चूकै फेरा सतगुर हाथ कुंजी होरत दर खुलै नाही गुरपूरै भाग मनावणिया गुपत प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मलाए आपे काल ना जो है दुख ना संतापे हौ मैं मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया हौ वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावणिया गुरमुख गावे गुरमुख नाचे हर

गुरमुख हर दर शोभा पाई, गुरमुख विचों आप गवाई, आप तरह कुल सगले तारी, गुरमुख जन्म सवारनिया, गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हूं मैं चूकै पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सहज समावनिया, गुरमुख नाम मिले वडियाई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रह दिन राती, गुरमुख शब्द करावनिया, गुरमुख अन दिन शब्द राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्द भगत करावनिया, बाज गुरु है अंध अंधारा,

दे गुरमुख वण जह के नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावणिया माज महला तीजा हर आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द।

सत सच्चा हृदय वसावणिया, सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावणिया। रहाउ आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेव है गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सू है, गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हम मैं परम चुकाया। अन दिन नाम सलाहन रंग राती।

हर गुण गावे शब्द सुहाई मिल प्रीतम सुख पावनिया जम जा गाती दूजे भाई कर लाई नाम भूले दे सजाई तड़ी मोहत का लेखा लेवे रतियों मासा तोल कढावनिया पे यड़ै फिर चेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही खरी कवाले उकरूप कलखणी सुपने फिर नहीं पावनिया पे यड़ै फिर मन वसाया पूरे गुर हदूर दिखाया कामन फिर राख्या कंठ लाई शब्दे फिर रावै सेज सुहावनिया।

पाड़ बोझ मानव सामणिया गुरमुख पढ़ है हर नाम सलाह है दर सच है सोभा पावणिया रहाउ अलक अपेयो हर रहे आसमाई उपाय न किती पाया जाई कृपा करे ता सतगुर भेटे नदरी मेल मनावणिया दूजे पाए पड़े नहीं दूजे त्रेविद माया कारण लूजे त्रेविद बंधन टूटे गुर शब्दी गुर शब्दी मुक्त करावणिया इहो मन चंचल वासना आवे दुबदा लागे दह दिस तावे बिख का कीड़ा बिख मै राता बिख ही माही पचावणिया हौ हौ करे तै आप जनाई बहु कर्म करे किस थाए ना पाई तुझते बाहर किशु ना हुए बख्शे शब्द सुहावणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अन दिन दूजे पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश शिंगार बढ़ाई मन मुख आंदे ऐसे।

शब्द पुछाता अन दिन भगत करे दिन राती सहजे ही सुख पावनिया सब मैं वरतै इको सोई गुरमुख विरला बूझै कोई नानक नाम रते जन सोहै कर किरपा आप मलावनिया माज महला तीजा मनमुख पढ़ै पंडित कहावै दूजै पाए महा दुख पावै बिख्या माते।

गुर सेवा ते हर मन वसिया, हर रस सहज पी आमणिया रहाउ। वेद पढ़े हर रस नहीं आया, वाद वखाणे मोहे माया। अज्ञान मत्ती सदा अंधियारा, गुरमुख बूज हर गावणिया। अकथो कथिय शब्द सुहावे, गुरमती मन सचो पावे। सचो सच रवह दिन राती, इहो मन सच रंगावणिया। जो सच रत्ते तिन सचो पावे, आपे दे ना पछो तावे। गुर कै शब्द सदा सच जाता, मिल सच्चे सुख पावणिया। कूड़ कसत तिन्ना मैल ना लागे, गुर प्रसादी अन दिन जागे। निर्मल नाम वसै कट भीतर, ज्योति ज्योत मलावणिया। त्रै गुण पढ़े हर तत् ना जाने, मूलों भुले गुर शब्द ना पछाण। मोह व्यापी किस सूजे नाही, गुर शब्दी हर पावणिया। वेद पकारै त्रिविध माया,

तै घट अंतर गुर किरपा ते पावणिया माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया त्रै गुण दिसह मोहे माया।

जलाई सो हर सिउ चित लाई हर दर महली शोभा पावणिया रहाउ। देवी देवा मूल है माया सिमरत शास्त्र जिन उपाया काम क्रोध पसरिया संसारी आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जात सत संयम सच कमावै गुरपूरै नाम त्यावणिया पे अड़ै तन परम फुलाणी दूजै लागी फिर पछोताणी हलत पलत दोवै गवाई सुपनै सुख ना पावणिया पे अड़ै तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखै नाले पिरकै सहज रह रंग राती शब्द शिंगार बनावणिया सफल जन्म जिन्ना सतगुर पाया दूजा भाओ गुर शब्द जलाया एको रव रहिया घट अंतर मिल सत संगत हर गुण गावणिया सतगुर ना सेवे सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मनमुख नाम चेतना आवे बिन नावे बहु दुख पावणिया जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मिले शब्द पछाण नानक नाम मिलया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखावणिया माज महला चौथा आदि पुरख अपरंपरिया।

तम मेरे तुद बिने अवरना कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावनिया अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करह तू नह मलाई पूरे गुर कै शब्द त्याई शब्द सेव सुख पावनिया रसना गुणवंती गुण गावे नाम सलाहे सच्चे पावे गुरमुख सदा रह रंग राती मिल सच्चे सोभा पावनिया मनमुख कर्म करे अहंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर आवन जावनिया आपे करता दे वडियाई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पहु भंजन गुर शब्दी सुख पावनिया माज महला पंजवां कर पहला अंतर अलख न जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सब

काज महला पंजवा कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता कौन सो ज्ञानी कौन सो बक्ता कौन सो गृह कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जियो किन बिद बादा किन बिद छूटा किन बिद आवन जावन टूटा कौन कर्म कौन नेह कर्मा कौन सो कह कहाए जियो कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया किन बिद मिलिया किन बिद बिछड़े एह बिद कौन प्रगटाए जियो कौन सो अखर जित धावत रहता कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याई किन बिद कीर्तन गाए जियो गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता तन गिरह उदासी गुरमुख गुरमुख कीमत पाए जियो हौमै बादा गुरमुख छूटा गुरमुख आवन जावन टूटा गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा गुरमुख करे सो सुपाए जियो गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिया मनमुख विछरे गुरमुख बिद प्रगटाए जियो गुरमुख अखर जित तावत रहता गुरमुख उपदेश दुख सुख सम सहता गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याई गुरमुख कीर्तन गाए जियो सगली बणत बणाई आपे आपे करे कराए थापे इकस ते होयो आनंता नानक एकस माहे समाए जियो माज महला पंजवा प्रभ अबनासी ता क्या काड़ा हर भगवंता ता जन खरा सुखाला।

कर कृपा दास नदर निहाली गुण गावह पूर्ण अबनासी कह सुन तोट ना आवनिया एथे उथे तू है रखवाला मात गर्भ मह तुम ही पाला माया अग्न ना पोहे तिनको रंग रते गुण गावनिया क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बिन अवर ना जाननिया जिसको तू प्रभ पया सहाई।

संता संगत पाईए, जित जम कह पंथ ना जाइए, तोसा हर का नाम लै, तेरे कुलह ना लागे गाल जियो, जो सिमरन दे साईए, नरक ना से पाईए, तत्ती वाओ ना लगई, जिन मन बुठाया जियो, से सुंदर सोहने, साध

माज महला पंजवां कर तीजा हर जप जपे मन धीरे रहाउ सिमर सिमर गुरदेव मिट गए भय दूरे सरन आवे पार ब्रह्म की ता फिर काहे झूरे चरण सेव संत साधके सगल मनोरथ पूरे घट घट एक वरतदा जल थल महियल पूरे पाप बनासन सेविया पवित्र संतन की तूरे सब छडाई खसम आप हर जप भई ठरूरे करतै किया तपावसो दुष्ट मोए होए मूरे नानक रत्ता सच नाए हर वेखै सदा हजूरे।

कमलावती उपजह नाही दाम। हर लाह न मिलिए साजन है कत पाइय विश्राम। जित घर हर कंत न प्रगटई पाठ नगर से ग्राम। सर्ब सिंगार तंबोल रस सन देही सब खाम।

जिसका निह चल ताम चेत गोविंद अरादी है होवे आनंद घना संत जना मिल पाई है रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसह गणा एक खेन किस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल तल मई अल पूरिया रव्या विच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मलाई सो प्रभु तिसकै पाए लगा वैसाख तीरन क्यों वाडियां जिन्ना प्रेम बशोह हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तोह पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओह पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह इक सहर के नाम बिन अगे लई है खोहे दयो वसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहो परापत होए वैसाख सुहावा तां लगे जां संत भेटे हर सोए हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगै सब निवन हर सज्जन दावन लगियां।

जेठ रंगीला तिस तनी जिस कह भाग मथन असाढ़त पंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस दुइये भाइव गुचिये गल पई सो जम की फास जेहा बीजै सो लुणे मथे जो लिखियास रैण मिहाणी पछताणी उठ चली गई निराश जिनको साधु भेटिए सो दरगहा हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा विया दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वाण तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हौ तिन कै सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवार नहार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार भादोए परम पलानिया दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देहे बिनससी तित वेलै कहसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसै ना देनी भेत छड खड़ोते खिनै माहि जिन सियों लगा हेत हाथ मरोड़ै तन कपे स्याह हुआ सेत जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत नानक प्रभ सरनागति चरण बोहित प्रभ देत से भादोए नर

तन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मलावे माई संत सहाई प्रेम के हो किन कै लागा पाई बिन प्रभ क्यों सुख पाई दूजी ना ही जाए जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए आप त्याग बिनती करहे लेहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मलाइया से विछड़ कतह ना जाए प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर सरनाए असु सुखी वसंदिया जिन्ना मया हर राय कत्तक कर्म कमावणे दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरु वह रोज कीता किशु ना हो गई लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब बियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कत्तक होए साध संग बिन सह सबे सोच मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां तिनकी शोभा क्या गणी जे साहेब में लड़िया तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सही लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से जम के बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरनी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई।

लाख बेरियां हर सज्जन अगम अगाह शरण पई नारायण नानक दर पैया पूख सोहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान जन्म कर्म मल उत्तर मन ते जाए गुमान काम

सतगुरे अपना हर सिमरी दिन सब रैन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैन जन्म जन्म का विछड़िया हर मेल हो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख ना वसन पैन हर फिर बिन चैन ना पाई खोज दिते सब गैन आप कमाण विछड़ी दोष ना काहू देन कर कृपा।

जिस लाभ लोभ अहंकारा नाउ पढ़िया नाउ बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम धन खटिया भगती परे भंडारा।

साथ इस भाव सी नानक रखै लाज महला पहला हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुर पीर हा माता भरी जा मुरदार न खाई गली पिस्त ना जाइए छुट्टै सच कमाई मारन पाहे हराम मैं होए हलाल न जाय नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए महला पहला पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाम पहला सच हलाल दुए तीजा खैर खुदाई चौथी नीयत रास मन पंजवी सिफत सनाई करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाई नानक जेते कूड़ियार कूड़ै कूड़ी पाई पौड़ी एक रतन पदार्थ वणज दी एक कच्चै दे वापारा सतगुर तुठै पाईयन अंदर रतन भंडारा बिन गुर किनै ना लद्या अंधे भौंक मोए कूड़ियारा मनमुख दूजै पच मोए ना बूझै विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किस आगे करह पुकारा एक निरतन सदा भौंक दे एक ना भरे तुजारा बिन नावै होर धन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुक्म सवारन हारा सलोक महला पहला मुसलमान कहावन मुश्किल जां होए ता मुसलमान कहावै।

रब की रजाई मन्नी सिरी उपर करता मन्नी आप गवावे तौ नानक सर्व जिया मेहरमत होए ता मुसलमान कहावे।

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माही निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्भ भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किते से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां हो है तीनवा सोम हो है दुध कीओ सगली धरती सक्कर हो है खुशी करे नित जीओ।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल होए थाव पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोहरा रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

है कार खसम पठाया, तबल बाज दी चार शब्द सुनाया। एक होए असवार एक ना साखती, इकनी बदे पार इक ना ताखती। सलोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया, रही सो पलरवार सन की सारा चिथिया। कान लया तन झाड़, दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बहिठ। जो दर रहे सो उबरे, नानक अजब डिठ। महला पहला, वेख जे मिठा कटिया, कट कुट बद्दा पाए। खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए। रस कस टटर पाई है, तपै तै बिल लाए। पीसो फोग संभालिए।

पाला क्या करे, खुसरे क्या कारवास, कुत्ते चंदन लाइए पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझाइए पढ़िए है सिमरत पाठ, अंधा चानन रखिए दीवे बल है पचास, चौने सोयना पाइए चुन चुन खावे कास, लोहा मारन पाइए कह न हुए कपास, नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनास। महला पहला, कहां कंचन टुटे सार, अग्नि गंड पाए लोहार, गोरी सेती टुटे पतार, पुत्ती गंड पवे संसार, राजा मंगे दिते गंड पाई, भुखियां गंड पवे जा खाए, काला गंड नदियां मीह झोल, गंड प्रीति मिठे बोल, वेदां गंड बोले सच कोए, मोया गंड नेकी सत होए, एत गंड वरतै संसार, मूर्ख गंड पवै मोह मार, नानक आखै इहो बीचार, सिफती गंड पवै दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साज कै आपे करे बीचार, एक खोटे एक खरे आपे परखन हार, खरे खजाने पाई है खोटे सटी है बाहर वार, खोटे सच्ची दरगाह सुटी है किसे आगे करह पुकार, सतगुर पिछे भज पवे है एहा करनी सार, सतगुर खोट्यों हो खरे करे शब्द सवार नहार, सच्ची दरगाह मनियन गुर कै प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करी जो आप

मेर अवध बादशाह अफजू खुदाई, एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका तरा, अस्त एक जिगर कोई, एक तुई महला पहला, ना दादे देहांद आदमी, ना सपत जेर जिमी, अस्त एक जिगर कोई, एक तुई महला पहला, ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नह जलो, अन पौन फिर ना कोई, एक तुई महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, अस्त एक जिगर कोई, एक तुई महला पहला, परंदे ना ग्रहाजर, दरख्त आब आस कर, देहां दिसुई, एक तुई महला पहला, नानक ललार लिखिया।

डिब्बे देखाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वा जेते जी जीवह लै साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे ग्राह महला पहला एक मास हारी एक त्रिण खाहे एक ना शक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाहे एक पौन समारी पौन सुमार एक निरंकारी नाम आधार।

आरे कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम त्याई है, दूजी कारे लाग जन्म गवाई है, विण नावे सब विस पेंजे खाई है, सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है, विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर आई है, दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है, नानक सच खरा सलाहे पत सिंह जाई है, सलोक महला पहला, तुद भावै तां वावै गावै, तुद भावै जल नावै, जां तुद

जां तुद भावै ता होवै राजे, रस कस बहुत कमावै। जां तुद भावै तेग बगावै, सिर मुंडी कट जावै। जां तुद भावै जाहे दसंतर, सुन गल्लां घर आवै। जां तुद भावै नायर चावै, तुद पाणी तू भावै। नानक एक कहै बेनंती, होर सगले कूड़ कमावै। महला पहला, जां तू वड्डा सब वडियाईया, चंगा चंगा होई। जां तू सच्चा ता सब को सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई। आखण वेखण बोलण चलण, जीवन मरना तात। हुक्म साज हुक्मै विच रखै, नानक सच्चा आप पौड़ी। सतगुर सेवन संग परम चुकाई है, सतगुर आखै कार सो कार कमाई है। सतगुर हुए दयाल ता नाम त्याई है, लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है। मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है, सच्चे दै दर जाए सच चवाई है। सच्चा अंदर महल सच बुलाई है, नानक सच सदा सच्यार सच समाई है। श्लोक महला पहला, कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया। हों भाल विकुन्नी होई, अंधेरै राहो ना कोई। विच हों मैं कर दुख रोई, कहो नानक किन बिद गत होई। महला तीजा, कल कीरत प्रगट चानन संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। जिसनो नदर करे तिस देवै, नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी, भगतां तै संसारियां, जोड़ कदे ना आया। करता आप अपुल है, ना भुलै किसै दा भुलाया। भगत आपे मेलियन, जिन्नी सचो सच कमाया। संसारी आप खुआयन, जिन्नी कूड़ बोल बोल बिख खाया। चलन सार ना जाननी, काम क्रोध विस वधाया। भगत करन हर चाकरी, जिन्नी अन दिन नाम त्याया। दासन दास होए कै, जिन्नी विचों आप गवाया। ओना खसमै कै दर मुख उजले, सच्चै शब्द सुहाया। सलोक महला पहला, सबाही सलाह, जिन्नी त्याया इक मन से पूरे साह। वखतै उपर लड़ मोए, दूजै बहुते राह। मन कियां मती खिंदियां, बहुत पए असगाह। गोते खाहे ना निकलै, तीजै मुही ग्राह। भुख तिखा दोए पौंकियां, खादा हुए स्वाह। पी खाणे स्यों दोस्ती।

पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इने चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाई सो भन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आके घट हों मैं जाई है लइन खरे परख दर भी नाई है सौदा इक तहट पूरे गुर पाई है सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड नावा खंड शरीर किस विच नौ निद नाम एक पाल है गुणी गहीर कर्मवंती सालाया नानक कर गुर पीर चौथे पहर सबहा कै सुरतियां कुजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम उते अमृत वंडी है करमी हुए पसाव कंचन काया कसी है।

ठगियो ठग आइय जाइय तन मह तृष्णा यग शब्द बुझाइय सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान पत के सा

संसार किन समझाई है, सच ना धरे प्यार तंदै ताई है। काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है। आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम भरिय पाई है। गुर प्रसादी बुझ सच समाई है।

आपण है, देखू चाया पे लाए, हुक्म पया तुर खसम का, तत्ती हूं टका खाए, गुरमुख स्यों मनमुख अड़े, डुबे हक न्याय, दुहां सिरिया आपे खसम, वेखे कर व्यपाय, नानक एवे जानिए, सब किस तिसहर जाय, महला दूजा, नानक परखे आप।

कारिया करन भगत दिन रात न रहनी वारिया महला मांज नवास शब्द सवारिया सच कहन अरदास से विचारिया सोहन खसमै पास हुक्म सिधारिया सखी कहन अरदास मनो प्यारिया बिन नावै त्रिगवास फिट सो जीविया शब्द सवारी आस अमृत पीविया।

पौड़ी खसमै कै दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलाण कमल विगसिया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल वधोसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास।

इत के होम जग सद पूजा पय कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वड्याई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछु।

चढ़ सुआया नानक मंग दान जो तुद पाया सलोक महला दूजा दीख्या आख बुझाया सिफती सच समेओ तिनको क्या उपदेसी है जिन गुर नानक देव महला पहला आप बुझाए सोई बुझे जिस आप सुझाए तिस सब किस सूझे कह कह कतना।

बुलाया, सच्ची सिफत सालाहा कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम भोजन आया, गुरमति खादा राज तिन सुख पाया, ढाडी करे पसाऊ शब्द बजाया, नानक सच सलाहे पूरा पाया, शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला, चौपदे दुपदे

ना डूबै तरै जिन किश किया सो किश करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाई हंस हित आसा समान तिस विच भूख बहुत नैसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार।

नानक आखण बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किस कहन न जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भये करनी कामन कर मन लये साहा संजोग व्याह वजोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी महला।

तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाण, पीतर होंदी वस्त ना जाने। हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया। गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाउ, तां कै सद बलिहारे जाऊं, आप भुलाए ठौर ना ठाऊं। तू

परीख जल पुराण रस कमल परीख शब्द रते मीठे रस ईख हुक्म संजोगी गढ़ दस द्वार।

गुरमुख मुख तो बंद ना पाए, शब्द विचार छुट हर नाई, तरवर पंखी बहो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, सांझ बिहाग तक आगास, दह दिस तावह कर्म लिखियास, नाम संजोगी गोइन थाट, काम क्रोध फूट बिखमाट, बिन बखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहस्ये पूरे हर लोग, मन तन देले सहज सुभाए, नानक तिनके लागो पाए, गौड़ी महला पहला, काम क्रोध मा

कुंडा पड़वाऊ जेवा इंद्री एक सुवाऊ दिष्ट वकारी नाही पहु पाओ आप मारे ता पाए नाओ शब्द मरे फिर मरन ना होए बिन मुए क्यों पूरा होए परपंच व्याप रहया मन दोए।

गहमार सच सलाही धन गुरुद्वार नानक दर घर एकंकार गौड़ी महला पहला उल्टे ओ कमल ब्रह्म विचार।

मानिए अमृत रस पीजे रहाउ जन्म जीत मरण मन मानिया आप मुआ मन मन ते जानिया नजर पई कार करते जानिया जत सत तीरथ मज्जन नाम।

उठाऊ। नानक गुरमत सहज सुमाऊ। गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सो मरण दिखाई। मरन रहन रस अंतर पाई। गर्भ निवार गगन पुर पाई। मरन लिखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर सरना रहाउ। सतगुर मिले तदुबदा भागे। कमल बगास मन हर प्रभ लागे। जीवत मरे महारस आगे। सतगुर मिले सच संयम सूचा। गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा। कर्म मिले जम का पौ मूचा। गुर मिले मिले अंक समाया। कर कृपा कर महल दिखाया। नानक हों मैं मार मलाया। गौड़ी महला पहला।

गुरबचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया अपयो पी आया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिय डर डर है समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ बयाल, इत उत मन मुख बांदे काल, अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले ब्रह्म दूरे, गौड़ी महला पहला, जन्म मरे त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथ है आकार, तीन अवस्था कह बखियान, तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुर जन्म ना हुए है मरना रहाउ, चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जा कै हृदय बसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माही निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहु संसारु, लब लोभ मुझ कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारू, तू काया मैं रुल दी देखी, ज्यों तारी ऊपर शारू, सुन सुन सिख हमारी, सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुर न आवे वारी रहाउ, हौ तुदे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करह पराई।

छुट्टड़ हुई है नारी, तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी मैं जा किस लिया, ता मन भला पाया, हलत ना सोबा पलत ना ढोई, अहला

सुन मूरख मन अजाना होगत स का पाना रहाऊ साहू हमारा ठाकुर पारा हम तिसके बन जारी जियो पिंड सब रास तिस की मार आपे जी वाले गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना मार है लूट है नीत नीत किस आगे करी पुकार जना।

सातना अमृत केल करे नित कामण अवर लुटेन सो पंच जना ताहे मड़ोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना कामण लोड़े सोयना रूपा मित्र लोड़ेन सो खादाता नानक पा

लभ लोभ की ताविसता, जपस निरंजन रचस मना, काहे बोलह जोगी कपट कना रहाउ, काया कमली हंस एयाणा, मेरी मेरी करत बिहानीता, प्रणवत नानक नांगी दाजै, फिर पाछै पछतानीता, गौड़ी चेती महला पहला, औखद मंत्र मूल मन एकै, जे कर दृढ़ चित की जैरे, जन्म जन्म के पाप कर्म के, काटन हारा ली जैरे, मन एको साहिब पाई रे, तेरे तीन गुणा संसार समाव है, अलख न लखना जाई रे रहाओ, सक्कर खंड माया तन मीठी, हम तो पांड उचाई रे, रात अनेरी सूजस नाही, लज टूकस मूसा पाई रे, मन मुख करह तेता दुख लागै।

तिनकी पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किस पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आई अग्न बिंब जल पीतर ने।

का मूड़े फिर पाश पछता ही रे रहाओ अनता तन तरनी तरे अनत ना चाहे आ जाए अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ हो।

गौरी बैरागण महला पहला हरनी हुआं बन बसा कंद मूल चुन खाऊं गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो मैं बनजार नराम की तेरा नाम बकर वापार जी रहाउ कोकिल हुआ अम बसा सहज शब्द विचार सहज सुपाए मेरा सहु मिले दर्शन रूप अपार मछली हुआ।

शब्द पछाण सतगुर कह पहे ब्रह्म पहु जाई पैरा चह सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

आवै जो पांडा होए ऊंदे पांडे टिके ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास गौड़ी गवारी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रह जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाव। एक गाव है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत ना होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत बिचो आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाण गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे धात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मिकदारा गुर अंकस मार जी वालन हारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचो तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हम मैं विच सब जग बहुराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवे आप ना पछाना धंधा करतियां आन दिन विहाना हिरदय राम रमहु मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ। गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए।

दरगाह पट परवाना। हर के नाम बिटो बल जाऊं, तू विसर है तब ही मर जाऊं रहाओ। तिन तू विसर है जे तुदे आप भुलाई, तिन तू विसर है जे दूजे पाई। मनमुख अज्ञानी जो नी पाई, जिन एक मन तुठा से सतगुर सेवा लाई। जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसा।

रहाउ। असंत अनारी कदे ना बूजै, कथनी करे तै माया नाल लूजै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस जुग में राम नाम निस्तारा। बिरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई, गौड़ी महल्ला।

जपहु पवजल उतरुह पार रहाउ परमे आवे परमे जाई एहो जग जन्मया दूजे पाई मन मुख ना चेतै आवे जाई आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया किरपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाउ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

तुझे ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही। जाका कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही।

चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की पाज मिल साधु संगत जन की तार पौ जल कथ कथा सुन हर की गोविंद सत संगत मिलाई हर रस रसना राम गुण गाए रहाउ जो जन त्याव है हर हर नामा तिन दासन दास करहु हम रामा जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पग रेन वड भागी पावे संत जना सिउ प्रीत बन आई जिनको लिखत लिखिया तुर पाई ते जन नानक नाम समाई गौड़ी ग्वारी महला चौथा माता प्रीत करे पुत खाए मीने प्रीत पई जल नाए सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए ए हर जन हर मेलो हम प्यारे जिन मिलिया दुख जाहे हमारे।

जहां हर जस गावे सारिंग प्रीत बसह जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाटे गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरी महला चौथा भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए भूखे प्रीत होवे अन खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारी सब दुख त्यागे गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसै देखे माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए पूरा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी गुआररी महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम त्याया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छोटी कनी गुरसिख हर बोलो हो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ जब गुर मिलिया तब मन वास आया तावत पंच रहे हर त्याया अन दिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई तिन कूड़ त्यागे हर लिब लाई ते हर दरगाह मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी गुआररी महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहया बनवारी हर आपे तप तापै लाए तारी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुरत तुन आपे हर आपे वेखै विगसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारिंग अमृत तारा हर अमृत आप पी आवनहारा।

बणंजह रंग स्यों जे आप दयाल हुए देह हम बणजारे राम के हर वणज करावे देरा सरे रहाओ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे साहा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया होर वणज करह वापारिये अनंत तरंगी दुख माया वे जे है बणज हर लाया फल तेहा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे

त्यो हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिक संचय हटवानिया बह हाथ कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए इह माया मोह कटंब है।

लाहा देता सुख मने टूटै मर जाई। जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई। जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे।

कथा हमरा मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरा मन चित हर बहुत प्यारा हाँ कुर्बानी गुरे अपनी जिन बिछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहार।

अपनी कृपा धार रहाउ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत न आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे।

अल्लाह चौथा कंचन नारी मह जियो लुभत है मोह मीठा माया कर मंदर घोड़े खुशी मन अन रस लाया।

हर हर दयाल कर कृपा बख्शे अवगण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नाही किस ढंग ना मेरा क्या मुंह लै बोल है गुण विहून ना।

कपड़ पहनन दिया रासे अन्न को गाणी जिन दिए सो चेतना आ गई पशु हों कर जानी सब कीता तेरा वरतदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करह सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राख नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन परंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हृदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जानो मास काती कै किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग ना सकै बिन हर का लाया।

हम सतगुर पार ब्रह्म कर मानी, हम मूढ़ मुगद अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर कै बचन हर हम जानी रहाउ, जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने, हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गानी, जिनको गुर सतगुर नहीं भेटिया ते साकत मूढ़ देवानी, तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने, जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने, जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी, कहो कित्ते हर पहु नसीऐ, हर आपे बख्श लए प्रभ साचा, हर आप छुड़ाए छुटिऐ। मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ, सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना, गुर सतगुर पीछे छुटिऐ रहाव। मेरे मन सेव हो सो प्रभ सर्ब सुख दाता, जित सेवे निज कर वसीऐ, गुरमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसीऐ। मेरे मन हर हर हर हर हर जासे उत्तम, लैला हर मन हसीऐ, हर हर आप दया कर देवै, ताय अमृत हर रस चखीऐ। मेरे मन नाम बिना जो दूजै लागे, ते साकत नर जम कुटिऐ, ते साकत चोर जिन्ना नाम वसारिया, मन तिनकै निकट ना पिटिऐ। मेरे मन सेवो अलख निरंजन नरहर, जित सेवै लेखा छुटिऐ, जन नानक हर प्रभ पूरे किए, खिन मासा तोल ना कटिऐ। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरै, मेरा जियो पिंड सब तेरी, दया करहो हर दर्श दिखावहु, मेरे मन तन लोच कनेरी, राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी, गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी, हर मिलिया आए प्रभ मेरी रहाओ, जो हमरे मन चित है स्वामी, साबिद तुम हर जानो मेरी,

अन दिन अनद पया वडभागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा एहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड भागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यो पानी कागद बिन सुजात है त्यों मन मुख गर्भ गलाढ़े हम जानिया कशु ना जान है आगै ज्यो हर राख है त्यों ठाढ़ी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडी गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाई पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाउ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभै दुख पावे जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु

जन नानक नाम आधार टीक है, हर नामे ही सुख मंडाई, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, इस गढ़ में हर राम राय है, किस साधना पावे तीठा, हर दीन दयाल अनुग्रह किया,

हर अग में अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सतगुर लाग बसीठा, जिन गुर बचन सुखा ने ही अरे, तिन आग है आन परीठा, मन मुख ही अरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करीठा, बिसियर कौ बहु दूध पी आई है, बिक निक सह फोल फलीठा, हर प्रभ्यान मलाव गुर साधु, कस गरड़ो शब्द मुख लीठा, जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा।

मस्तक पाग सुभागी राम गुरमत हर लिव लागी रहाउ कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिव लागी हो मन तन देवो काट गुरु कहो मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागी अंधियार है दीप ज्ञान जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागी अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ कर वस्त लही मन जागी साकत बदक माया तारी तिन जम जो हन लागी हुन सतगुर आगै सीस ना बेचिया हुए आवह जाहे अभागी हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगी जन नानक की लज पात गुरु है सिर बेचे हो सतगुर आगी गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत गुर मिले आप गवाया हम मैं रोग गया सुख पाया तन तन गुरु हर राया राम गुर कै बचन हर पाया रहाउ मेरा ही अरे प्रीत राम राय की गुर मार्ग पंथ बताया मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगै जिन विछड़िया हर गल लाया मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हृदय नाल दिखाया सहज आनंद भया मन मोरै गुर आगै आप बिचाया हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टि चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजै शब्द अनाहद गुरमत मनुआ गावे वड भागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिव लावे गुरमुख हर लिव लावे रहाउ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तू वह पाव गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे मन रसक रसक हर रस आगामी फिर बहोर न भूख लगावे कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी बिन कृपा नाम ना पावे जन नानक को हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दृढ़ावे राह गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा वड भागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो वड भागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो मेरा मन तन हर रंग पिन्ना आवहु संत हो मिल नाम जपाहा विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा आओ सखी गुण कामन करी हा जियो मिल संत जना रंग मान रलिया जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो हर तुठै टुल टुल मिलिया।

गोविंदा वडभागी नाम समाही दियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किनै हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो धन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रैनी जियो मैं मेलोह संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वादाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हौ तुद विटण्यो हो सदवारी जियो मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सत

हर आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी दियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगत उपाएदा मेरे गोविंदा हर आप खिल बहुरंगी जियो एक ना भोग पुगाएदा मेरे गोविंदा एक नगन फिर है नंग नंगी जियो।

हर कथा मंगह हर चंगी जियो, हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा। हर भगता लोच मन पूरी जियो, आपे जल

गोविंदा। हरे आप रहया परपूरी जीव, हरे आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा। हर वेखै आप हदूरी जीव, हरे अंतरवाजा पौन है मेरे गोविंदा। हरे आप बजाए त्यों वाजै जीव, हरे अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा। गुर शब्दी हर प्रभ गाजै जीव, आपे सरन पुआईदा मेरे गोविंदा। हर भगत जना राख लाजै जीव, वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा। जन नानक नाम सिद्ध का जय जीव, गौड़ी माज महला चौथा। मैं हर नाम मैं हर बिरहो लगाई जीव, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जीव। हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जीव, मेरा नाम सखा हर पाई जीव। गुण गावो संत जीव, मेरे हर प्रभ केरे जीव। जप गुरमुख नाम जीव, भाग वडेरे जीव। हर हर नाम जीव, प्राण हर मेरे जीव। फिर बहुड़ ना पवजल फेरे जीव, क्यों हर प्रभ वेखा। मेरा मन तन चाओ जीव, हर मेलो संत जीव। मन लगा पाओ जीव, गुर शब्दी पाई हर प्रीतम राव जीओ। वड भागी जप नाओ जीओ, मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जीओ। हर मेलो संत जीओ, गोविंद प्रभ पासा जीओ। सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जीओ, जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जीओ। गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जीओ। मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जीओ, मन हर रंग रतड़ा हर रस।

सुपन पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक हूं मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउं पाईए हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवां क्यों भ्रमीए भ्रम किसका होई जां जल थन महियल रवे आसोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वरतंता मनमुख मोए जिन दूजी प्यासा बहुजोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी गुआर री महला पंजवा कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म प्रापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश होआ सो तुझ ते होग अवरना दूजा करने जोग ता मिलिए जा लह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाई गौड़ी गुआर री महला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पावह मिटै जम त्रास नित गावह हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर तार शीघ्र कार्ज लिहो सवार रहाव अपने प्रभ स्यों हो सावधान ता तू दरगाह पावह मान उगत सियाणप सगली त्याग संत जना की चरणी लाग सर्ब जी है जा कै हाथ कदे ना विछड़ै सब कै साथ अपाव छोड़ गहो तिसकी ओट निमख माही होवै तेरी छोट सदा निकट कर तिसनो जान प्रभ की आज्ञा सत कर मान गुर कै बचन मटाव हो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी गुआर री महला पंजवा गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कट्टी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत करमान रहाओ गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कट्टे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु ना जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रकट संसार गुर कै बचन ना आवै हार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी गुआर री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वडियाई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिले अपना खसम त्याव रहाओ जिन कीता मूड ते बक्ता जिन कीता बे सुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास गिरासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इस ते किस नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी गुआरी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पौ सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखन हार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

कर कीर्तन मन शीतल पहे जन्म जन्म के किल विख गए सर्व निदान पेखे मन माए अब ढूंढन काहे को जाए प्रभ अपने जब पहे दयाल पूर्ण होए सेवक काल।

पूर्ण पूर रहे हो सब जाय, गुर पूर सब परम चकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी ग्वार भी महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उबरे से बांध लाख खरे।

दीपक दीपाहे अग्न सीत का लाहस दुख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होए सगली आस ढोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जा कै हृदय वसै दुख दर्द तेह नानक नसै गौड़ी गुआर री महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना आघना अनक रूप देख नह पतियाना पुत्र कलत्तर उर्ज्यो जान मेरी ओह बिन सह ओए पस मैं ढेरी बिन हर भजन।

रहाउ हस पवन हस्त असवारी जोआ चंदन सेज सुंदर नारी नट नाटक आखारे गाया तामह मन संतोख न पाया तखत सभा मंडन दोलीचे सगल मेवे सुंदर बागीचे अखेर बिरत राजन की लीला मन ना सुहिला परपंच हीला कर कृपा संतन सच कहया सर्ब सुख इहो आनंद लहया साध संग हर कीर्तन गाईए कहो नानक वड भागी पाईए जा कै हर तन सोई सुहेला प्रभ कृपा ते साध संग मेला रहाओ दूजा गौड़ी गुआरी महला पंजवां।

संसार जो हलाहल सो पीवै बवरा अमृत नाम जानै कर कौरा साध संग कै नाही नेर लख चौरासी भ्रमता फेर एकै जाल फहाए पंखी रस रस भोग करहै बहुरंगी कहो नानक जिस पये कृपाल गुरपूरै ताके काटे जाल। गौड़ी गुआरी महला पंजवां तौ किरपा ते मार्ग पाईऐ प्रभ किरपा ते नाम ते आईऐ प्रभ किरपा ते बंधन छुटै तौ किरपा ते हम मैं टुटै तुम लाभ हो तौ लाग है सेव हम ते कछु ना होवै देव रहाव। तुद भावै ता गावां बाणी तुद भावै ता सच बखाणी तुद भावै ता सतगुर मया सर्ब सुखा प्रभ तेरी दया जो तुद भावै सो निर्मल कर्मा जो तुद भावै सो सच धर्मा सर्ब निदान गुण तुम ही पास तू साहिब सेवक अरदास मन तन निर्मल होए हर रंग सर्ब सुखा पावो सत संग नाम तेरा रह मन राता एहु कल्याण नानक कर जाता। गौड़ी गुआरी महला पंजवां आन रसा जेते तैं चाखे निमखना तृष्णा तेरी लाते हर रस का तू चाख है साधु चाख तो हुए।

नाम गुण गाओ, निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन न सुनिए कतु जाइए, साध संगत बड भागी पाइए, आठ पहर जिहवे आराद, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली, बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मधे बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी, रहाव मन तन अर्पी सेव करी जय, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै, कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै, कमन सो बिद जित पीतर बुलावै, तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसार, गौड़ी महला पंजवां गवाररी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जान है सद ही संगा, ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन, हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे, रहाव चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार, एको बनज एको व्यवहारी, अवर ना जान है बिन निरंकारी, हरख सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिस है सब मह सब ते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते, संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

बसना। निरपो नाम जपूं तेरा रसना। तू मेरी नावनिद तू पंडार, रंग रसा तू मन है आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन ताने अंतर तू ही ते आया, मरम तुम्हारा गुरते पाया। सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, व्यापत हरक सोग विस्थार। व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निरधन पेख सोभा। मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु प्रकारी। संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी रहाउ। व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता। व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता। व्यापत भूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा। व्यापत सेज महल शिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार। व्यापत कर्म करे हों फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा। चार व्यवहार व्यापत ए जात, सब किश व्यापत बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राए, ताको कहां व्यापै माए। कहो नानक जिन तूर संत पाई, ताके निकट न आवै माई। गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओ अपनी लह रहाओ, सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी, उन तेरा कह बाप ना माई, उन तेरा कह मीत ना पाई, दर्ब सियान को ना हुए रहते, साध संग ओए दुष्ट वास होते।

पार ब्रह्म स्यों लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपूरै मेटिया अन्यहारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वारी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याय।

अगमय गोचर सदा बेअंता, सिमरमना पूरे गुरमंता, जाकी सेवा सर्व निदान, प्रभु की

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवां जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पवो काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्श न मेटे कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन इश

पुरख जपै भगवान आठ पहर हर हर गुण गाऊं कहो नानक कहो तिस बल जाऊं राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवा चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस सियो मन रचना कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस सियो ने रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ अपूठा बुनना दोहा सनिया का कसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई गौड़ी ग्वार भी महला पंजवा कल युग मह मिले आए संयोग जिचर आ गया तिचर भोग है भोग जलै न पाइय राम स्नेही किरत संयोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हठ जल जाइए प्रिय संग न पावे बहु जोन पवाइए सील संयम प्रिय आग्या माने तिस नारी को दुख ना जमाने कहो नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया धन सती दरगाह परवानिया गौड़ी ग्वारी महला पंजवा हम तनवंत भागठ सच।

बुरा भला कोई ना कही जय छोड़ मान हर चरण गिही जय कहो नानक गुरमंत्र चितार सुख पावे साचे दरबार गौड़ी महला पंजवा जाका मीत साजन है समिया तिस जन कहो कहो का की कमिया जाकी प्रीत गोबिंद स्यो लागी दुख दर्द भ्रमता का भागी रहाव जाको रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जा का कहे दरगाह चले सो किसको नदर ले आवे तले जाका सब किस ताका होए नानक ताको सदा सुख होए गौड़ी महला पंजवा जाके दुख सुख सम कर जापे ताको काड़ा कहां बियापे सहज आनंद हर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय रहाऊ जाके अचिंत बसे।

सगल निदहना गौड़ी महला पंजवा अगम रूप का मन महथाना गुर प्रसाद किने बिरले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसह प्राप्त तिसले पुंचा रहा अनहत बाणी थान निराला तां की धुन मोहे गोपाला तह सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कार गुरु नानक को दिया गौड़ी महला पंजवा कवन रूप तेरा आराधो कवन जोग काया ले साधो कवन गुण जो तुझ लै गाव कवन बोल पार ब्रह्म री जाऊ रहाऊ कवन सो पूजा तेरी करो कवन सो बिद जित पवजल तरु कवन तप जित तपिया होए कवन सो नाम हमें मल खोए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल जिस कर कृपा।

सेव आद पुरख अपरंपर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समान।

मन चीत, जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ। मीत हमारा वे परवाहा, गुर कृपा ते मोहे असनाहा। मीत हमारा अंतर जामी, सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी। हम दासे तुम ठाकुर मेरे, मान महत नानक प्रभ तेरे। गौड़ी महला पंजवां, जाको तुम पए समरथ अंगा।

नाही। कहो नानक गुरु खोले कपाट, मुक्त पए बिनसे भ्रम थाट। गौड़ी महला पंजवा, वड्डे वड्डे जोधी सहलोग, तिनको व्यापै चिंता रोग। कौन वड्डा माया वड्याई, सो वड्डा जिन राम निवलाई। रहाउ भूमिया भूम ऊपर मित लुजै, छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक एहो तत बीचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। गौड़ी महला पंजवा, पूरा मार्ग पूरा इशनान, सब किश पूरा है।

हर कै मार्ग पतत पनीत, पूरी शोभा पूरा लोकीक, करनहार सद वसै हदूरा, कहो नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, संत की धूर मिटे अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट, संत का दर्श पूर्ण इशनान, संत कृपा ते जपिए नाम रहाव, संत कै संग मिटिया अहंकार, दृष्ट आवे सबे कंकार, संत सो प्रसन्न आए वस पंचा, अमृत नाम हृदय ले संचा, कहो नानक जा का पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, हर गुण जपत कमल परगासै, हर सिमरत त्रास सब नासै, सामत पूरी जित हर गुण गावे, बड़े भाग साधु संग पावे रहाव, साध संग पाइय निदनामा, साध

मुख हर हर बोले सो जन इत उत कत है ना डोले जां कै हर तन सो सच सा गुरपूरै कर दीनो विसा जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार नामो धन नामो व्यवहार नाम वडाई जन सोभा पाई कर किरपा जिस आप दिवाई रहाउ नाम भगत कै सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान।

अराध भगवंता, हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता, सब ताज अनाथ इक सरने आयो, ऊच अस्थान तब सहजे पायो, दुख दर्द परम पौ नसया, करनहार नानक मन बसया, गौड़ी महला पंजवां, कर कर टहल रसना गुण गावो, चरण ठाकुर कै मार्ग धामो, भलो समो सिमरन की बरिया, सिमरत नाम पै पार उतरिया, रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख, प्रभ अवनासी मन महलेख, सुन कीर्तन साध पह जाए, जन्म मरण की त्रास मटाए, चरण कमल ठाकुर उरतार, दलाब देह नानक निस्तार, गौड़ी महला पंजवां, जाको अपनी कृपा धारे, सो जन रसना नाम उचारे, हर बिसरत सहसा दुख व्यापे, सिमरत नाम परम

पहले करत जन सोहै ता कौ माया अग्न ना पोहै। मन तन मुख हर नाम दयाल, नानक तजी अले अवर जंजाल। गौड़ी महला पंजवां, छाड़ सियानप बहु चतुराई। गुरपुरे की टेक टकाई, दुख बिन से सुख हर गुण गाई। गुरपुरा पेटिया लिवलाई, रहाओ हर का नाम दियो गुरमंत्र। मिटे वसूरे उतरी चिंत, आनंद भये गुर मिलत कृपाल। कर

पाई। गुर पूरे जब कृपा करी, भणत नानक मेरी पूरी परी। गौड़ी महला पंजवां, अनक रसा खाई जैसी ढोर,

साध संग मिल भजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी तै बिन से निरभउ हर त्याया साध संग हर के गुण गाया।

जात पूरे गुड़ काढ़े जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिस भेटत गत पई हमारी गौड़ी महला पंजवां साध संग तां की सरनी परो मन तन अपना आगै धरो अमृत नाम पीवो मेरे भाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ ताज अवमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मन सुमाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग कहो नानक ता की चरणी लाग गौड़ी महला पंजवां सूके हरे किए खिन माए अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा कर दया सतगुर गुणतासा दुख नाठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फुरमाए इच पुन्नी पूरे गुर मिले नानक तेजन सुफल फले गौड़ी महला पंजवां।

प्रभ का नाम। सगल रोग का बिनसे आथाउ, सहज सुपाए बोले हर वाणी, आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओह बेला कहो हौ बल जाऊ, जित मेरा मन जपै हर नाउ। रहाउ सफल मूरत सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी। सफल ओह माथा संत नमस्कारस, चरण पनीत चलह हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द राख मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे।

गुर मूरत स्यों लाए ध्यान, नीहा ऊहा पावह मान। सगल त्याग गुर सरनी आया, मिटे अंधे से नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए। नाम रतन वसै मन आए, जप मन मेरे गोविंद की बाणी। साधु जन राम रसन बखानी, रहाओ इकस बिन नाही दूजा कोए। जां की दृष्ट सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक। हर हर अखर मन मह लेख, रव रहया सरबत स्वामी। गुण गावे नानक अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा। पै मह रचियो सब संसारा, तिस भौ नाही जिस नाम आधारा। भौ न व्यापै तेरी सरना, जो तुद पावै सोई करना। रहाओ सोग हरख मह आवन जाना, इन सुख पाया जो प्रभ पाना। अगन सागर महाव्यापै माया, ते सीतल जिन सतगुर पाया।

नाव तुमरी कृपा ते दरगाह धाव तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ तुम मन बसे तो दुख न लागे तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी करूं अरदास अपने सतगुर पास नानक नाम मिले सच रास गौड़ी महला पंजवा तन बिना जैसे थोथर तुखा नाम विहून सुने से मुखा हर हर नाम जपो नित प्राणी नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग परत विहून।

तू है मेरा स्वामी, सब किस सुमते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किछ वरतै सब तेरा पाणा, हुक्म बूझै सो सच समाणा, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्श पाईऐ वडभागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै, दास की तूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवां, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाओ, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवां, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवां, गुर जी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होए परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाईऐ वडभागी, नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी, गौड़ी महला पंजवां, करै दुख कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाउ, अंतर बिख मुख अमृत सुनावै, जमपुर बाता चोटा खावै, अनक पड़दे मह कमावै विकार, खिन मह प्रगट होए संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस किरपाल बिदाता, गौड़ी महला पंजवां, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, संतह संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पहे निहाल, कहो नानक गुर पहे है दयाल, गौड़ी महला पंजवां, सिमरत स्वामी किल विख नासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाव, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंदन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवां, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा, हर धन को वापारी पूरा, जिसे

आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागे कौडी बदले रतन त्याग है रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुबा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जाने स्वान कहो नानक हम लूण हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जहां कह हृदय वसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना प्राप्त साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परम है बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरै हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरता कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवां कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाउ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी वडियाई।

अंतरजामी गौड़ी महला पंजवां आठ पहर संगी बटवारी कर कृपा प्रभ लहे निवारी ऐसा हर रस रमहु सब।

हर को नाम, बिचर संसार पूर्ण सब काम। वड भागी हर कीर्तन गाइए, पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ। हर के चरण हृदय उरतार, भव सागर चढ़ उतरह पार। साधु संग करहो सब कोय, सदा कल्याण फिर दुख ना होय। प्रेम भगत भज गुणी निदान, नानक दरगाह पाई है मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हर मीत। प्रम बिन से गाए गुण नीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ। जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल दुख का होया नास। आसा मान तान तानेक, साचे साकी मन मह टेक। महा गरीब जन साध अनाथ, नानक प्रभ राखे दे हाथ। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मज्जन कर सूचे। कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाउ। हर के चरण हृदय मह बसे, जन्म जन्म के किल विख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट ना आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिख संसार। कर कृपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ सरनाई जिन हर जाति। मन तन शीतल चरण हर राति, पै भंजन प्रभ मन ना बसाही। डरपत डरपत जन्म बहुत जाही रहाउ। जां कै हृदय बस्यो हर नाम, सगल मनोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जिसवास, सो समरथ सिमर सास ग्रास। मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा, बाहर राख्यो हृदय संभाल। घर आए गोविंद लै नाल, हर हर नाम संतन कै संग। मन तन राता राम कै रंग रहाउ। गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किल विख सब हिरिया। सोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत। चरण कमल हृदय मह जाप, नानक पेख जीवै परताप। गौड़ी महला पंजवा, तन इहो थान गोविंद गुण गाए। कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाउ। विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही। हर बिसरे दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे ना नेरे। सोवड भागी निश्चल थान, जह जपिए प्रभ केवल नाम। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद त्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे। साधु संग सिमर गोपाल, बिन नाम झूठा धन माल रहाउ। रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मानिया प्रभ का पाणा। जग मह आया सो परवान, घट घट अपना स्वामी जान। कहो नानक जाके पूर्ण भाग, हर चरणी ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, हर के दास स्यों साकत नहीं संग। ओह बिखई ओ सराम को रंग।

के किल विख खोए, सिमरह साध करह आनंद, मन तन रबिया परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान। गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म धर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, तां की पूर्ण होई काल, जां की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवानी।

बिखै ठगौरी जिन जिन खाई ताकी तृष्णा कबहू न जाई दारण दुख दुत्तर संसार राम नाम बिन कैसे उतर सपार साध संग मिल दुए कुल साध राम नाम नानक आराध गौड़ी महला पंजवा गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी पूरा न्याओ करे करतार अपने दास को रखनहार रहाउ आद जगाद प्रगट प्रताप निंदक मुआ उपज वद ताप तिन मारिया जे रखै न कोई आगे पाचै मंदी सोए अपने दास राखै कंठ लाए शरण नानक हर नाम त्याए गौड़ी महला पंजवा महजर झूठा की तुने आप पापी को लागा संताप जिसह सहाई गोविंद मेरा तिस को जम नहीं आवे नेरा रहाओ साची दरगाह बोले कूड़ सिर हाथ पछोड़ै अंधा मूड़ रोग व्यापे कर दे पाप अदली होए बैठा प्रभ आप अपन कमाया आपे बांधे दर्ब गया सब जी कै साथे नानक शरण परे दरबार राखी पैज मेरे करतार गौड़ी महला पंजवा जन की धूर मन मीठ खटानी पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाओ अहम बुद्ध मन पूर थिधाई साध तूर कर सुद मंजाई अनक जला जे धोवै देही मैल न उतरै सुद न तेही सतगुर भेट्यो सदा कृपाल हर सिमर सिमर काटिया पौ काल मुकत भुगत जुगत हर नाओ प्रेम भगत नानक गुण गाओ गौड़ी महला पंजवां।

पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावहु नित नीत, गई ब्याद उबरे जनमीत। मन बच क्रम प्रब अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई, गौड़ी महला पंजवा, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण पई सेव, रहाउ सीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवे, साध संग हर अमृत पीवे, गौड़ी महला पंजवा, तन ओह मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लही है, रसना राम नाम जस कही है, रहाओ तिन ऊपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया निर्वाण, गौड़ी महला पंजवा, तू है मसलत तू है नाल, तू है राख है सार संभाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाय, दास की पैज रखे मेरे भाई, रहाउ आगे आप इहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर कौ जा।

कहो नानक जिस कृपा तार है हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है। गौड़ी महला पंजवा थिर कर बैसो हर जन प्यारी सतगुरु तुमरे काज सवारी रहाओ दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारी बादशाह सहा सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने निरपो होए भजो भगवान साध संगत मिल की नो दान सरन परे प्रभ अंतर जामी नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी गौड़ी महला पंजवा हर संग राते पाहे ना जले हर संग राते माया नहीं चले हर संग राते नहीं डूबे जला हर संग राते सुफल फला सब पै मिटह तुम्हारे नाई पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ हर संग राते मिटै सब चिंता हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता हर संग राते जम की नहीं त्रास हर संग राते पूर्ण आस हर संग राते दुख न लागे हर संग राता अन दिन जागे हर संग राता सहज कर वसै हर संग राते ब्रह्म पौ नसै हर संग राते मत उत्तम होए हर संग राते निर्मल सोए कहो नानक तिन कहो बल जाई जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही गौड़ी महला पंजवा उदम करत शीतल मन पहे मार्ग चलत सगल दुख गए नाम जपत मन पहे आनंद रस गाए गुण परमानंद खेम पया कुशल कारे आए पीटत साध संग गई बलाए रहाओ नेत्र पनीत पेखत ही दर्स तन मस्तक चरण कमल ही परस गोबंद की टहल सफल एकाया संत प्रसाद परम पद पाया जन की कीनी आप सहाय सुख पाया लग दासह पाए आप गया ताया पह पहे कृपा निदान की सरनी पए जो चाहत सोई जब पाया तब ढूंढन कहां को जाया अस्थिर पए बसे सुख आसन गुर प्रसाद नानक सुख बासन गौड़ी महला पंजवा कोट मजन कीनो इशनान लाख अरब खरब दीनो दान जा मन वस्यो हर को नाम सगल पवित्र गुण गाए गोपाल पाप मिट है साधु शरण दयाल रहाव बहुत उर्द तप साधन साधे अनक लाभ मनोरथ लादे हर हर नाम रसन अरादे सिमरत शास्त्र वेद बखाने जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने नाम जपत प्रभ सिंह मन माने अगाध बोध हर अगम अपारे नाम जपत नाम हृदय बिचारे नानक कहो प्रभ कृपा तारे गौड़ी महला पंजवा सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल गुर हृदय बसाया गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ अन दिन जपो गुरु गुर नाम ता ते सिद्ध पए सगल काम दर्शन देख शीतल मन पहे जन्म जन्म के किल बिख गए कहो नानक कहां पै पाई अपने सेवक की आप पैज रखाई गौड़ी महला पंजवा अपने सेवक को आप सहाई नित प्रतपारे बाप जैसे माई प्रभ की शरण उबरे सब कोए कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव अब मन बसया करने हारा पै बिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के किल बिखलाते कहन न जाए प्रभ की वडियाई नानक दास सदा सरनाई राग गौड़ी चेती महला पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम को बल पूरन पाई
ताते बिरता ना व्यापै काई रहाउ। जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई। गौड़ी महला पंजवा। उज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गर्त परत गह लिहो अंगुरिया। रहाउ श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगुरिया। दीना नाथ अनाथ करना में, साजन मीत पिता महतरिया। चरण कमल हृदय गह नानक, पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागन महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दई गुसाई मीतला। तू संग हमारे बास जियो रहाउ। तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुख दातिया, निमक निमक बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्त हो उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सद ही दीन दयाल। क्या सुख तेरे सम्मला, कवन विधि विचार। सरल समाई दास हित, ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध, नाम महारस माहे। सो प्रसन्न भय केसवा, सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंध पो, तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै, बिख तरिया संसार। गौड़ी बैरागण रोहोए के, संत के घर महला पंजवा।

हाल। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से वड भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिस है प्रापत सो हर गुण गाए। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

रास गौड़ी महला पंजवा हर पीखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवो दिन रैनी है कोई संत मलावे नेरा रहाओ सेवा करो दास दासन की अनक पांत तिस करो निहुरा तुला तार तुले सुख सगले बिन हर दर्स सबो ही थोरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बोहोरा आनंद सुख पेटत हर नानक जन्म किरतार्थ सफल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मुहे मार्ग दे बताई रहाओ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत इकत ग्रह बस्ते मिल बात ना करते पाई एक बस्त बिन पंच दोहेले ओह बस्त अगोचर ठाई जिसका ग्रहो तिन दिया ताला कुंजी गुर संपाई अनक अपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिवलाई।

सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई रहा दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठलै सतगुर मुझे बतायो रहाउ जत कत देखो तत तत तुम ही मोहे एहो विश्वास होए आयो कह पह करो अरदास बेनती जो सुन तो है रघुरायो लहयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निध नाम निधान एक ठाई तौ बाहर कैठ जायो एक कनक अनक भांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्तै तत् मलायो गौड़ी महला पंजवा औज कटै दिन सरै नार।

आज्ञा है बसन सुहेला। यह संसार विकार सहसी मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिस है जगाए की आए हर रस अकथ कथा तिन जानी। जां को आए सुई विहाजो हो हर गुर ते मन है बसेरा, निज कर महल पाव हो सुख सहजे बहुर ना हुए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास इही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। गौड़ी महला पंजवां, राख पिता प्रभ मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे रहाओ। पंच बखादी एक गरीबा राख हो राखन हारी, खेद करह और बहुत संताव है आयु शरण तुहारी। कर कर हारियो अनक बहु भांति छोड़ है कतहु नाही, एक बात सुन ताकि ओटा साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया, संती मंत दियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया। जीत लए ओए महा बिखादी सहज सुहेली बाणी, कहो नानक।

काठ की पुत्री कहाँ करे बपरी, खलावन हारू जाने गैसा भेख करावे बाजी घर, ओह तैसो ही साज अन्न। अनक कोठरी बहुत पात करिया, आप हुआ रखवारा जैसे महल राख है तैसे रहना। क्या एहु करे बिचारा, जिन किश किया सोई जाने, जिन एह सब बिद साजी। कहो नानक अपरंपर स्वामी, कीमत अपने काजी। गौड़ी महला पंजवा, छोड़ छोड़ रे बिखिया के रसुआ। पुरज रहे रे बावर गावर, जो किरखे हरे आयो।

नांग सदासी फेर फिरयो अरकाल ग्रसुआ पेख पेख रे कसुंब की लीला राच माच तिन्हू लो हसुआ सीजत डोर दिन से अर रैनी जी को काज ना कीनो कशुआ करत करत एव ही बिरधानो हार्यो उकते तन की नसुआ ज्यों मोहयो उन मोहनी बाला उसते कटै नाही रुच चसुआ जागे ऐसा मोहे गुरह दिखायो तौ सरल परयो तज गर्भसुआ मार्ग प्रभ को संत बतायो दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण आधारा रहाओ अंतर की बेद तुम ही जानी तुम ही सज्जन सोहेले सर्व सुखा मैं तुझ ते पाए मेरे ठाकुर अगह अतोले बन ना साको तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते अगमे अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते प्रम पौ काट किए नेह केवल जब ते हूं मैं बारी जन्म मरण को चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करूं गुर सेवा बार जाऊं लख बरिया जेहे प्रसाद एहो पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कवन रीजा वै तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत भूमंडल सर्व सुमानो एक ओही सेव सेव करत सगल कर जो रह सर्व मया ठाकुर तेरी दोही पतत पावन ठाकुर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान ध्यान नानक वडियाई।

अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दर्श हर राया सोई होवा जो तिस पाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी कृपा निद दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ है कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कह पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बांछे गौड़ी महला पंजवा हौं तां कै बलिहारी जां कै केवल नाम आधारी रहाओ महिमा तां की केतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन समसारे अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा तां कै चरण परों तां जीवा जन कै संग निहाला भगतन की रेन होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जोबन अवध जो दिसै सब

तिस करते पूर रहे हो रतनागर रे। जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे। नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता। सगल कटां प्रित पारी रहाओ महा कष्ट काटे खिन पीतर। रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरनी। जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखै। पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन मह। जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर। ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर। जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो। निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै। नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक। साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद। छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग। त्याग चल्यो है मूढ़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया। सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहिया जाने दूर है। कहो नानक सदा हदूर है। गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नु। सागर लहर संसार संसार गुरबोहित पार ग्राम नु रहाओ। कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी। मतवारू माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया। कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक। सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया। गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया। गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम। सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले। नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा। जी अरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु। तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है। वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है। आगे तिल नहीं मानी है हम बुद्ध कर्म कमावने। ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे। नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा। बार न बलिहार न लख बरिया नामो हो नाम साहिब को। प्राण अधरिया रहाव कर्ण करावन तुही एक। जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू तली। तू निर्गुण तू सरगुणी इहां उहां तुम रखे। गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान। नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा। हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै। परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत पने। सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन। राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिर है। गोविंद लोक नहीं जन्म मर है बल बुद्ध स्यान पहो मैं रही। हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा। मन राम नाम गुण गाई है नीत नीत हर सेवी है।
सास सास हर त्याय रहाओ, संत संग हर मन वसै, दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै, संत प्रसाद हर जापी है, सो जन दुख ना व्यापी है, जा को गुर हर मंत्र दे, सो उभरिया माया अग्नते, नानक को प्रभ मया कर, मेरा मन तन वासै नाम हर, गौड़ी महला पंजवां, रसना जपिया एक नाम, इहां सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम रहाव, कटिया तेरा अहंग रोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग, हर रस जिन जन चाखिया, तां की तृष्णा लाथिया, हर विश्राम निध पाया, सो बहुर न कत ही ताया, हर हर नाम जा को गुर दिया, नानक तां का भौ गया, गौड़ी महला पंजवां, जा को बिसरै राम नाम, ताहू को पीर, साध संगत मिल हर रवह से गुणी गहीर रहाव, जा को गुरमुख हृदय बुद्ध, तां कै कर तल नव निध सिद्ध, जो जान है हर प्रभ धनी, किस नाही तां कै कमी, करनै हार पछानिया, सर्ब सुख रंग माणिया, हर तन जा कै ग्रह वसै, कहो नानक तिन संग दुख नसै, गौड़ी महला पंजवां, गर्भ बड़ो मूल इतनो, रहन नहीं गहो कितनो रहाव, बेबरजत बेद संतना, वाहू स्यों रे हितनो, हार जुआर जुआ बिदे, इंद्री वस लै जितनो, हरन परन संपूर्णा, चरण कमल रंग रितनो, नानक उदरे साध संग, कृपा निध मैं दितनो, गौड़ी महला पंजवां, मोहे दासरो ठाकर को, तान प्रभ का खाना रहाओ, ऐसो है रे खसम हमारा, खिन मह साज सवार नहारा, काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा, सरन परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन धीरा, एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा, गौड़ी महला पंजवां, है कोई ऐसा हूं मैं तोरै, इस मीठी ते इहो मन हो रै रहाओ, अज्ञानी मनुख भया, जो नाही सो लोरै, रैण अंधारी कारिया, कमन जुगत जित पूरै, प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरै, कहो नानक कृपा पही, साध संगत निद मोरै, गौड़ी महला पंजवां, चिंता मन करना मई रहाव, दीन दयाला पार ब्रह्म, जाकै सिमरन सुख पै, अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खै, कृपा निद प्रभ मया तार, नानक हर हर नाम लई, गौड़ी पूर्वी महला पंजवां, मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए, जान दिन बिसरै प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाए रहाव, एक रैन के पहुन तुम आए, बहु जुग आस बंधाए, ग्रह मंदर संपै जो दिसै, ज्यों तरवर की छाए, तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए, देवनहारा बिसरियो ठाकुर, खिन मह होत पराए, पहरे बागा कर इशनाना, चोआ चंदन लाए, निरपहो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यों हस्ती नवाए, ज्यों हुए कृपाल, ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए, मुक्त भया बंधन गुरु खोले, जन नानक हर गुण गाए, गौड़ी पूर्वी महला पंजवां, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए, रत्न जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बल हरिए रहाव, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइए, जो हुए दयाल सतगुरे अपना, तां एह मत बुद्ध पाइए, मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूटे,
सर्व सुखा सुख पाई है। सेव स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आई है। नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारे चल है। कर सेवा सतगुरे अपने की गुर ते पाई है पल। गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी बिन से सर्व अंदेसा। नानक सुख पाया हर कीर्तन मिटियो सगल कलेशा। राग गौड़ी महला पंजवां।

कारी अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजिए जा कोरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजिए गौड़ी महला पंजवां सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो डंड धर हो।

का भगत प्रिय हो गौड़ी महल्ला पंजवा गुण कीरत निद मोरी रहाओ तू ही रस तू ही जस तू ही रूप तू ही रंग।

कीर्तन हुए उदार, राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख, चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस

चेते बंद परे, जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए। जो लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए। जो लो पोट उठाई चल्यो तौ लो दान भरे, पोट डार गुरु पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय। गौड़ी माला महला पंजवा, भावन त्यागियो री त्यागियो, त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो। सर्व सुख आनंद मंगल रस, मान गोबिंद आगियो रहाओ। मान अभमान दो समाने, मस्तक डार गुर पागियो। संपत हरख ना आपत दुखा, रंग ठाकुर लागियो। बास बासरी एक स्वामी, उद्यान दृष्टागियो। निरपौ भय संत भ्रम डारियो, पूर्ण सर्वागियो। जो किश करतै कारण कीनो, मन बुरो न लागियो। साध संगत प्रसाद संतन कै, सोयो मन जागियो। जन नानक ओड़ तुहारी परियो, आयो सरनागियो। नाम रंग सहज रस माने, फिर दुख ना लागियो। गौड़ी माला महला पंजवा, पाया लाल रतन मन पाया, तन शीतल मन शीतल थिया। सतगुर शब्द समाया रहाओ, लाथी भूख त्रिशन सब लाथी, चिंता सगल बिसारी। कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ, मन जीतो जग सारी। तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर, डोलन ते अब चूके। अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नहीं रे मूके। अचरज एक सुनो रे भाई, गुरे ऐसी बूझ बुझाई। लाहे परदा ठाकुर जो पेटे हो, तो बिसरी तात पराई। कहो ना जाई एहो अचंभव, सो जाने जिन चाखिया। कहो नानक सच भये बिगासा, गुर निधान हृदय लै राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरनी। सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते धरनी रहाओ। शास्त सिमरत वेद बिचारी, महापुरखन इउ कहिया। बिन हर भजन नाही निस्तारा, सुख ना किन्हू लहिया। तीन भवन की लक्ष्मी जोरी, बूजत नाही लहरे। बिन हर भगत कहां थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बलास करत मन मोहन, पूरन होत ना कामा। जल तो कबहू ना बूजत, सगल बिरथे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, एह सार सुख पूरा। साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की धूरा। गौड़ी माला महला पंजवा, मोको एह बिद को समझावे, करता होए जनावे रहाओ। अनजानत किश इनह कमानो, जप तप कशु ना सादा। दह दिस लै इहो मन दौरायो, कमन कर्म कर बांदा। मन तन धन भूम का ठाकुर, हौ इसका इहो मेरा। परम मोह कस सूजस नाई, एह पैखर पए पैरा। तब इहो कहां कमावन परिया, जब इहो कछु ना होता। जब एक निरंजन निरंकार प्रभ, सब किश आपे करता। अपने कर्तव्य आपे जाने, जिन इहो रचन रचाया। कहो नानक करन हार है आपे, सतगुर परम चुकाया। गौड़ी माला महला पंजवा, हर बिन अवर क्रिया बिरथे, जप तप संयम कर्म कमाणी। एहे ओरे मूसे रहाओ, वरत नेम संयम मह रहता, तिनका आड़ ना पाया। आगे चलन और है भाई, ऊहा काम ना आया। तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता, आगे ठहर ना पावे। ऊहा काम ना आवे एह बिद, ओह लोगन ही पति आवे। चतर वेद मुख बचनी उचरे, आगे महल ना पाईए। बूझे नाही एक सुधाखर,
ओहो सगली झाख चखाई है। नानक कहतो एहो बीचारा, जे कमावै सो पार ग्रामी। गुर सेव हो अर नाम त्याव हो, त्याग हो मन हो गुमानी। गौड़ी माला पंजवा माधो, हर हर हर मुख कही है। हम ते कशु ना हुवै स्वामी, ज्यो राखो हो त्यो रही है। रहाओ क्या किस करे के करने हारा, क्या इस हाथ बिचारे। जित तुम लावो हो तित ही लागा, पूरन खसम हमारे। करो कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लिव लावो हो। नानक की बेनंती हर पह, अपना नाम जपावो। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दीन दयाल दमोदर राया जीओ, कोट जना कर

वाण तेन त्रे पवन सुख परमानंदा जीओ सेज सुहावी इहो मन बिकसंदा जीओ पेख दर्शन इहो सुख लहिया जीओ चरण पखार करी नित सेवा जी।

मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजो।

मारे सुख वसा सच शब्द निशान रहाव सबे गल्ला जातियां सुन कै चुप किया कद ही सुरत ना लदिया माया मोहड़िया दे बजारत सारता से अखी डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया इकस दोहो चौहो क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अध नाए रसियड़ा का विरली जाए बुठी भगत सच्चे दर सोहंदे आनंद करह दिन रात रंग रत्ते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौरी महला पंजवा मांझ दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधिय पूरन सतगुर ज्ञान रहाव जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाम जम कंकर ने

नारायण दयो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुठै सब किश पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा रहा। राम गोबिंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र। सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोविंद मनो विसारी है जिस सिमरत दुख जाए। जिस लड़ लगे जीवी है भवजल पई है पार, मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास। गौड़ी बाज महल।

प्रसाद सब फिक्किया तन मन फिक्का होय बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरै सब परवार साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे औगण सब मटाए कह पर उपकार करे माल खजाना थे हो कर हर के

रहियो राम सरनाई। गौड़ी महल्ला नौवा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, अहनस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों, एह विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग, देख तास उठतावे। भुगत मुक्त का कारण स्वामी, मूड़ता ही बिसरावे, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नौवा, साधु इहो मन गहियो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, याते थिर न रहाई रहाओ। कठिन क्रोध घट ही के भीतर, जेहे सुध सब बिसराई,

आई जन नानक हर पये दयाला तौ सब बिद बन आई गौड़ी महला नौवा साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काहे गवावो रहाओ पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो ताज अभमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंत एहो गुरमुख हुए तुम पावो गौड़ी महला नौवा को माई भूल्यो मन समझावै वेद पुराण साध मग सुन कर निमखना हर गुण गावे रहाओ दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सरावे माया मोह महा संकट बन तास्यो रुच उपजावे अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो नेहो ना लावे नानक मुक्त ताहे तुम मानो जेहे कट राम सुमावे गौड़ी महला नौ साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहाओ लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जे नाहिन सो मूरत है देवा सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब।

प्राणी गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यो हर सुंदर ग्रह नारी इनमें कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावे गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पार रे रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मोतर रे पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देहे बहुर नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला गौड़ी गुआररी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निध सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोए न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना नह भूलो नह परम पुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहज समाना गौड़ी गुआर री महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुरु अंकस सच शब्द निशान राज द्वार है सोभ सो मान चतराई न चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर्म है अमृत तस कर ले नन्ना कार न कोई करे राख है आप बड़ियाई दे नील अनिल अग्न एक ठाई गल निवरी गुरबूझ बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आखो कैसा सागर डूंघर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन न डरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कहया तिन कहन बखानिया जिन बूझया तिन सहज पछानिया देख बीचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रहया समाई निज कर व्याप रहया निज ठाई पुस्तक करह केते मन प्रीत तन मन सूचै साच सोचीत नानक हर पज नीता नीत गौड़ी गुआर री महला पहला ना मन मरै न कार्ज होय मन वस दूता दुरमत दोय
मन माने गुर ते एक होए, निर्गुण राम गुण वस होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहु चितै विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम गुरु दूर है ना ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन।

0: जोगी निरंजन त्यावे अन दिन जागे सच लिव नावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप तरह पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पैर अच रह सो निरपो होए जैसा सेवे तैसो होए नर निह केवल निरपो नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप पछाणे
1: साचे शब्द दर निसाणे
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै न जावे चूके आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसै सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलह उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठ सठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूजे झगरत जग काचा गुर समझावे सोजी होई गुरमुख विरला बूजै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूजे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रे भवन धारे
1: आत्म चीना सो तत बिचारी
0: साच हृदय सच प्रेम निवास प्रणवत नानक हम ता के दास गौड़ी महला पहला ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया वेद की विपत पड़ी पछतानिया जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ नवारे रहाओ बाल राजा माया अहंकारी जगन करे बहु पार अफारी बिन गुर पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवे बिन गुर अंत ना पाए अपेवे आप पलाए आपे मत देवे दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद पुदारे कृपा धारी भूलो रावण मुग्ध अचेत लूटी लंका शीस समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहु मद कीट महखासा हर नाक्ष ले लखो बिदासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारे रक्त बीज काल नेम बिदारी दैत संघार संत निस्तारी आपे सतगुर शब्द बिचारे दूजे पाए दैत संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खो

सुख पावै परम पलानिया, एक तिल भूले बहोर पछतानिया, कंस केस चंडूर ना कोई, राम ना चीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राखै कोई, बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म धीरज हर नाय, नानक नाम मिलै गुण गाय, गौड़ी महला पहला, चोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हंडावो, बिन हर नाम कहां सुख पावो, क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहां सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ शिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर महला सेज सुखाली, अहनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर ने बखवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे देवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बलावो, ताज कुलह सिर शत्र बनावो, बिन जगदीश कहां सच पावो, खान मुलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, हों मैं ममता गुर शब्द वसारी, गुरमत जानिया हृदय मरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक न जान से अवरे, परपंच ब्याद त्यागे कवरे, भाई मिले सच साचे साचरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिले मन धोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अगन जगत पर जारे, सो उबरै गुर शब्द बीचार।

कामन हितकारी, क्रोध बनासै सगल विकारी, पत मत खोवै नाम वसारी, पर कर चीत मनमुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर को देई, काम दाम चित पर वस सेई, बिन पिर त्रिपत ना कबहू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे।

नानक साच नाम मल खोई, गौड़ी महला पहला, राम नाम चित रापै जाका, उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपहु अपाग तुम्हारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ, गुरमत राम जपै जन पूरा, तित काट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा धार, जिनकै हिरदय हर हर सोई, तिनका दर्श परस सुख होई, सर्व जिया मैं एको रवे, मनमुख अहंकारी फिर जूनी पवे, सो बूझै जो सतगुर पाए, हउ मैं मारे गुर शब्दे पाए, अर्ध उर्द की संद क्यों जाने, गुरमुख संद मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ हुए दयाल नानक जन तरिए, सोलह अष्टपदियां ग्वारी गौड़ी किया, गौड़ी बैरागण महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ज्यो गाई को गोयली राख है कर सारा, एहन सुपाल राख ले आत्म सुख तारा, इत उतरा को दीन दयाला, तो शरणागत नजर निहाला रहा, जह देखो तह राव रहे राख राखन हारा, तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा, किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा, बिन उपमा जगदीश की बिन सैना अधियारा, जग बिन सत हम देखिया लोबे अहंकारा, गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा, निज कर महल अपार को अपरंपर सोई, बिन शब्द

मेरी आकाश पताला गुरमत नाम ना विसरे सहजी पत पाई अंतर शब्द निदान है मिल आप गवाई है नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावे नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए नबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावे बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कही है बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद निर्बही है।

अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रिस। इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीन आप को, सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूझी है, सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबह न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जम्मे वारो वार। सूतक अगन पौणे पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाए। सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोय, विण नामे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मह गुरमुख उतरस पार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहै समाय। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा। हर जियो राखो हिरदय उर तारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा। पंडित हर पढ़ तजोह विकारा, गुरमुख भोजन उतरोह पारा। रहाओ गुरमुख विचो हौमै जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए। गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रत्ते सुख होई। अपना मन प्रबोध हो बूझो हो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई। गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मन मुख डंप बहुत चतराई। जो किछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे तौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजियो लाए बह नित ध्याना। जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई।

इहु संसारा नित तीर्थ नावै न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हऊ मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई।

फिरै अहंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोहे अत परम पलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रत्ते सदा बैरागी, गिरही अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुर सेवह सेवड भागी, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिसते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण भरमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मलाया, अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया, रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला, तापना चीन है बन है पांड पराला, मनमुख अज्ञान कुमारग पाए, हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए, पवजल डूबे दूजै पाए, माया का मोहताज पंडित कहावे, बिख्या राता बहुत दुख पावे, जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे, गुरमुख जम काल नेड़ ना आवे, हौ मैं दूजा शब्द जलावे, ना मेरा ते हर गुण गावे, माया दासी भगतां की कार कमावे, चरनी लागे ता महल पावे, सद ही निर्मल सहज समावे, हर कथा सुन है से तनवंत दिस है जुग माही, तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही, सहजे गुण रवह साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया, नानक हौं मैं मार ब्रह्म मलाया, गौड़ी महला तीजा।

आय साच ना छपै जे को रखै छुपाए ज्ञानी बूझ सहज सुपाए गुरमुख साच रहिया लिभलाए हम माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मलाए सतगुर दाता शब्द सुनाए धावत राखै ठाक रहाए पूरे गुर ते सोजी पाए आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहज समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे अनगिन हिरदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ हिरदय सूख पया परगास गुरमुख गावे है सच गुण तास दासन दास नित होवे दास ग्रह कतंब मह सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावे सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कटंब स्यों प्रीत ना होई जां हिरदय वसिया सच सोई गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होई।

सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसै अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया परसादी सतगुर पाया पूरे वड भागी हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रग

मन करहला अत निर्मला मन लागी हों मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाई मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय कितै ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभत जाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुरु

जपना, सहजे भोजन सहजे पाओ, सहजे मिटियो सगल दुराओ, सहजे होआ साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्मन संग, सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुबदा तन की नासी, जा कै

सहज कथा मह आत्म रसिया ता कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया ता कै कार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जा कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बेताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहुरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती डंडौत पर साधन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दिसै पासारा बिन सजाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहा संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहा सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ता का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निश्चल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे इसह मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै जो इस मारे सो दरगाह सिजै जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवै गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वडभागा जो इस मारे सो अनदिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको भये कृपाल कृपा निद तिस भई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यों जुरे ता सबको मीत हर स्यों जुरे ता निश्चल चीत हर स्यों जुरे ना व्यापे

आस नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जाकै सुन नाम, कोट पूजा जाकै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की वाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मह फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी तुमरे संग, मन मेरे रच राम कै रंग। जाकै काम उतरै सब भूख, जाकै काम ना जो है दूत। जाकै काम तेरा वड गमर, जाकै काम होवै तू अमर।

एक है आप अनेक कह पांत, जांकी दृष्ट हुए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतर ना ही को मूड़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस भागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीव है साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मह जिया, कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाव, बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिस्ता महवास, बिन सिमरन पय कुकर काम, साकत बेसवा पूत नाम, बिन सिमरन जैसे सींग सतारा, बोलह कूर साकत मुख कारा, बिन सिमरन घर दब की न्याई, साकत थान पृष्ठ फराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद ना पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया, कहो नानक गुर जगत तराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरै मेरी पैज रखाई, गुर कै बचन त्यायो मोहे नाव, गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाव रहाव, गुर कै बचन सुन रसन बखाणी, गुर किरपा ते अमृत मेरी बाणी, गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर कै बचन मिटिया मेरा परम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग, गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिस की कटिया जम की पासा, गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी महला पंजवा।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन

करी रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनुकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुरबादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जन ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद जो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहै हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख।

सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खोजत फिरे असं

सुन पंथ डराऊं बहुत पैहारिया मैं तकी ओट संता लेहो उबारिया मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया सब गुण किसे ही नाही हर पूर भंडारिया चहो जिस जपिए नाओ सूख सवारिया मैं आही ओड़ त्योहार नानक बलिहारिया गुर

बहुर ना हारिया। मैं पायो सर्ब निदान अकथक थारिया, हर दरगाह शोभावंत बहां लुडारिया। जन नानक लद्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भौजल करिया कहो पुकारिया। गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार, सतगुर प्रसाद नारायण हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो रहाओ। ताज हूं मैं गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो। जो दिसै सो संग ना गयो, साकत मूड लगे पच मोयो। मोहन नाम सदा रब रहियो, कोट मदे किनै गुरमुख लहियो। हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पाव है अतुल सुखो। नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निधो। काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दोहों ते रहियो। दुख अंधेरा करते मिटियो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो। जिन सेव्या सो पार परियो, जन नानक गुरमुख जगत तरियो। महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ। बल तो जल तो तौ किया, गुर चंदन सीत लायो। अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दी पायो। पावक सागर गहरु चर संतन नाव तरायो। ना हम कर्म ना धर्म सोच, प्रभ गह पुजा अपायो। पौ खंडन दुख भंजनो, भगत वचल हर नायो। अनाथ है नाथ कृपाल दीन, समृथ संत उटायो। निर्गुण यारे की बेनती, देहो दर्श हर रायो। नानक सरन तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के फूगा, इन संग अंध न जानी। हौ संचो हौ खातता, सगली अवध बेहानी रहाओ। हौ सूरा प्रधान हौ, को नाही मुझे समानी। जो बनवंत अचार कुलीना, मन में हुए गुमानी। ज्यों उलझायो बाद बुद्ध का, मरत्या नहीं बिसरानी। पाई मीत बंदप सखे, पाछे तिन्हू कौ संपानी। जित लागो मन बासना, अंत साई प्रगटानी। अहम बुद्ध सुच कर्म कर, एहे बंधन बंधानी। दयाल पुरख कृपा कर।

आहार मीठ रस भोग भोजन सब झूठ कितै ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे नानक सा धन मिलै मलाई बिन पिर नींद ना आवे मुंद न मानड़िया जियो बिन धनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उर तारे नाह बिन कर वास नाही पुछो हो सखी सहेलियां बिन नाम प्रीत प्यार नाही वस है साच सहेलियां सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सहु जानिया नानक नाम ना छोड़े सा धन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ी हो हम पिर रावेहा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द सनेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन शब्द नेहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेली हो।

हम कर साजन आया, मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहस्ती, मुंद मन अमाहो साजन रहस्ते दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो कर जोड़ सा तन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया, नानक पिर तन करह रलिया, इच्छ मेरी पुनिया, गौड़ी चंत महला पहला, सुन नाह प्रभु जियो ए कलड़ी बन माहे, क्यों धीरेगी नाह बिना प्रभ वे परवाहे, धन नाह बाजो रह ना साके, बिखम रैन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे, सुन बेनंती मेरिया, बाजो प्यारे कोई ना सारे, ए कलड़ी कुरलाए, नानक सा तन मिले मलाई, बिन प्रीतम दुख पाए, फिर छोड़े अड़ी जियो कमन मलावे, रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावे, शब्दे सुहावे तां पत पावे, दीपक देह उजारे, सुन सखी सहेली साच सुहेली, साचे के गुण सारे, सतगुर मेली तां फिर रावी, बिगसी अमृत बाणी, नानक सा तन तां फिर रावे, जां तिसकै मन पाणी, माया मोहनी नी करिया जियो, कूड़ मुट्ठी कूड़ आरे, क्यों फूले गल जेवड़िया जियो, बिन गुर अथ प्यारे, हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे, तिस ही का सो होवे, पुन दान अनेक नावन, क्यों अंतर मल धोवे, नाम बिना गत कोए ना पावे, हठ निग्रह बेबाण, नानक सच कर शब्द सियापे, दुबदा महल के जाने, तेरा नाम सच्चा जीऊ,

भगत लाहा अन दिनु तिस बाज वखर कोई ना सूजै नाम ले वो खिन खिनु परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक ना

हर के गुण सारे। हिन पल रह न सकै जियो बिन हर प्यारे, बिन हर प्यारे रह न सकै गुर बिन महल न पाईऐ। जो गुर कहे सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाईऐ। हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई, बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मलाई जिसनो आप मलाए। धन रैन सुहेलड़िए जियो हर सिओ चित लाए, सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए। विचों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ, सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ। हर गुण सारी ता कंत प्यारी नामे तरी प्यारू, नानक कामण नाह प्यारी राम नाम गलहारू। तन एकलड़ी जियो बिन नाह प्यारे, दूजे भाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे। बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे, माया मोहे खुआई कूड़ बगुती ता फिर मुती सा तन महल न पाई। गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाए, नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मलाए। ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कमन मलाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन भरम चुकाए। गुर भरम चुकाए इओं मिलिए माए ता सा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए।

कामण रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारी नानक कामण हर वर पाया गुर कै भाई प्यारी गौड़ी महला तीजा फिर बिन खरी निमाणी जियो बिन फिर क्यों जीवा मेरी माई फिर बिन नींद ना आवै जियो कापड़ तन ना सुहाई कापर तन सुहावै जां फिर भावै गुरमती चित लाइए सदा सुहागण जां सतगुर सेवे गुर कै अंक समाइए गुर शब्द मेला तां फिर रावी लाहा नाम संसारी नानक कामण नाह प्यारी जां हर के गुण सारी सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारी गुर शब्द विचारे हमें मारी इन बिद मिलोह प्यारे सा धन सुहागण सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गही है दुबदा मार निवारे नानक कामण हर वर पाया।

कूड़ मुट्ठी कूड़ियारी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जुए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचों हो मैं मारी। हर का नाम हृदय बसाए, ऐसा करे सिंगारू। नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मैं नैणी नींद ना आवै जियो, भावै अन्न ना पानी। पानी अन्न ना भावै, मरियै हावै। बिन फिर क्यों सुख पाईऐ, गुर आगे करो बिनंती। जे गुर पावै ज्यो मिलै तिवै मिलाईऐ। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए। नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो। हर कै सहज सुपाए, मन मोहन मोहे लिया जियो। दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए। कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाए प्यारे। रैण सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिया प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम यत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हम मैं मारे, गुरमुख कार्य सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी। किस आग्या जाहि पुकारे, नानक मनमुख थाउ ना पाए। बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो। फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिया जियो। आपे बख्शन हारा, अवगुण बख्शन हारा। कामन कंत प्यारा, कट कट रहे आसमाई। प्रेम प्रीत पाए भगती पाईऐ, सतगुर बूझ बुझाई। सदा आनंद रहे दिन राती, अन दिन रहे लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निध पाई। गौड़ी महला तीजा, माया

सज्जन भय मनूरा। स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की विद नहीं जानी। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी। हम मैं तात संसारे, जो आया सो सब को जाती। उभरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम बखाने। आप तरह कुल तारे, नानक नाम बसे घट अंतर। गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो। बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो।

सेवा सुरत भगत एह साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे। जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुणदाता अवगुण काटे हिरदय नाम वसाए। नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा।

हर पाई, घर बैठिया हर पाई, सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए, गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए, नामो बीजे नामो जम्मे, नामो मन वसाई, नानक सच नाम वडियाई, पूरब लिखिया पाए, हर का नाम मीठा पिरा जियो, जा चाख है चित लाए, रसना हर रस चाख मुइये जियो, अनरस साध गुआई, सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम त्याए सदा सुख पाए, नाम रह लिवलाए, नामे उपजै नामे बिनसै, नामे सच समाए।

छोड़ परदेश सदाई दूजै किनै सुख ना पायो पिरा जियो बिखिया लोभ लुभाए बिखिया लोभ लुभाए भरम भलाए ओह क्यों कर सुख पाए चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूकै जा गुर शब्दी चित लाए मन मुख मुग्ध गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का भ्रम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए राग गौड़ी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन बैराग भया जियो क्यों देखा प्रभ दाते मेरे मीत सखा हर जियो गुरपुरख बधाते पुरखो बधाता एक श्री तर क्यों मिलह तुझे अड़ीनिया कर करह सेवा आसीस चरणी मन आस दर्श निमानिया सास सास ना घड़ी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारिंग ज्यों प्यासे क्यों मिलिए प्रभ दाते एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे

देख चलत तुम्हारी, चलता तुम्हारी देख मोही। उदास धन क्यों धीरे, गुणवंत नाहा दयाल बाला, सर्व गुण भरपूरे।

करि आवहु नाह प्यारी। हौ माने अर्पी सब ताने अर्पी, अर्पी सब देसा। हौ सिर अर्पी तिस मीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेसा। अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया। खिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया। दिन रहन रलिया करै कामण, मिटे सगल अंदेसा। बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो, वजी वधाई। कर लाल आया प्यारा, सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया। सब मीत बंद पहरख उपजिया, दूत थाऊ गवाया। अनहत वाजे बजे है घर मह, फिर संग सेज विछाई। बिनवंत नानक सहज रह, हर मिलिया कंत सुखदाई। गौड़ी महला पंजवा। मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला। धर्मशाल अपार दै आर, ठाकुर सदा कीर्तन गावहे। जह साध संत इकत्तर होवहे, तहां तुझे त्यावहे। कर दया मया दयाल स्वामी, हो दीन कृपारा। बिनवंत नानक दर्श प्यासे, मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप, चाल निराली। मोहन तू मान है एक जी, अवर सब राली। मान है ता एक अलेख ठाकुर, जिन्ह सब कल धारिया। तुद बचन गुर कै वस किया, आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहिया, आप सब कल धारिया। बिनवंत नानक पैज राखो, सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श ध्याना, मोहन जम नेर ना आवै तुद जपहै निधाना। जम काल किनको लगै नाही, जो एक मन त्यावे। मन बचन कर्म जे तुद अराध है, से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते, से देख दर्श सुगियाना। बिनवंत नानक राज निश्चल, पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। तारिया जहान

ना आया। बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही, सतगुर पुरख मरारी। बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारी। गौड़ी महला पंजवां सलोक, पतत असंख पनीत कर, पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को, तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण, गोविंदा हर माधु। त्याए मना मरार मुकंदे, कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन सिरी तहर, चरण कमल अराधिये। जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर, निमक सिमरत साधिये। कल मलै दहता शुद्ध करता, दिन सरैन अराधु। बिनवंत नानक करहु कृपा, गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर, पै पंजन हर राया। श्री रंगो दयाल मनोहर, भगत वच्छल बिरदाया। भगत वच्छल पुरख पूरन, मन है चिंदिया पाईए। ताम अंध कूप ते उधार है, नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन, गुण अनक भगती गाया। बिनवंत नानक करहु कृपा, पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर, सर्व कला जिन तारी। करुणा में समरथ स्वामी, कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता, बेअंत अगम अपारू। शरण जोग समरथ मोहन, सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह, जपत नाम मरारी। बिनवंत नानक करहो कृपा, समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी, सब ते ऊच दयाला। विसंबर देवन को एक है, सर्व करे प्रतपाला। प्रतपाल महादयाल दाना, दया तारी सब किसे। काल कंटक लोभ मोह नासे, जी जा के प्रभ बसे। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा, पई पूर्ण काला। बिनवंत नानक इच पुन्नी, जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवा, सुन सखिए मिल उद्म करेहा। मनाए लह हर कंते, मान त्याग कर भगत ठगौरी। मोह है साधु मंते, सखी वासे आया फिर छोड़ ना जाई। एह रीत भली भगवंत है, नानक जरा मरन पै नरक निवारे। पनीत करे तिस जनते, सुन सखिए एह भली बिनंती। एहो मतांत पकाइए, सहज सुपाए अपाद रहत होए। गीत गोविंदह गाइए, कल कलेश मिट है ब्रह्म नास है। मन चिंदिया फल पाइए, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। नानक नाम ते आइए, सखी इश करी नित सुख मनाई। प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागण। देखो थान सबाए, खोज लहो हर संत जना संग। समर्थ पुरख मलाए, नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता। सेवड भागी माए, सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे। मेरा मन तन हर संग लिया, सुन सखिए मेरी नींद पली। मैं आपनड़ा फिर मिलिया, प्रम खोयो शांत सहज स्वामी। प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी। नानक सुहाग ना टलिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंद पसुहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम अपदेश, गुरुदेव मंत्र नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत,
गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित करा, गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक, आपह किया कराया आपह करना जोग, नानक एको रब रहया दूसर होवा ना होग पौड़ी, ओं साध सतगुर नमस्कारन आद मद अंत निरंकारन, आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन, आपने आप आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो, आपह सूखम आपह अस्थूला, लखी न जाई नानक लीला, कर कृपा।

ओं गुरमुख कियो अकारा एक है सूत पुरोवन हारा पिन पिन त्रै गुण विस्थारन निर्गुण ते सरगुण दृष्टारन सगल पांत कर करह अपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूहू पांत ते आप नरारा नानक अंत न पारा वारा सलोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सोच पाई है तेह संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सत पुरख ते भिन्न ना को सो सरन परै जिह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापक प्रगट प्रताप ताहू को जापत सो साधु एह पहुंचन हारा नानक ता कै सद बलिहारा सलोक धन धन कहां पकारते माया मोह सब कूर नाम बिहूने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जे रुच या मनुआ तन नहीं बाछ सुरजना आछ अत प्रिय प्रीत साध रज राच है धंधे कहां व्यापहता हूं जो एक शाद अन कतै ना जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान मन हठ मिलियो ना कोय कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनक जुगत शास्त्र कर पातों ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो कहत सुनत कस जोग ना हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै उसन सीत समसर सब ताकै ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जा को कृपा तारी सलोक आमने आए सृष्ट मह बिन बूझे पस ढोर नानक गुरमुख सो बुझे जा कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मह एक को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देव नहार मन है बिसराना तारु कृपा जिसह गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म आग्या पिन्ना कोए आमन जाना ते मिटै नानक जिहे मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जो न फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरो बिखम एह माया कर कृपा सतसंग मलाए नानक तां कै निकट ना माए सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप असे आपन हों हों करे नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी ये कह आप करावन हारा आपै पाप पुन बिसथारा या जुग जित जित आपै लायो सो सो पायो जो आप दुआयो वाका अंत ना जाने को जो जो करे सो फुन हो ये कहते सगला बिसथारा नानक आप सवार नहारा सलोक राच रहे बनता बनोद कुसुम रंग बिख शोर नानक ते सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मान बिन हर जह रचो तह तह बंधन पाहे जेह बिद कतु ना छूटी है साकत तेऊ कमाहे हौ हौ करते कर्म रत ताको भार अपार प्रीत

नै बुझै सो प्रभ सदहु संग। लेखै गणत ना छूटियै काची भीत ना सुध, जिसै बुझाए नानका तेह गुरमुख निर्मल बुद्ध। सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग, जो राते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग पौड़ी। रारा रंग हो या मन अपना, हर हर नाम जप हो जप रसना। रे रे दरगाह कह ना को, आओ बैठ आदर शुभ देव। वाह महली पावह तू बासा, जन्म मरन नह हुए बनासा। मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके, हर संपै नानक करता कै। सलोक लालच झूठ विकार मोह, व्यापत मूड़े अंध। लाग परे दुर्गंध स्यों, नानक माया बंद पौड़ी। लल्ला लपट बिखै रस राते, अहम बुद्ध माया मद माते। या माया मैं जन्मे मरना, ज्यों ज्यों हुक्म त्यों त्यों करना। को ऊन न को पूरा, को सुगर न को मूरा। जित जित लाभ तित तित लगना, नानक ठाकुर सदा अलिपना। सलोक लाल गोपाल।

करी नानक जो प्रभ पाणिया पूरी तिना परी। सलोक गन मिन देखो मने माहि सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटै नानक नाम अरोग पौड़ी। गग्गा गोविंद गुण रवो सास सास जपनीत कहां बसासा देह का बिलम ना करे हो मीत। नह बारक नह जोबन नह बिरदी कस बंद ओह बेरा नह दूजी है जो आए पर जम फंद। ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं ए ठाए छाड़ छाड़ सगली गई मूड़ तहां लपटाए। गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफलते जाको प्रिय है सुहाग। सलोक कोके शास्त्र वेद सब आन ना कथतो कोय आद जुगादी हुण होवत नानक कै सोए पौड़ी। कग्गा कालो मन है एह बिन हर दूसर नाही नह हुआ नह होना जत कत ओही समाहे। कुलह तो मन जो आवे सरना नाम तत कल मह पुनः चरना काल काल अनक पछतावे बिन हर भगत कहां थित पावे। कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुर जां को दिया। सलोक नान काले सब दिवस सास नह बढ़न कटन तिल सार जीवन लो रह परम मोह नानक ते गुवार पौड़ी। गंगा अंगरासै काल ते जो साकत प्रभ कीन अनक जोन जन्मह मरह आत्म राम ना कीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जिहे आप दुआए। गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै सो जीवत जेह जीवत जपया प्रगट भये नानक नह छपया। सलोक चित चितमो चरनार बिंद ऊंद कवल बिग शांत प्रगट भये आपै गोबिंद नानक संत मतांत। पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन उवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दह दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार बचार बिनस्यो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेह नेत्रा। सलोक छाती शीतल मन सुखी शंत गोबिंद गुण गाय ऐसी कृपा करहु प्रभ नानक दास दसाए। पौड़ी छछा शोहरे दास तुम्हारी दास दासन के पानी हारी छछा शार होत तेरे संता अपनी कृपा करहु भगवंता। छाड़ सियानप बहु चतराई संतन की मन टेक टकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई। सलोक जोर जुल्म फूलह कनो काची देह विकार हम बुद बंधन परे नानक नाम छुटार। पौड़ी जज्जा जानै हौ कछ हुआ बांधियो ज्यो नननी भ्रम सुआ जो जानै हौ भगत ज्ञानी आगै ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जानै मैं कथनी करता व्यापारी बसधा ज्यो फिरता साध संग जे हौ मैं मारी नानक तां को मिले मरारी। सलोक चालांगे उठ नाम जप निसबासुर आराध कारहा तुझै ना व्यापई नानक मिटै उपाद। पौड़ी चज्जा चूरन मिटै तुमारो राम नाम स्यों कर व्यवहारो चूरत चूरत साकत मुआ जां कह हृदय होत पाओ बिया चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा संत संग सुनुआ। चरह काम क्रोध दृष्टाई नानक जाको कृपा गुसाई। सलोक यतन करो तुम अनक बिद रहन न पावो मीत जीवत रहो हर हर भजो हो नानक नाम प्रीत। पवड़ी जन्या जानो दृढ़ सही बिन सजात एहेत गणती गणो ना गण सको
ऊठ सधारे केत न्यो पेखो सो बिनसतो कास्यो करिए संग ज्ञान होया बिद सही चित झूठो माया रंग ज्ञान सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंध कूप ते कड्ढो जे हो वो सो परसन ज्ञान कै हाथ समरथ ते कारण करने जोग नानक ते उस्तत करो न्याहू कियो संयोग सलोक टूटे बंधन जन्म मरन साध सेव सुख पाए नानक मनो ना बिसरे गुण निद गोबिंद राय पौड़ी टहल करहो तो एक की जाते बिरथा ना कोय मन फन मुख ही है बसे जो चाहो सो होए टहल मैल ता को मिले जा को साध कृपाल साधु संगत तो बसे जो आपन होहे दयाल तोहे ताहे बहु पवन बिन ना

रसिया ठाकुरे अपने जो जन पाया नानक उवा का मन सीतलाया। श्लोक दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी डड्डा डेरा एहो नहीं जह डेरा तह जान वा डेरा का संयम गुर कै शब्द पछान या डेरा को श्रम कर खाल जाका तसु नहीं संग चाल वा डेरा की सो मित जान जाको दृष्ट पूर्ण भगवान डेरा निश्चल सच साध संग पाया।

नानक कुबरे जप हरी साध संग संबंध पौड़ी टड्डा ढूंढत कह फिरो ढूंढन या मन माहे संग तुहार है प्रभु बसै बन बन कहां फराहे तेरी ताहो साध संग हम बुद्ध बिकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल तेरी जामै जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रह हों हों आवे जाए तहत तहत अब टह परे साध जना सरनाए दुख के फाहे काटिया नानक लिए समाए सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू नह छुटह निकट ना जाइयो दूत पौड़ी नाना रण ते सीजी है आत्म जीत कोवे हों मैं अंस्यो लर मरे सो सोभा दू होए मणि मटाए जीवत मरे गुर पूरे अपदेश मनुआ जीत हर मिले तेहे सूर तन वेस ना को जाने आपनु एक है टेक आधार रैन दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए हुक्मै बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए सलोक तन मन तन अर्पो तिसै प्रभु मलावै मोहे नानक भ्रम पहु काटियै चूकै जम की जोह पौड़ी तत्ता तांस्यो प्रीत कर गुण निध गोबिंद राय हल पावह मन बांछते तपत तुहारी जाय त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाव गत पावह मत हुए परगास महली पावह ठाव ताहू संग ना धन चलै ग्रह जोबन नहराज संत संग सिमरत रहो एह तुहारे काज ताता कछु ना हुई है जो ताप नवारे आप प्रतपाले नानक हमह आपह माई बाप सलोक थाके बहु बिद काल ते कृपत न तृष्णा लाख संच संच साकत मुए नानक माया ना साथ पौड़ी थत्था थिर को नहीं काए पसारु पाम अनक बंच बल छल करहु माया एक अपाव थैली संच हो श्रम करहु थाक परहु गवार मन कै कामना आवई अंते अवसर बार हित पावहु गोबिंद भजहु संत है की सिख ले हो प्रीत करहु सद एक स्यों या साचा असनेहु कारण करन करामनु सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो तित तित लग है नानक जंत अनाथ सलोक दासा एक निहारिया सब कछ दे मनहार सास सास सिमरत रह नानक दर्श आधार।

मत पूरी प्रधान ते गुर पूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ आपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवा कै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं ते माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूटन नाहे नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे पवड़ी जैया यतन करत बहु बिदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारे सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाता मन बच क्रम जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगति आई। सलोक रोस न काहू संग करहो अपने आप विचार होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी ताज अवमान छुटै तेरी बाकी रण दर्ग है तो सीजै भाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बेकारा गुर पूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते। सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाहु नाम औखद जे हृदय हटावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है भाई।

देव सर्वत्र में ऊन न कतहु ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी, ववा वैर न करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहू, वास देव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गविया, वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चेहन सगल है ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बेहानिया, साकत मुग्ध अजान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावन, नानक किरत कमान पौड़ी, राड़ा लाड़ मिटे संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बसे रिद माही, वा की राड़ मिटत बिन साही, राड़ करत साकत गावारा, जेहे ही है हम बुद बेकारा, राड़ा गुरमुख राड़ मटाई, निमख माही नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट गहो, उकत सियान पत्याग, गुर दीखिया जेहे मन बसै, नानक मस्तक भाग पौड़ी, सस्सा शरण परे अबहारी, शास्त्र सिमरत वेद पुकारी, सोधत सोधत सोध बीचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सास सास हम भूलन हारे, तुम समरत अगनत अपारे, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख पाए,

जो किन मैं ऊने सुबर पराहू खरा निमा ना होत परानी अन दिन जापै प्रभ निर्वाणी भावै खसम ता वा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परहो हर राय उकत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई।

0: माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत नरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित करा गुरुदेव याद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उधरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा इहो सलोक आद अंत पढ़ना
1: गौड़ी सुखमनी।

हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय। हर सिमरन भये सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौहों कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन वह आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभ साथ अष्टपदी।

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते करे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।

पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार की।

अपमान। आप सुकौ जो जाने नीचा, सो गनिये सब ते ऊंचा। जाका मन हुए सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट कीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, एक है सगल श्रेष्ठ साजना।

दृढ़ कर्मान मन है प्रतीत, काल न आवे मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ त्रोह।

याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम

लपट रहे हो तह अंध अंधार बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुभा।

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या ध्रुह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रियै रुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा।

जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक तां कै बल बल जाम। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू पीन। अवर अपदेसै

अष्टपदी यह प्रसाद छत्ती ही अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे यह प्रसाद सुगंधत तन लाव है तिसको सिमरत परम गत पाव है यह प्रसाद बस है सुख मंदर तिसै त्याई सदा मन अंदर यह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहु तिस रसना यह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग यह प्रसाद पाठ पटंबर हंधावे है तिसै त्याग कत अवर लुभावे है।

खानै मुखता को जस रसन बखानै जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगाह मान पावह नानक पत सेती घर जावह जिह प्रसाद अरोग कंचन देही निव लाभ तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावह हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके मन चरनी पार ठाकर प्रभ ताकै जिह प्रसाद तुझ को ना पहुंचै मन सास सास सिमरहु प्रभ उच्चे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ता की भगत करे जिह प्रसाद अपूखन पहरीजै मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै जिह प्रसाद असवहस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी जिह प्रसाद बाग मिलख धना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसह त्याई तिसह त्याई जो

सोए। आप जपाए जपै सो नाऊ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते हुए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास। प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्ब निदान प्रभु तेरी मया, आप हो कछु न किन्हू लया। जित जित लाभ हो तित लग है हर नाथ, नानक इनके

ता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरनै कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहु धावै साध संग अस्थित मन पावै।

साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्ब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरता जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाऊ, साध संग हर के गुण गाऊ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट दीठा, साध संग भय आग्याकारी, साध संग गत भई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जान है, जेता सुनह तेता बखियान है, साध की उपमा तिहो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई, सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जा

नाही अभमान ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी कीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजह महेश्वर, नानक ब्रह्म

पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म में सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन

ना पाईए धर्म नानक किस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म नाम तिस नगरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान तू दास दरगाह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास

अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट अचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन ब्रह्म है उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब काब विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है, नानक करते का अंत न पाव है, कई कोट भय अभमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरे सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठते ही खाए, कई कोट काल है थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट

दास तिन होवत आत्म परगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पये सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख

आवै, इसके हाथ हुए ता सब किस ले, जो तिस पावै सोई करे, अनजानत बिख्या मह रचै, जे जानत अपने आप बचै, परमे फूला दह दिस तावै।

बड़ राजा कबहू भिखारी नीच का साजा कबहू अपकीर्त मह आवे कबहू भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै गुर प्रसाद नानक सच कह कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मोन धारी लावे ध्यान कबहू तट तीर्थ इशनान कबहू सिद्ध साधक मुख गया।

बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदे जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सोआन जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस कहो कर्मवंत कहावे जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

तब इसको सुख नाही कोई। जब एह जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई

को उठ धावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी तिसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करामन करन हार इसके हाथ

जाए। नानक सद ही रहे आसमाय, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्थार, सब कछ उसका ओह करनै हार, उसते भिन्न कहो किश होए, थान थनंतर एकै सोए, अपने चलते आप करनै हार, कौतक करै रंग अपार, मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन ना जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी।

नाही। नानक संत पावै ता उए पी गत पाहे। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक

दे बड़ भागी नानक जन से सलोक तज हो सियानप सुर जन हो सिमर हो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाय अष्टपदी मानुख की टेक बिरथी सब जान देवन को एक भगवान जिस कह दिए रह अघाय बहुर न तिस न लागे आय मार है राख है को आप मानुख कह किस नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए उस्तत मन मह कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगह नानकी उज्जल मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोलह हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिस की कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लाग है दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सब बूजिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई असथूल नह किस जन्म है नह किस मरे अपन चलते आप ही करे आमन जावन दृष्ट अनदृष्ट।

ਬਿਰਥਾ ਜਨ ਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ

संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए।

के पाए, सब काट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवै नानक हर नाव, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवण।

आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पीखनहार नाम सत सत ध्यानहार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रवक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को।

माने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो हो जस जेह बात नरात प्रभ अपने जन कीनी दात करह भगत आत्म कै चाय प्रभ अपने स्यो रह समाय जो होवा होवत सो जान प्रभ अपने का हुक्म पहचान तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ बसै हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जन अपना

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै।

बल जाओ। सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान पलया ना जाइए, नानक ऐसा गुरबत भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगहने, मन संतोख आत्म पतियानी। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लये मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोई, अमृत पीवै अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जां कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे, नानक भरम मोह दुख तह ते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पहु चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जप नाम मरारी। हित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रविया रूप रंग, पये प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चल बिन भजन, विखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार, एक सिमर नाम आधार। अवर अपाव सब मीत बसार हो, चरण कमल रिद मह उरतार हो। करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। इहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठ धावह, तो तन हर सेवा ते पावह। जिस सुख को नित बांचह मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। अनक अपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए। सर्व निधान मह

नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाई आत्म परगास, तित कर जाए बसै अबनासी।

सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का हुए उदहार हर हर सिमर प्राण अधार अनक अपावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करहु मन लाए मन बंछत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटाव है मूर्ख मना।

भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करहु मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, आप जप हो अवरा नाम जपाव हो, सुनत कहत रहत गत पाव हो, सार भूत सत

नाल सास ग्रास हर नाम संभाल चाड़ सियानप सगली मना साध संग पावे सच धना हर पूंजी संच करो व्यवहार।

एको एक एक हरे आप पूर्ण पूर रहो कब व्याप अनक विस्थार एक ते भये एक अराध परासत गए।

परया तौ सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजै चाहो साध कै संग परे सरनयान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहिया सतसंग हजूरी जिसका साथन लिया मलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे घाल ना भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर पर

आप पति यारा तह कौन कतह कौन सुनने हारा बहु बेअंत पूछते उच्चा नानक आपस को आपह पहुंचा जह आप रचियो प्रपंच अकार तेहो गुण मह कीनो विस्थार पाप पुन कह भई का।

छाती दृष्ट दर्शन पेहत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पहे अमर।

आए नानक तेह जन सोजी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहिया भगवंत तरन माहे आकाश पायाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल वन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी वैसंतर वाहे चार कुंत दैद से समाहे तिसते भिन्न नहीं को ठाव गुर प्रसाद नानक सुख पाव वेद प्राण सिमरत मह देख ससियर सूर नक्षत्र मैं एक पाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कबहू डोले सर्व कला कर खेल मोल ना पाई गुण है अमोल।

कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप भरपूर अंतरगत जिसे आप जनाए, नानक तिस जने आप बुझाए।

तिस सदा सुख हुए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार।

आओ हस्तपदि पूरे गुर का सुन अपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरहो हर धन के पर लेहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार।

समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाई साध सरन नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत जिस जन आवै।

हार शरण परो हर राए भ्रम कटिए नानक साध संग दुतिया भाव मिटाए पौड़ी दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत राम रतन मन तन बसे तज काम क्रोध लोभ मीत मरण मिटै जीवन मिलै बिन सह सगल कलेश आप तजोहो गोबिंद भजोहो भाओ भगत प्रवेश लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगाह पतवंत राम नाम धन संचवै साच साहा भगवंत उठत बैठत हर भजोहो साधु संग प्रीत नानक दुर्मत छुट गई।

नानक संत निर्मल पए, जिन मन वसया सोए पौड़ी, तृतीया त्रै गुण बिखे फाल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग भ्रम तो घणो, सदा संगारे नीच, हरख सोग सहसा संसार, हौं हौं करत बिहाय, जिन किए तिसह न जाननी।

मोह परम बूढ़त घनो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख लेहो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम पौड़ी चतुरथ चारे वेद सुन सोध्यो तत बीचार सर्ब खीम कल्याण निध राम नाम जप सार नरक निवारै दुख।

कार दुख दार्द अपवित्रता नासह नाम आधार सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला हुए नानक सादर वाल। सलोक पंच बकार मन में बसे राचे माया संग साध संग हुए निर्मला नानक प्रभ कै रंग पौड़ी। पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो पर पंच कुसम बास बहुरंग कणो सब मिथ्या बलबंच। नह जापै नह बूझियै नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच। सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार। पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुण अंत ना जान है सीख। नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीदे हर स्यों बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान भ्रम बिनसियो पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याए। सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुभाए नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिव लाए। पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार। आप तजो हो गोविंद भजो हो सरन पर हो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदे आप फल पाए। आठ पहर मन हर जपै

सारे नरक सुर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन

मन मह चितवे पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत कहल कमाई नानक इहो संजम प्रभ कृपा पाई।

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन बेद वर्त संपूर्ण भया, धावत मन राखे एक ठाई, मन तन शुद्ध।

राम पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार आवत जात नरके अवतार हर हर भजन ना मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख ना गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौ

सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पहचान। श्लोक आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पई

हों मैं छुट्टी, सिमरत हर को नाम, सरन गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कुटांब सियों, गुण

नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़े सुआया नानक होत ना।

सब ऊपर जा का हाथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई सरन जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिय सिमरहु हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की सरन सलोक दुख बिन से सहसा गयो सरन गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाय पौड़ी कोई गावे को सुने कोई करे विचार को उपदेसे को दृढ़ तिसका हुए उदहार किलबिख काटे हुए निर्मला जन्म जन्म मल जाय हलत पलत मुखी।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यों बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करहें सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठै सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखै ब्रह्म इक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब पावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या

कहाँ आवे, तिनके मुख दारे उजले, जिन हर हृदय सच्चा पावे, कूड़े आर पछाह सटियन, कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे, मुह काले कूड़े आरिया, कूड़े आर कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए, गुरसिखी अमृत बीजिया तिने अमृत फल हर पाए, उन्हां हलत पलत मुख उजले, ओए हर दरगहा सची पैनाए, इकना अंदर खोट नित खोट कमा।

पवे अहंकार ना विचों जाए। अहंकारिया नो दुख भुख है, हाथ तड है घर घर मगाए। कूड़ ठगी गुजी ना रहे, मलम्मा पाज लह जाए। जिस होवे पूर्व लिखिया, तिस सतगुर मिले प्रभ आए। ज्यों लोहा पारस भेटी है, मिल संगत।

आप मलाई गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगण शब्द जलाए अवगण विकण पल्लरी जिस देश हो सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिन अवगण मेट गुण प्रगट आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो आन दिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुच संजम हर नामे ही त्रिपतावे हर नाम तान हर नाम देवान हर नामो रख करावे जो चेत लाए पूजे गुरमूरत सो मन

बनावनी नानक पल पला पौड़ी तू वे परवाह अथाह है अतुल क्यों तुलिया सेवड़ भागी जे तुद त्याएं दे जिन सतगुर मिली है सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बणी है सतगुर की रीसै होर कच पिच बोल दे।

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन होए सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच्चे वख कड़े जजमाले सच्यार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का

रखै। हलत पलत सब तिसका गया, नित झहियां पाए झगू सुटे, झकदा झकदा झड़ पया। नित अपाव करै माया धन कारण, अगला धन भी उड गया। क्या ओह खट्टे क्या ओह खावै, जिस अंदर सहसा दुख पया। निर्वैरै नाल जे वैर विचारे, सब पाप जगतै का तिन सिर लया। ओस अगै पिछै ढोई नाही, जिस अंदर निंदा मुहे अंब पया। जे सोइने नो ओह हाथ पाए, आखेहू से तीर हल गया। जे गुर की सरनी फिर ओह आवै, ता पिछले औगण बख्श लया। जन नानक अन दिन नाम त्याया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब तू ऊपर तू दीवान। जो तुद सच त्याईंदे, सच सेवन सच्चे तेरा मान। उन्ना अंदर सच मुख उजले, सच बोलन सच्चे तेरा तान। से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाहिया,

से फिटे गुर अंगद कीते कूड़े आरे गुर तीजी पीढ़ी वेचारिया क्या हाथ एना वेचारे गुर चौथी पीढ़ी टिकया तिन निंदक दुष्ट सब तारे कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कारज सब सवारे जो इच्छा सो फल पाए सी पुत धन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारे सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर तारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत ललारे जन नानक मांगै धूड़ तिन जो गुरसिख मित प्यारे महला चौथा जिनको आप दे बड़ियाई जगत भी आपे आन तिनको पैरी पाए डरिया ता जे किश आप दू कीचै सब करता अपनी कला वधाए देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आन निवाए अपने आप भगता की रख करे हर स्वामी निंदका दुष्टा के मुंह काले कराए सतगुर की वड्याई नित चढ़ै सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए अन दिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सतगुर करी वसाए सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मुंह कढ़ाए गुरसिखा के मुंह उजले करे हर प्यारा गुर का जयकार संसार सबत कराए।

सच साहा हमारे सच पूंजी नाम दिरड़ाए प्रभ वणजारे थारे सच सेव है सच वणंज लह गुण कथ है निरारे सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लिखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला ओस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया नित चुगली करे अणहोंदी पराई मुंह कढ ना सकै ओस।

परताख गुरु जो विछड़े तिनको दर ढोई नाही कोई जाए मिले तिन निंदका मुह फिके थुक थुक मुहे पाही जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित भंबल भूसे खाही जिन गुरु गोपिया अपना से लैंदे तहां फराही तिनकी भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कुकाही उना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही सतगुर की वड़ियाई वेख ना सकनी उना अगे पिछे थाऊ नाही जो सतगुर मारे तिन जाए मिलह रहंदी खुंदी सब पत गुआही ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही हर तिन का दर्शन ना करहो जो

इन नाम अराध्या आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लए छाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जा दिथा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी।

त्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हाजी है मल होमै कड्डै धोए सच मणंजह रंग स्यों सच सौदा होए तोटा मूल न आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वसै सच सच्चा हर रखवाली।

चौथा सतसंगत मह हर पुस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया, वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है, उपदेश करह पर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावह हर नाम सुनावह, हर नामे जग निस्तारिया, गुर वेखण को सब कोई लोचै, नवखंड जगत नमस्कारिया, तुदे आपे आप रखिया सतगुर विच, गुर आपे तुद सवारिया, तू आपे पूजह पूज करावह, सतगुर को सिरजन हारिया, कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो, तिस काला मुंह जम मारिया, तिस अग्गै पिछै ढोई नाहीं।

सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्निया, ता पाप कसम्मल पन्ने। अपदेश जे दिता सतगुरु, सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का पाणा मन्निया, तिन चढ़ी चवगण वन्ने। एह चाल नराली गुरमुखी, गुर दीखिया सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा, जिन गुर गोपिया अपना, तिस ठौर ना ठाउ। हलत पलत दोवै गए, दरगाह नाही थाउ। ओह वेला हथ ना आवई, फिर सतगुर लगे पाए। सतगुर की गणत कुसी है, दुखे दुख विहाय। सतगुर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वर्तदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कढ दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आरी जाए रले सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर संत सहाई नानका वरतै सब जाहर महला पंजवां मुंडो भुले मुंड ते कितै।

को अपनी आपे पछताणी अजराइल फरेसता तिन पीड़े कहानी। श्लोक महला पंजवा सेवक सच्चे शाह के से परवान दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए राम नाम धन वखरो नानक सदा ध्याए पौड़ी।

कौन किसनो रखे, नानक तिस शरणागति, जो पुरख अलख है। श्लोक महला पंजवा, नरक घोर बहु दुख घणी, किरत घणा का थान, तिन प्रभ मारे नानका, होए होए मोए हराम। महला पंजवा, अवखद सबे।

तुस दिता पूरे सतगुरु हर तन सच अखुट सब अंदेसे मिट गए जम का भौ छुट काम क्रोध बुरियाइयां।

मैं संग जुट सलोक महला चौथा तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नू फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिखिया ले नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सब हसन लगे।

हर कीर्तन भगत नित गावंदे, हर नाम सुखदाय, हर भगतानो नित नावे दी वडियाई, बख्शियन नित चढ़ै सवाई, हर भगतानो थिर घरी बहालियन, अपनी पैज रखाई, निंदका पासो हर लेखा मंगसी, बहु दे सजाई, जेहा निंदक अपने जिए कमावंदे, तेहो फल पाई, अंदर कमाना सर पर उगड़ै, पावे कोई वह धरती विच कमाई, जन नानक देख विगसिया।

0: वेद कहम दे,
1: भगत मुखै ते बोल दे, से वचन हवन दे, प्रगट पहारै जाप दे, सब लोक सुनन दे, सुख ना पायन मुग्ध नर, संत नाल खहन दे, ओए लोचन ओना गुणा नू, ओए अहंकार।

के पूरै सतगुर भावै गुर सिखा अंदर सतगुरु वरतै जो सिखा नू लोचै सो गुर खुशी आवै सतगुर आखै सो कार कमावन सो जप कमावै।

कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड तू वड वड्डे। जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े। जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड गड़े। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे। ज्यों पावे त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे। सुद गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उपर।

ना लद्या नानक से साबास जिन्नी गुरमिल एक पछाणिया पौड़ी जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा ओए सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा पतत उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा भगत वचल तेरा बिरद है जुग जुग वरतंदा नानक जाचै एक नाम मन तन पावंदा श्लोक महला पंजवा चिड़ी चौंकी पहु फुटी वगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नाम है रंग।

जन सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उथ अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम कै पंथ ना पाई है फिर नाही मरने जिसनो आया प्रेम रस तिसे ही जरने बाणी उचर है साध जन हम्यो चल है चरने पेख दर्शन नानक जीव्या मन अंदर धरने सलोक महला पंजवा सतगुर पूरै सेवै दुखा का होए नास नानक नाम अराधे है कार्ज आवै रास महला पंजवा जित सिमरत संकट छुट है आनंद मंगल बिचराम नानक जपिय सदा हर निमक न बिसरो नाम पौड़ी जिनकी शोभा क्या गणी जिन्नी हर हर लगा साधा सरणी जो पवै तो छुट्ट बद्दा गुण गावे अबनासी है जोन गर्भ ना दद्दा गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पड़ बुझ समद्धा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा।

पंजवा बिखै कुड़त्तन सगल माहि जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ पौड़ी एह निशानी साध की जिस भेटत तरियै जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरियै भव सागर संसार बिख सो पार उतरियै हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरियै नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरियै तलोक महला पंजवा नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित डाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अगम

सच एक जिस तुस देवै आप जित खादै मन तृप्ति है। नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खट है। जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस। निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास। कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सपाए तन तन बहुत उपजिया। रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय। पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय। परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवा जीवन पद निर्वाण इको सिमर।

तन रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे सलोक महला पंजवा तरन सवनी खड़ रतन जड़ावी हर प्रेम।

सूल पौड़ी सब निदान घर जिसदै हर करे सो होवै जप जप जीव है संत जन पापा मल धोवै चरण कमल हिरदय वसै है संकट सब खोवै गुर पूरा जिस भेटी है मर जन्म ना रोवै प्रभ दर्श प्यास नानक घणी किरपा कर देवै सलोक डखणा महला पंजवां पोरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू जिथों वंजै जाए तथाऊ मौजूद सोए।

तन फटन जिन्ना साहिं विसरै महला पंजवां प्रेतोह की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारी निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारी नानक का प्रभ वड्डा है।

आज तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कहो कबीर पात हर परवान, सर्व त्याग भज केवल नाम। गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जो पाई जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीन से आत्म राम। रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेद न गई आकाई। बिंद राख जो तरिय पाई, खुसरे क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी संध्या।

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हो मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग होए नहीं चरण निवास कहो कबीर एह कही है काहे साध संगत बैकुंठ आहे गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाए।

कीजै जो आपन जीजै। मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जे आवन हारा रहाओ। या देही परमल महकंदा, तां सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा शत्रपथ कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

ला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमोहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए।

पंचपदे ज्यों जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन भया मगहर की बासी कांसी मगहर।

सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंधा, सत राम झूठा सब धंधा, गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके, जमते उल्ट भये है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उल्ट भये है मीता, साकत उल्ट सुजन भये चीता, अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया, शांत भई जब गोविंद जानिया, रहाउ तन मह होती कोट अपाद, उल्ट भई सुख सह

तब जानिया जब जीवत मुआ, कहो कबीर सुख सहज समावो, आप ना डरो ना अवर डरावो। गौड़ी कबीर जी पिंड मुए जियो केहे घर जाता, शब्द अतीत अनाहद राता, जिन राम जानिया तिन्ह पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथै बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ। सो गुर करहो जे बहुर ना करना, सो पद रवहो जे बहुर ना रवना, सो ध्यान धरहो जे बहुर ना धरना, ऐसे मरहो जे बहुर ना मरना। उल्टी गंगा जमन मलावो, बिन जल संगम मन महनावो, लोचा समसर एहो व्यवहारा, तत विचार क्या अवर बिचारा। आप तेज बाए पृथ्वी अकासा, ऐसी रहत रहो हर पासा, कह कबीर निरंजन त्यावो, तित घर जाओ जे बहुर ना आवो। गौड़ी कबीर जी तिप दे कंचन स्यो पाईए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल, अब मोहे राम अपना कर जानिया।

बैठे घर आया, कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज भागी। गौड़ी कबीर जी जेह मरना सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द परगासिया। अब कैसे मरूं मरन मन मानिया, मर मर जाते जिन राम ना जाने।

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावू खोजत तन मह ठौर ना पावू लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाऊ एक पाए देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त अनंत पुकार।

जब लग रात तब लग नहीं नेहो रहाओ साहन सत करे जी अपने चोर मैये को मिले ना सुपने तन मन धन गृह।

चौड़ कत बोड़ी हर सिंह तोड़ बिठिया संग जोड़ी रहाओ तुर नर दादे लागी आग निकट नीर पास पीवस ना झाग चेतत चेतत निकसियो नीर सो जल निर्मल कथत कबीर गौड़ी कबीर जी जेहे कुल पूतना ज्ञान बीचारी विधवा कसना पई महतारी जेहे नार राम भगत नह साधी जनमत कसना मुह अपराधी रहाओ मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया बुढ़ पुज रूप जीवे।

नहाऊं। तिनकै सद बलिहारै जाऊं। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावै रहाऊ। जेहे कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वाको कही है सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बीचारा रहाउ, सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनुभव पाया, गौरी कबीर जी मन का सुपहो मनह दयापी, मनह मार कमन सिद्ध थापी, कमन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाउ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई।

बूझै बूझनहार सुभागा रहाउ। सूरज चंद करह उजियारा, सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा। कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामै होए। गौड़ी कबीर जी बेर की पुत्री सिमरत पहाई, सांकल जेवरी लै है आई। आपन नगर आपते बांधिया, मोह कै फांद काल सर सांधिया। रहाउ कटी ना कटै टूट नह जाई, सास आपन होए जग को।

तुझह ले तारूं, खिचह ता प्रेम कै चावक मारूं। कहत कबीर भले असवारा, वेद कतेब ते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लू कट लाए। एक दुख राम राय काटो मेरा, अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ। काया बेगूती बहु विद भांति, को जारे को गढ़ ले माटी।

तारा कह कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ काको जरै काहे होए हान नटवट खेलै।

कैसे जीवन हुए हमारा, जब ना हुए राम नाम अधारा रहाउ। कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो आन। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवार है काग। किस तन तन को क्या।

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमहु ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते सेव ब्रह्म डराना सो सुख हमहु साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन।

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी ग्वार रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भये लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तार तारे।

ठपी रे जी न लाज लाज तो हे नाही हर तज कत काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जात ना सोई सो साहिब रहया भरपूर सदा संग नाही हर दूर कवला चरण सरन है जाके कहो जन का नाही घर ताके सब को कह जास की बाता सो समरथ निजपत है दाता कह कबीर पूर्ण जग सोई जाके हृदय अवर ना हो।

आऊ कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छडाई। अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना। सतगुर की

आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो ताते अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

है सूतक, सूतक ओपत होई, गन में सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बेगोई, कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जप हो मेरे मीता, रहाओ नैन हो सूतक बैन हो सूतक, सूतक श्रवनी होई, उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई, हासन की बिद सब को जाने, छूतन की एक कोई, कह कबीर राम हृदय बिचारे, सूतक तिन ना होई, गौड़ी झगड़ा एक नबेरो राम, जो

धारी ऊपर दुर्मत भांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरख ते तेरा जन पीना कह कबीर मन भया परगासा।

लोगन स्यो क्या कही है जो प्रभ किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है रहाओ आप ना देहे चुरु भर पानी तेह निंद है जेह गंगा आनी बैठत उठत कुटलता चल है आप गए और नहू काल है छाड़ कु चर्चा आन ना जान है ब्रह्मा हूं को कहो ना मान है आप गए और नहू खोव है आग लगाए मंदर में सोव है अवर्ण हस्त आप है काने तिनको देख कबीर ल जाने राग गौड़ी बैरागन कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जीवत पितर न माने को मुए श्राद्ध कराही पितर भी बपरे कहो क्यों पाव है कौआ कूकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते

कहिय है आपन कहया ना ले ही। सरजियो काट है निर्जियो पूज है अंत काल को भारी। राम नाम की गत नहीं जानी भय डूबे संसारी। देवी देवा पूज है डोल है पार ब्रह्म नहीं जाना। कहत कबीर अकुल नहीं चेतिया विख्या स्यों लपटाना। गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया। अंजन माही निरंजन रही है बहुड़ ना पवजल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बलोई है गुरमत मनुआया स्थिर राखो। इन बेद अमृत पियोई है रहाओ गुर कै बाण बजर कल छेदी। प्रगटिया पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी भ्रम चूका। निहचल शिव कर बासा तिन बिन बाण तनख चढ़ाई है। एहो जग बेदिया भाई दह दिस बूढ़ी पवन चलावै जोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत भागी। कहो कबीर अनभव एक देखिया राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागण तिप दे उल्टत पवन चक्कर खट भेदे। सुरत सुन अनरागी आवे ना जाए मरे ना जीवे ताश खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पही अवरे। नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे।

तिन तैसी झल देखी गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं सहिया तह उत्पत परलो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै जाए ना मकाती हल्की लगे ना भारी रहाउ अर्ध उर्द दो तह नाही रात दिन सतह नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहा समाही अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाओ गुर अपने सत संगत मिल रही है गौड़ी पाप पुन दोए बैल बसाही पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट पीतर इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बनजारा रहाउ काम क्रोध दोए भये जगाती मन तरंग बटवारा पांच तत्व

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्ज सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पाल मीठा अवरना दूजा पाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी एक है सिद्ध पाई हर बिन परम पलानी अंधा जाप है जाऊं आप छुटकावन ते बांधे बहु

एक है बद हम ही जिसे बुझाए सुई बूझे बिन बूझे क्यों रही है सतगुरु मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है तज बावे दाहने बेकारा हर पद दृढ़ कर।

किस नाही, पांच तात तह नाही, एड़ा पिंगला सुखमन बंदे, ए अवगण कत जाही, तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहां समाई।

पिंड तह नाही, रचनहार तह नाही, जोड़नहारू सदा अतीता, एह कहिए किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए।

जहाँ खंड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी थिर पई तंती टूटस नाही अनहद किंगरी बाजी सुन मन मगन भये है पूरे माया डोलना लागी कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधिकाई गई बनावन माहो कर छोड़े जाए जला हो रहाओ गजी ना मिनी है तोल ना तुली है पांचन सेर अढ़ाई जो कर पांचन बेग ना पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस

है नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है।

गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है

एव गौड़ी अगन ना दह पवन नहीं मगन कस कर नीर ना आवे राम नाम धन कर संचौनी सो धन कत ही ना जावे हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर यह सार धन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लही है रहाओ इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत भय उदासी मन मुकंद जिहवा नारायण परे ना जम की फासी निज धन ज्ञान भगत गुरदीनी तास समत मन लागा जलत अंब थंब मन धावत परम बंधन पहु भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असव हसती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यो कप के कर मुष्ट चनन की लुभ ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहे हो रहाओ ज्यो उद्यान कुसम पर फुलत किन्ह ना कराओ लयो तैसे भ्रमत अनेक जोन मह फिर काल हयो या धन जोगन अर सुत दारा पेखन कौ जो दयो तिन ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिन को मंदर चहु दिस ठाट ठयो कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं ना ही कछ आहे ना मोरा तन धन सब रस गोविंद तोरा रहाओ इस माटी मह पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी किन मह बिन सजाए अहंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ जां तिस भावे ता हुक्म मनावे इस बेड़े को पार लंघावे गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर भज सारग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो लागत पवन खसम बिसरायो जियरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन मह उर्द तप करता तव जठर अगन मह रहता लख चौरासी जोन भ्रम आयो अब के छुटके ठोर ना ठायो कहो कबीर भज सारग पानी आवत दिसै जात ना जानी गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी है दरिया ना नरक निवास होना है सो होई है मन है ना की जय आस रमैया गुण गाई है जाते पाईया परम निदान रहाओ क्या जप क्या तप संजमो क्या वर्त क्या स्नान जब लग जुगत ना जानी है भाओ भगत भगवान।

रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले।

पद कारण हर की भगत करीजै एक आधार नाम नारायण हरसना राम रवीजै राग गौड़ी ग्यारवां आस पास घन तुरसी।

छाडोह परम प्रगट होए नाचोह या माया के डांडे सूर के सनमुख रन ते डरपै सती के सांचे भांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाई लीनो हाथ संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लो रे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उदार जान कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपहु तरन तारन राम राया रहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भये है एक देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार ना लाई अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुस्से घर जाई रहाओ पंच पहरुआ दर मह रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत हुए रहो तव लै परगास उजारा नौ कर देख जो कामन भूली बस्त अनूप ना

तास गुण गाव है, तास बस है मूरे प्राणा न रहाउ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित, गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागे, मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ, दूसर मन है न आनाना। चंदन बास पये मन बासन, त्याग घटियो अभमान हाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर, तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बस्यो मन जाकै, कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो, एकै एक समानाना। कह कबीर गुर भेट महा सुख, भ्रमत रहे मन मानाना।

बावन अक्षर लोक त्रै सब कछ इन ही माहे ए अखर खिर जाहिंगे ओए अखर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लखै ना कोई लह लहूं तो क्या कहूं कहूं ता कोपकार बटक बीज।

आद मैं जाना लिख अर मिटै ताहि न माना ओंकार लखै जो कोई सोई लख मिटना ना होई कक्का किरण कमल मह पावा सस बगास संपट नहीं आवा हर जे तहां कुसम रस पावा कह कहां कह का समझावा खक्का एह खोड़ मन आवा खोड़े शाड़ ना दह दिस तावा खसमह जान खिमा कर रह तो हुए निखियो अखै।

गगन रहाई कग्गा घट घट निमसै सोई घट फूटे घट कबह ना होई तां घट माही घाट जो पावा सो घट छाड अब घट कत तावा नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह नाही देखना भाजी है परम स्यानप एह चचा रचत चित्र है भारी।

जहां कारण जग ढूंढियो नेरो पायो ताहि तथा बिकट काट काट माही खोल कपाट महल की ना जाही।

या तीरा जिन ठग ठगया सगल जग खावा सो ठग ठगया ठौर मन आवा डड्डा डर उपजे डर जाई ता डर मह डर रहे आसमाई जो डर डरे ता फिर डर लागे न डर हुआ डर उर होए भागे टड्डा ढिग ढूंढ कातियाना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़े हो सो गड़ मह पावा।

बसेरा, अर्दह उर्दह मांझ बसेरा, अर्दह चाड उर्द जो आवा, तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा। नन्ना निस दिन निरखत जाई, निरखत नैन रही रतवाई। निरखत निरखत जब जाए पावा, तब ले निरख है निरख मलावा। पप्पा अपार पार नहीं पावा, परम ज्योत स्यो परचो लावा। पांचो इंद्री निग्रह करी, पाप पुन दो निर्वरी। फफा बिन फूल फल हुई,

बिंद मलावा, बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो हुए बंदगी गह, बंद को हुए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पहो पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद पूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पयाते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कह कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई, एहो मन शक्ति एहो मन सियो, एहो मन पंच तत् को जियो, एहो मन ले जो उन मन रह, तो तीन लोक की बातें कह, जैया जो जान तो दुर्मत, हन कर बस काया गाँव, रण रूतो भाजे नहीं, सूरो थारो नाव, रारा रस निरस कर जानिया, होए नरस सो रस पहचानिया, ये रस छाडे ओह रस आवा, ओह रस पिया ये रस नहीं पावा, लल्ला ऐसे लिव मन लावे, अनत न जाए परम सच पावे, अर जो तहां प्रेम लिव लावे, तो अलह लह लह चरण समावे, ववा बार बार बिसन समहार।

कर सोध हो घट पर क्या की बात नरोध हो घट पर क्या जो उपजे पाओ पूर रहे तह त्रे पवन राव खखा खोज परे जो कोई जो खोजे सो बहुर ना होई खोज बूझ जो करे बिचारा तो पव जल तरत ना लावे बारा ससा सो सह सेज सवार सोई सही संदेह निवार अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एह त्री ओह कंत कहावा हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तब मन माना है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई न्यो न्यो करत।

खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजहू नह चेते, अब जग जान जो मना रह, जह का बिचरा तह थिर लह, बावन अखर जोरे आन, सक्या ना अखर एक पछान, सत का शब्द कबीरा कह, पंडित हुए सुअन पै रह, पंडित लोग कहो व्यवहार, ज्ञान

अपार काल कल्पना कदे ना खाई आद पुरख मह रह समाई द्वितीया दोह कर जाने अंग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओह बढ़े ना घटता जाए अकुल निरंजन एक पाई तृतीया तीने सम कर लियावे आनंद मूल परम पद पावे साध संगत उपजे विश्वास बाहर भीतर सदा परगास चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहु ना बहो।

छठ खट चक्कर शहू दिस धाय, बिन परचै नहीं थिरा रहाय। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो।

एकादशी एक दिश तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावट पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहू लोक का पियो अचरज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगम बखान अर्ध उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरो ध्यान

प्रीत, पंच चोर की जाने रीत, कर छोड़े बाहर जिन जाए, नातर खरार सहराय राय, बुधवार बुध करे प्रगास, हृदय कमल मह हर का बास, गुर मिल दो एक सम धरै, उर्द पंकल है।

माही, ऐनस कसमल तो वह नाही, सो किरत सहारै सो एह ब्रत चढ़ै, अन दिन आप आप स्यो लड़ै, सुरखी पांचो राखै सबै, तो दूजी दृष्ट ना पैसै कवै, थावर थिर कर राखै सोई, जोत दी वटी घट मह जोई, बाहर भीतर भया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जब लग घट मह दूजी आन, तौ लो महल न लाभ जान, रमत

जियो की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले, राम कहत जन कस ना तरे रहाउ, तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याज अजामल तारियले, करण बदक जन तेऊ मुक्त भये।

उतरे राग गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी गुआर रे एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

कवन कर्म ते छूटिऐ जेह साधे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म विचारिऐ संका सुन वेद पुराण संसा सद हिरदय बसै कौन हिरै अभमान बाहर उदक पखारिऐ घट भीतर बेबिद बेकार शुद्ध कवन पर्व होए वो सोच कुंचर बिद व्यवहार रब प्रगास रजनी जथागत जानत सब संसार पारस मानो तांबो छुए कनक होत नहीं बार परम परस गुर भेटी है पूर्व लिखत लेलाट हुन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी भ्रम बंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक बेचार अनक जतन निग्रह की।

तत पड़े रिखी सुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माछ पयाले गावन तुदनो।

सोपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहो।

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिनका भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको।

चित तरे जा तू करनहार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप अपाए आपे दे आपे दुर्मत मन है करे गुर प्रसाद वसै मन आए दुख अनेरा विचों जाए साच प्यारा आप करे अवरी को साच ना दे जे किसै देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचै कल का पाओ जति सती कह राखह पाओ नानक नाम विटो कुरबान अंधी दुनिया साहिब जान रहाओ।

किस दरगाह पावे मान। आसा महला पहला जेता शब्द सुत धुन तेती।

पताओ इत रंग नच हो रख रख पाओ पूरे ताल जाने सलाह होर नचना खुशियां मन माह रहाओ सत संतोख वजह दोए ताल पैरी वाजा सदा निहाल राग नाद नहीं दूजा पाओ इत रंग नच हो रख रख पाओ।

पित रंग नाचो रख रख पाओ, सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ, नानक आखन वेरा वेर, पित रंग नाचो रख रख पैर, आसा महला पहला, पौन उपाय धरी सब धरती, जल अग्नि का बंद किया, अंदले दह सिर मूंड कटाया।

कौन कही है, सर्व निरंतर रव रहया, नाल कटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया, आग्या अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या वड्डा भया, रतन उपाय तरे खीर मथया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन किया, करे वखियान जाने जे कोई, अमृत पीवै।

जब लग हृदय न आवह याद, तौ प्रवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ, मन की मत मता गल मता, जो किस बोलिया सब खतो खता, क्या मुँह लै कीचै अरदास, पाप पुन दोए साखी पास, जैसा तू करहे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जे ही तू मत देहे ते ही को पावे, तुद आपे पावे तिवें चलावे, राग रतन परियां परवार, तिस विच उपजै अमृत सार, नानक करते का इहो तन माल, जे को बूजै इहो विचार, आसा महला पहला, कर किरपा अपने घर आया, ता मिल सखिया काज रचाया, खेल देख मन आनंद भया, सहो वी आहने आया, गावो गावो कामणी बिबेक बिचार, हमरे घर आया जग जीवन पतार, रहाव गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ, जा सहो मिलिया ता जानिया, तेहो लोका हमे शब्द रविया है, आप गया मन मानिया, अपना कार्य आप सवारी, पूर्ण कार्य ना हुई, जित कार्य सत संतोख दया धर्म है, गुरमुख बूझै कोई, भणत नानक सबना का पिर एको सोए, जिसनो नदर करे सा सुहागण होए, आसा महला पहला, ग्रहो बानो समसर सहज सुपाई, दुर्मत गत पई कीरत थाए, सच पौड़ी साचो मुख नाव, सतगुर सेव पाए निज थाव, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाव, अधिक त्यास भेख बहु करे, दुख बिख्या सुख तन परहरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ नाम निस्तरे, सिपत सलाहन

बिन जल सरवर कमल ना दीसै रहाउ। बिरला बूझै पावै भेद, साखा तीन कह नित भेद। नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुर सेव परम पद पाए। मुक्तो रातो रंग रवंतो, राजन राज सदा बिकसंतो। जिस तू राख है कृपा तार, बूढ़त पाहन तार है तार। त्रि भवन मह जोत, त्रि भवन मह जानिया। उल्ट पई घर घर मह आणिया। अहनस भगत करे लिवलाए, नानक तिनकै लागै पाए। आसा महला पहला, गुरमत साची हुज्जत दूर। बहुत सियाणप लागै धूर, लागी मैल मिटै सच नाए। गुर प्रसाद रह लिवलाए, है हजूर हाजिर अरदास। दुख सुख

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मन तृप्त ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमे माया दुख संतापे। से जन बाचे जो प्रवराखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द पाखे। साचे शब्द मुक्त गत पाई, नानक विच

संग हर जियो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी हर रस पाया नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ कर्म धर्म सच साचा नाओ ता कै सदबल हारे जाओ जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निदान हर वार जिन पाया धन नारी।

जात पात सच नाव कर्म धर्म संयम सत भाव नानक बख्शे पूछ ना होए दूजा मेटे एको सो होए हासा महला पहला एक आव है एक जाव है आई एक हर राते रह समाई एक धर्म गगन में ठौर ना पाव है से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है गुरपूरे ते गत मित पाई एहो संसार बेख वत अत भौजल

गुरमुख निर्मल रह प्यारी, ज्यो जल अंब ऊपर कमल नरारी। बुरा भला कहो किसनो कहिए, दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

भेद अठसठ मज्जन हर सरेद गुरमुख निर्मल मैल ना लागे नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे आसा महला पहला निव निव पाई लगो गुरे अपने आत्म राम निहारिया करत बिचार हिरदय हर रविया हिरदय देख बिचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन हर लाभ है मिटे अज्ञान हुए उजियारा रहाउ रवनी रवे बंधन नहीं टूटे है विच हों मैं भरम ना जाई सतगुर मिले ता हों मैं टूटे ता को लेखे पाई हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम सुख सागर उर तारे भगत वछल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारे मन स्यों जूझ मरै प्रभ पाए मनसा मन है समाए नानक कृपा करी जग जीवन सहज भाई लिवलाय आसा महला पहला किसको कह सुनावह किसको किस समझावह समझ रहे किसे पढ़ावह पढ़ गुण बूझे सतगुर शब्द संतोख रहे ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर भज मेरे मन गहर गंभीरा रहाउ अनत तरंग भगत हर रंगा अनदिन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रह निरारा सूची काया हर गुण गाया आत्म चीन रह लिवलाया आद अपार अप

ग्रास एहनस अंदले दीपक दे पौ जल डूबत चिंत करे कह सुनह जो मानह नाऊ हौ बलिहारे ता कह जाऊ नानक एक कह अरदास जियो पिंड सब तेरे पास जा तू देह जपी तेरा नाउ दरगाह बैसन हुए थाउ जा तुद भावै ता दुरमत जाए ज्ञान रतन मन वसै आए नदर करे ता सतगुर मिले प्रणवत नानक पवजल तरे आसा महला पहला पंचपदी दुध बिन तेन पंख बिन पंखी जल बिन उत्पुज काम नाही क्या सुल्तान सलाम विहूना अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसरह दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही रहाउ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पवन ना वाजे चरनी चले पजूता आगे बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग भोए चोखी सिंचत भाव करे ही सबना फल लागे नाम एको बिन कर्मा कैसे ले जेते जी तेते सब तेरे बिन सेवा फल किसे नाही दुख सुख पाना तेरा होवे बिन नावे जियो रह नाही मत विच मरण जीवन।

तू ही आसा महला पहला ताया ब्रह्मा मन है तूती ज्ञान जनेऊ ध्यान कुसपाती हर नामा जस जाचू नाऊ गुर प्रसादी।

नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया आसा महला पहला सेवक दास भगत जन सोई ठाकुर का दास गुरमुख हुई जिन सिर साजी तिन फुन गोई तिस बिन दूजा अवर ना।

सो प्रगट जाय। सच निशान है ठाक न पाय। पंडित पढ़ै बखान है वेद। अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए। साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हौ आखां आख बखानी। तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान। गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला। काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई। इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई। तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे। सर्बी रंगी रूपी तू है। तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ। सास बुरी घर वास ना देवै। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी। सखी साजनी के हौ चरण सरेमो। हर गुर कृपा ते नदर धरी। आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई। ज्यों तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है कर है सोई। आसा मनसा धूब नासक। त्रिहो गुण आसन रास पई। तुरी अवस्था गुरमुख पाई है। संत सभा की ओट लही। ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हृदय अलख अपेवा। नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा। आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत ना कलपै माई। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जम पुर जाहे। गुर दीखिया ले जप तप कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यो रह समाए। आसा महला पहला, आप करे सच अलख अपार। हों पापी तू बख्शन हार, तेरा भाणा सब किछ होवै। मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ, मन मुख की मत कूड़ व्यापी। बिन हर सिमरन पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाहा किस लेवो। जो उपजै सो अलख अपेवो, ऐसा हमरा सखा सहाई। गुर हर मिलिया भगत दिरडाई, सगली सौदी टोटा आवे। नानक राम नाम मन भावे, आसा महला पहला चौपदे। विद्या विचारी ता पर उपकारी, जा पंच रासी ता तीर्थवासी। घुंगरू वाजै जे मन लागै,

मेरा सहो जागे हौ निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागे हौ निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा आगे।

पहला धो पदे तित सरवर डै पहिले नवासा पानी पावक तिन है किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डुबी अले मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हों जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया हासा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विश्वे।

आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राव सच्चा नावण तां फीऐ जा एनस लागै भाव इक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबहून खूटस नाहे आसा घर चौथा महला पहला।

हाव धर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए पीर पे कांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमन लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रह जैसे भवह उदासी मन मेरा दयाल सेती थिर ना रह लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू पंच सखी मिल रुदन करे हा साहू पुजूता प्रणवत नानक लेखा देहा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा घर सीमा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा शिंगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण होहे ना अवनी रहाओ हर हर हार कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तरेई मधसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज धड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करेई ज्ञान राओ।

कराया तिस क्या कहिए भाई जो किस करना सो कर रहया कीते क्या चतराई तेरा हुक्म भला तुद भावे नानक ताको मिले वडाई साचे नाम समावे रहाव किरत पया परवाना लिखिया बहुड़ हुक्म ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई जे को दरगाह बहुता बोले नाओ पवे बाजारी सतरंज बा

है मुंदरा खिंता खिमा हंडावू जो किस करे भला कर मानू सहज जोग निध पावू बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी परम

आसन बैसो कल्प त्यागी बादं सिंही शब्द सदा धुन सोहै एनस पूरै नादं पत विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान बेभूतं हर कीरत रह रास हमारी गुरमुख पंथ अतीतं सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुण कर ज्ञान ध्यान कर तावै कर करनी कस पाईऐ पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चवाईऐ बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै सहज रंग रच।

सुन पर थर जोगी खीवा अमृत तारै आसा मोहल्ला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई करलाने तैं की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस ना होई रहाओ सकता सिंह मारे पै वगै

कोई। गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार, नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगे ना पीर, जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गुआए, सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए, सच्ची बाणी पाए भाग कोई।

गुर प्रसाद वसे मन आई, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, हत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, हासा महला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सूजी।

सुख पाए, संत संगत मेल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की वाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाई आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप ले जाए, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जले सबाई, सतगुर पूरे बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इतों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हों मैं मारे सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

है सोग हर कदोय सम कर जाने गुर प्रसादी शब्द उधरे रहाउ करनी कार तुरों फरमाई बिन शब्द को थाए ना पाई करनी कीर्त नाम वसाई आपे देवे ढिल ना पाई मन मुख भरम भुले संसार बिन रासी कूड़ा करे व्यापार बिन रासी वखर पल्ले ना पाई मन मुख भुला जन्म गवाई।

पाखंड वकार रहाउ सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अन दिन हरदावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण साची जिस साच प्यार अपना पिर राखे सदा उर तार नेड़े वेखे सदा हदूर।

गुर बिन दाता अवर ना कोई, गुर सागर पूरा भंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार, गुर प्रसादी देवनहार, नानक बख्शे बख्शनहार। आसा महला तीजा, गुर साहिर सतगुर सच सोए, पूरे भाग गुर सेवा होए, सो बूझै जिसे आप बुझाए, गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए। गुर प्रसाद अज्ञान बनासै, अन दिन जागै वेखै सच सोए रहाउ, मोह गमान गुर शब्द जलाए।

पछान गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सत सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी भवजल तरे गुर कै बचन भगत थाए पाए हर जीव आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मलाए निश्चल भगत हर सिओ चित लाए भगत रते पिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा घर अठवां काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै भाणै सतगुर मिले सच सूझी होई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै तां सदा सुख होई रहाउ इस युग में निरपो हर नाम है पाईऐ गुर विचार बिन नामै जम कै वस है मन मुख अंध गुआर हर कै भाणै जन सेवा करै बूझै सच सोई हर कै भाणै सलाहियै भाणै मन्नै सुख होई हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आसा।

जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा घर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। हमारा तड़ा हर रहया समाई, हम हर स्यों तड़ा किया मेरी हर टेक। मैं हर बिन पख तड़ा अवर न कोई, हम हर गुण गावा असंख अनेक। रहाव जिन स्यों तड़े कर है से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे। थिर न रह मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका

गुरमुख परगासा नाम बिना मैं धर नहीं काई नाम रविया सब सास ग्रासा रहाउ नामै सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सखाई नाम हीन गए मूड नंगा पच पच मुए बिख देख पतंगा आपे थापे थाप उथापे नानक नाम देवै हर आपे आसा महला चौथा गुरमुख हर हर वेल वधाई।

सुनी मन सरसा नाम लाहा लै गुरमत बिगसा नाम बिना कुश्ती मोह अंधा सब ने फल कर्म किए दुख धंधा हर हर हर जस जपै वड भागी नानक गुरमत नाम लिव लागी।

जोगी तो तरवाजे बेन गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग पेन जोगी हर देहो मती उपदेश जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगे हम आदेश रहाउ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामे हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोव हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

खिन लागे हम तब लग समारो नाम। मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सको। जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेले पंच सत गायन। कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे। तब लग मेरा मन राम गुण गावे तब को नाचे पाम पसारे। कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे। तब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे। लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याग हो। ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा। सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए। ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हो हर हर त्याए ऐसे संत मिले है मेरे भाई। हम जन के धोवे है पाए रहाओ हर हर नाम जप हो मन मेरे। अन दिन हर लिब लाए जो इच्छो हो सोई फल पाव हो। फिर भूख ना लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए। से संत भले तुद भाव है जिनकी पत पावे।